उस मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राज, हर से पूरा सतगुरु पुकर जाए मैं मेरी, दुष्खा की पुक सब गई, दुष्खा की पुक

ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।

0: सके दरबार अपना जितना ही सोचन कर दिया है पिता तू अपना आपे ही ने कर संधि है कर रहना नहीं है तगड़ा का इंतजार मंदी है मंदा किसे नाती है पर अरे वो बुद्धि है कर रहना नहीं है तगड़ा का इंतजार मंदी है मंदा किसे नाती है पर अरे वो बुद्धि है
1: ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਫੜਕ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀ ਹੈ।

अपना अपना काश मारिए, काश मारिए।

किस लाहे ऊपर काली है, किस लाहे ऊपर काली है, जिन गुरमुख नाम ते आया बिना फिर जिगर ना हो ही।

0: आप दुआए सेवा करे ता किश पाए मां नानक जिसनू लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
1: जो जी होए सो उगवे मौका कहया वाओ बीजे पख मंगे अमर।

सब दुष्ट चट मार

आए नानक सेवक कांडी आए जैसे ती कसम समाए पौड़ी नानक हर धाके तारा बार आपका ऐसा फिर आप

फिर तिस ही करनी सार, फिर तिस ही करनी सार। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन प्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन प्याई।

राजन के राजा महाराजन के।

स्नान करे अमृतसर नावै, स्नान करे अमृतसर नावै, स्नान करे अमृत।

यह आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज से तैखा सवाए आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप ए डीडी फ्री डिश से बुधी सकंदा आयो। प्रोग्राम शुरू थी चुको है, डिटेल्स कुछ नजर आया। थोड़ी देर में हमेशा अवां भगत कौराम साहब जन मिठड़े आवाज में कलाम बुधंदा, तंहिंखां पोइ भारतीय मौसीकी जे साज़ सितार ते हिकु तकरीर पेश कंदी। तंहिंखां पोइ तव्हां जनाब नारायण पारवाणी जो लिखियलु नाटक ॿुधंदा वापसी। या त असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर अचो त भगत कौराम साहब जन जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

0: माना भगत कौराम साहब जन जे सदाबार आवास में कलाम दी रहा। ये आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है। यार पेश है भारतीय मौसीकी जे साज सितार ते एक तकरीर।
1: सितार एक रवायती भारतीय साज है जेको पंजे डिघे कंद ए खोखले ढांचे जे करे मनफरिद आवाज पैदा करे तो। सितार में यारन खां वीह तारों थींदी आहिनि जिन मां रुगो फकत सतन के वजाइण लाइ रखियो वेंदो आहे। बाकी तारों हम धनन वारियूं तारों आहिनि जेके आवाज में वेराक पैदा कंदियूं आहिनि। सितार मुगलन जे दौर में वीना मां तरक्की हासिल कई ए अॼु हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सां गॾोगॾु जदीद भारतीय पॉप ए मगरबी रॉक म्यूज़िक में पिण मशहूर आहे। इन जो ढांचो प्रडा नाले हरकती फ्रेटन ते ॿधल हूंदो आहे जेके धुननि जे तब्दीलियुनि सां आवाज़ खे इंसान जे आवाज़ वांगुरु इज़ारींदियूं आहिनि। ही ओज़ार डांडी यानी कि कंध ऐं कद्दू जो टुंबो यानी कि ढांचे ते ॿधल हूंदो आहे जेके गॾिजी आवाज़ वधाईंदा आहिनि। सितार अकोस्टिक ऐं इलेक्ट्रॉनिक ॿिन्ही रूपनि में मौजूद आहे जिते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वधीक आवाज़ लाइ एम्पलीफिकेशन ज़रिए कम कंदो आहे। इन जी तारीख़ ऐं बहुतरफ़ियत सितार खे भारतीय मौसीकी जे विरसे जो अहम निशानो बणायो आहे। सितार हिकु क़दीम भारतीय साज़ आहे घणनि औज़ारनि जे उबतर जिन मां इहो इर्तका करे थो जहिड़ो कि लोट या वीना। सितार अॼु बि घणी अहमियत रखे थो। इन जो डिघो कंध हिकु खोखले ढांचे सां ॻंढियल आहे जंहिं में फ्रिटन ऐं तारनि जो ख़ासि सिस्टम रखियल आहे। सितार खे मुख्य तार ऐं ॿियनि सानवी तारनि

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। पेश है जनाब नारायण पारवाणी जो लिखल नाटक वापसी।

0: dedi. O ne ki sopayla sayını kaybetmedin mi? Ganga? Hani baksana ne yapayım ki yani? O ne zaman yaşadı? Ganga? Hani ne yapayım ya? Hani sokriya matam var ki fatih ya fatih. Bhagwan ko alag ka dhyan hone lai var ghar dilo. Ganga? O Ganga!
1: गंगा गंगा गंगा मरी वही गंगा भाजा कपड़ा कठ बासन मन बबुआ के खीरे ही कर हु कर गंगा से गंगा जी की चिंता छोकरी गंगा जी केर तो चिंता करे इन घर में अम्मा जो वसल तो के वाटू रखे पकड़े उन सब पलो बची फेरा दे घर माँ कठे बाबा बाबा के तेने घर में अगर केर बने थे तो वो आए भाव बीए छा पास कयो अथस दिमाग ही सत्य आसमान ते चढ़ी वियो अथस मुखे पढ़ी ना तो माँ बीए पास करे दिखारे हा पर हिन घर में छोकरन जी इज्जत ही केर थो करे हिते तो औरत के औरत न पर नौकराणी थो समझो वनी मीजो तो हिन घर जी चार दीवारी में दम थो खुचे पर खैर बाकी बकलाक सिर्फ बकलाक जदेन घर आले चुसुई बारन ते इंदो ए अलार्म बजंदो तेरे मां भेन घर जे दम खुटी दर दीवारन खने करी दूर बिल्कुल दूर पंजे रमी सवनी नई दुनिया वसाई दस पंजे नो घर ठाई दस जिते मैं जो राज हूं तो जिते सिर्फ मां रमेश हूं दासी रमेश मैं जो रमेश जे मैं जे अंधियारे जीवन में आशा जी जोत जगाई मुखे तो निंद थी अचे बिन कलाकन खां पोए मुखे न घर जे जेलखाने मां आज़ादी मिलंदी पर छाही लिखी छपी जो मिसा कर वञण ठीक थींदो दुनिया छा चवंदी मुंहिंजे हीअं वञण करे मुंहिंजे माइटनि जी बदनामी कोन थींदी असांजे खानदान जी इज़त न न मूंखे कंहिंजी परवाह कोन्हे माइटनि जी बदनामी खानदान जी इज़त मां छो हिन ॻाल्हियुनि जी चिंता करियां मां वेंदसि ज़रूरु वेंदसि मां बि अजायनि बेकार वीचारनि में पइजी वई आहियां ठीक 12 बजे मुंहिंजो रमेश ईंदो मां हुन सां गॾु ज़रूरु वेंदसि

0: गंगा, ओ गंगा, छापे सूची?
1: कुछ नहीं।
0: कुड़ी, मुखां पंहिंजे मन जी ॻाल्हि लिकाई थी। अॼु असांजी शादी थी आहे, अॼो को ॾींहुं चुपचाप गुमसुम थी वियल आहे कोन्हे?
1: शादी रमेश

0: Ne yapın şatici bari mi suçu rehiye?
1: Ya?
0: İyi. Taja sanji şatiti. Ben ne mi çok kuar vangu singar tiyo. Ne to ki kurt raja vangu sajayiyo. Ne kendi lada gata. Ne kadı kacari. Ne tu mutuk bati denye vatiye. Ne kendi duyla vaga. ये तो कैसी शादी थी?
1: चली, शादी तो बिन दिलन जे मेलाप के चेहरे में दुआ है, तो लब्बा जाम मुकुट सिर्फ दुनिया जो देखा हुआ है, पर छातुं खुश कौन आई?
0: मैं बेहद खुश आया रमेश, मुखे तुम मिली हुई तो सजी दुनिया जी दौलत मिली हुई।
1: तो पो तू एन गालियों चौथी सोची, मुंह तो तुके मजबूर कौन कहे हो?
0: रमेश, मुझे चवण जो गलत मतलब न कट मु करी चाहे तो तुमके मजबूर कयो माता ये गाल करे रही हस चंग बुथे आने थोड़ो बाहर घूमिए छु
1: घूमिए छु
0: हां
1: तोखे खबर काने तो बाबे पुलिस में रिपोर्ट कई आई चैनी तरफ था तलाश थी रही आए अखबार में फोटो छपे आए
0: तो छ महीने कोठरी में बंद पे हुंदा से
1: सिर्फ कुछ दिन ला मुखे का नौकरी मिली वने तो पो पान वडी जाय वठंदासी ऐ तोखे खबर आए धीरे धीरे वक्त सबनी जख्मन के भरे चली है असा जब माइट भी मने वा मुहबत अग्या उनके झुकनो पवो
0: पर रमेश तो फिर नौकरी मिलने में तो कुछ डी लगी वा तेस तीन घर जो गाड़ो की हल
1: हाँ तेस ती छाती
0: तू फिक्र न कर हाँ
1: यही वही
0: ईंदे वक्त घर अमाजा कुछ गहना खड़ी आई हस तेस ती विकड़ी कर कम हलाइंदा
1: सी न मैं ये गहना को
0: छो अना तुम्हें माँ अलग अलग आई छा
1: पर गंगा
0: चुप कुछ न चो बन जल्दी सामान वठी
1: खैर तू मजबूर थी करी तई है सही चंगो माँ हला तो
0: बुद्ध बन पर थोड़ा जल्दी अच जाए समझे ना मुझे अकेलो डप छो लगे रमेश उन्हें नौकरी जी छाती
1: मुखे कौन मिली
0: पर तू तो चयो थे तो तू टेस्ट में अवल आयो आई तो के जरूर मिलंदी
1: हाँ पर उन ला बिन हजारन जी जमानत ही जरूरत हुई जा मुंहट कौन आए
0: तब पोए हाँ ही छाती दो
1: मुझे अग्यां भी तो हर घरी है यो ही सवाल थो अजे तो हाँ ही छाक जे सोचा पियो तहन कदम खान खा कुछ सोचन घुर्जे इन छह महीन में मु केतरी बेजती सटी है कह खसीस नौकर पुठिया रलो आया केतरी न खुशामद कही अथम पर सवार निराशा जे कुछ भी न मिलो है मां तो इन दुनिया का तंग अची चुको आया मां तो जिंदगी का बेजार थी चुको आया

0: केरा है?
1: माँ, दरवाजा खोल।
0: रमेश है तो आज बड़ी शराब पी तो है।
1: हाँ पी तो था। तू केरा ही पूछने वाली।
0: पर तू तो वचन दिनों हो तो तू शराब को न पियंदे।
1: वचन दिनों हो दिनों हूं तुम मां तो बेवकूफ आया खबर ना है कह रहा हो बता सो बता वचन थोड़ी दो बता एक तो सा प्यार जो वचन कम तो उनके निभाने लाए तो के सांग करे भटकंडो तो रहा पर केस आखिर प्यार के सहारे कोई कितरा दीजिए लो गंगा भगवान इंसान के पेट दो उनके भरण ला खे रोटी इन शरीर के ढकन ला कपड़े की जरूरत है रहन ला मकान ही प्यार मोहब्बत असा के रोटी कपड़ा मकान कौन थो दई सके
0: रमेश
1: दुनिया के सभी दुखन के भुलाने मु शराब जो सहारो जैके पी मुखे कुछ वक्त ला राहत थी मिले तू मुखा मुझे यो सहारो भी फिरण थी चाहिए केतरी न खुद मतलबी और पाए
0: रमेश तू इच्छा दे रहे हो
1: तो मुखा मुझे घर छड़ायो

0: हिदायत छॾायां ऐं हींअर ही शराब जेको मुंहिंजे दुखनि दर्दनि जो साथी आहे, तूं मूंखां शराब बि छॾाइण थी चाहे? न, मां शराब पीअण कोन छॾींदुसि। मां तोखे छॾे सघां थो पर शराब तूं मुंहिंजे दुखनि जी जड़ आहे। मां तोखे छॾे ॾींदुसि पर ही शराब जो मुंहिंजे दुखनि खे मूंखां परे भॼाए थो, मां न छॾींदुसि।
1: रमेश, ही तोखे छा थी वियो आहे? हिकिड़े साल जे अंदर तूं केतिरो न बदिलजी वियो आहे। कॾहिं आरती में ॾिठो अथई केतिरो कमज़ोर थी वियो आहे।
0: न मालूम उहा कहिड़ी मन थी जॾहिं मां तोखे कजुसि ऐं तोखे प्यार करण लॻसि। छा न हो मुंहिंजे घर में लखापति पीउ जो अकेलो पुटु हुयुसि, हर तरह जो आराम हो, पर मां अंधो थी तुंहिंजे इश्क में घर खां भॼी निकितुसि ऐं तो मूंखे हिन नर्ग में आणे विधो आहे।
1: रमेश, तूं सम्झी थो त मूं तोसां दोखो कयो आहे। मां ज़बरदस्ती तुंहिंजे गले पई आहियां। मूं त पंहिंजो घर छॾियो आहे, मुंहिंजे घर में वरी कहिड़ी कमी हुई? तोसां हीअं घर छॾे हली अचण करे मुंहिंजे माइटनि जी त बदनामी थी आहे।
2: तुंहिंजा माइट हिन सौदे में हुननि खे कहिड़ो घाटो पियो? उचलो त हू तुंहिंजे लाइ वर घर जी तलाश जी तकलीफ़ कोन थींदा। तुंहिंजे लाइ शादीअ में जेको ॾेज ॾियनि हा उन खां बि छुटा। हिननि त चाहियो थिए त को बेवकूफ़ तुंहिंजे चकर में फासे त हिननि खे तोखां छुटकारो मिले। मां सभु सम्झां थो। हींअर मां वापसि हलियो
1: वञां।
2: तोखे बि जेॾां खपे हली वञ, मुंहिंजो तोसां को वास्तो
1: कोन्हे। पर तूं त मूंसां शादी कई आहे, मां तो हीअं मञण कोन ॾींदसि।
2: मां ॼाणा थो तूं हीअं आसानीअ सां मुंहिंजो पीछो कोन छॾींदे, पर कन खोले ॿुध, मां तोखे पाण सां गॾु कोन रखंदुसि। निकिरी वञ हिन घर मां, निकिरी वञ।
1: मां कोन ॾींदसि। कंहिंखे ताक़त आहे मूंखे हिन घर मां ॿाहिरि कढे?
2: तोखे वञणो पवंदो, तोखे वञणो पवंदो। मां तोखे फिका ॾेई कढंदुसि। निकिरी वञ, निकिरी वञ।

0: have a dream. त्याच्या आईचा
1: गंगा गंगा कुठे त्यांची कमरे माही दहाची आई छा हो अरे तू तू मुला ये घुरे छोपी निहारी छा को भेजारी ना सुपनो दे थे छा के त्रीर थी जीवे यहाँ में जिसे की लदी
0: हाँ माँ सपनो रहते सपनो हो माँ पर के तो न पयानक सपनो मोदिठो अंधियारी तूफानी रात आए माँ के लिए समुद्र के किनारे बिठी आया समुद्र में भयानक छोरियो नाच करी रही आइन एतरे में एक लहर मुगे वधी है मुखे बीच समुद्र में गीले भे बोन के बचाने की पूरी कोशिश कई अमा पर सब बेकार भी ये लगो तो वहां लहर मुगे समुद्र में बोले छड़ी थी ओस तो समुद्र के विच में एक अभी छोड़ी उठी ए उन मुखे वापस आने किनारे से भेजो अम्मा तेजी दिए बुढ़ाते बुढ़ाते बची वही है अम्मा अम्मा ये तू बन अम्मा तू बन तुझी थे वापस किनारे पे अची रही है हिंर को खतरो को ने तू वन अमा तू वन रमेश अची रहा है रमेश अची रहा है पर मैं माँ को न विंदस माँ को न विंदस

पटना जनाब नारायण पारवाणी जो लिखल नाटक बुधी रहा वापसी जैमें भाग वठंदड़ कलाकार हुआ नारायण पारवाणी कमला केसवाणी निर्मला छाबड़िया ए लक्ष्मण भंगाणी आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी अव्हां सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 बजे। तेसीं ताईं ॾींदा मोकल सदाईं गॾु।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को

0: किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एचएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. Thereafter, Mr. Modi will travel to Malhotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. The Prime Minister will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pach Padra in Malhotra. Developed as a joint venture between Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Government of Rajasthan, the 9 million metric tons per annum greenfield refinery cum petrochemical complex has been established with an investment of over 79,450 crore rupees. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to El Nino. Senior officials from various ministries and departments, including the Union Home Ministry and the

आवाज में भजन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीएम 810 किलोहर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आप सभी का स्वागत है एक नए ताजगी भरे सवेरे में। उम्मीद है आपकी सुबह मुस्कुराहट और सकारात्मक ऊर्जा से भरी होगी। तो चलिए ऐसा ही एक जोश भरा गीत और सकारात्मक ऊर्जा वाला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

त्रिवेदी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म केदारनाथ का ये गीत। और दोस्तों, दिन की शुरुआत अगर सही तरीके से की जाए तो पूरा दिन शानदार बन सकता है। जी हाँ, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कुछ भी अपने कार्य में अगर हम पॉजिटिविटी लेकर आए तो वो कार्य जरूर संपन्न होता है, अच्छे से होता है। चलिए सुनते हैं ये गीत थ्री इडियट फिल्म से।

हाँ दोस्तों, कितनी भी तकलीफें आए आप यही बोलिए दिल पर हाथ रख के कि ऑल इज वेल। जी हाँ, और भाई जिंदगी और सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, ये वो मौका होता है जब हम कल की थकान को अलविदा कहकर आज के सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन घंटों में क्या सोचते हैं और क्या कर रहे हैं और अपने जो हमारे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं।

दोस्तों, अगर आज मन थोड़ा भारी है तो याद रखिए, सूरज को उगने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए और आपको चमकने के लिए किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। तो आइए, जो उलझने हैं, जो दिल की उलझनों को संगीत में घोल देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा सच ये है कि हालात हमेशा हमारे मन के मुताबिक नहीं होते, लेकिन उन हालात में हम क्या बनते हैं और वो पूरी तरह हमारे साथ में होते हैं। जी हाँ, हार हर इंसान को मिलती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हार मान लेता है और कोई उसी हार से सीखकर आगे बढ़ जाता है। अगर आज थक गए हों तो रुक जाना गलत नहीं, लेकिन डर की वजह से चलना छोड़ देना यही असली हार है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि आज जो लोग आज तुम पर जो शक कर रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही कल तुम्हारी मेहनत की मिसाल देंगे। बस चलते रहो, धीमे सही लेकिन रुको मत।

0: गीत के साथ ही आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, 8 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से

0: एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शाहदुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमी कंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सारण में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खोट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृहमंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्योर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच

0: के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000

0: रुपए के सौदे स्वीकृत, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिन्दुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट बीएमएस जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला तीन तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Ashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruised into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Uran scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and

0: including the Union Home Secretary and the Union Agriculture and Farmers Welfare Secretary, were present at the meeting yesterday. During the meeting, Mr. Shah said the government is continuously monitoring the situation regarding below normal rainfall and potential drought conditions in certain parts of the country due to El Nino. He directed the Ministry of Agriculture and all related ministries to remain vigilant and coordinate with the state governments to advise farmers on the appropriate crops to sow. Mr. Shah instructed officials from the Department of Water Resources to monitor all water reservoirs across the country. The claims circulating in social media that E20 fuel, which is a blend of 20% ethanol and 80% petrol, causes a drop in vehicle mileage are misleading. According to extensive field trials led by the Automotive Research Association of India, in collaboration with Indian Oil Corporation Limited, Indian Institute of Petroleum, Dehradun, and the Society of Indian Automobile Manufacturers, no significant negative impact on vehicle fuel efficiency has been demonstrated. The trials covered approximately 40,000 kilometers on passenger cars and 20,000 kilometers on two-wheelers. It said the mileage is influenced by many factors beyond fuel type, including driving habits, maintenance, tire pressure and alignment, and air conditioning load. In Jammu and Kashmir, a total of 12,168 pilgrims paid obeisance at the Holi Cave Shrine on the opening day of the annual Amarnath Yatra yesterday, as the pilgrimage began from the twin base camps of Baltal and Pahalgam. The yatra commenced in the early hours from both the traditional 48-kilometer Noonman Pahalgam route and the shorter 14-kilometer Baltal route, despite intermittent rainfall. Pilgrims, including men, women, and sadhus, began their journey to the 3,880-meter high Holi Cave Shrine amid chants of Bam Bam Bhole, after being flagged off by the respective deputy commissioners and senior superintendents of police from the two base camps. Governor of Bihar, Lieutenant General Syed Atta Hussain, and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita represented India at the funeral ceremony for the former Supreme Leader of Iran, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, in Tehran. In a social media post, Mr. Margarita said they conveyed respect on behalf of the government and the people of India. They also extended condolences to the families of those who lost their lives in the recent conflict. On to sports. In the FIFA World Cup, Argentina beat Cabo Verde 3-2 after extra time in a thrilling round of 32 match at Miami Gardens in the US to enter the round of 16. Earlier, Egypt advanced after defeating Australia 4-2 in a penalty shootout at Arlington in the US. We have a report.
1: Defending champions Argentina survived a major scare against Cabo Verde, a nation of just over 5 lakh people, before booking their place in the round of 16. Lionel Messi put Argentina ahead in the 29th minute with his 7th goal of the tournament and the 20th World Cup goal of his career in his 30th appearance across 6 editions. Diroy Duarte restored parity for Cabo Verde in the 59th minute, forcing the match into extra time. Lisandro Martinez gave Argentina the lead once again, but Sidney Lopes Cabral produced a stunning equalizer to keep down dog's dream alive. The decisive moment came in the 111th minute when Cristiano Romero's header from a Messi corner deflected off Dina Borges and into the net for an own goal, sealing Argentina's dramatic victory. Earlier, Australia and Egypt were tied 1-1 after regulation time and goalless extra time before Egypt prevailed 4-2 in the penalty shootout to register their first ever World Cup knockout stage victory. Argentina will now face Egypt in the round of 16 on Tuesday. Malik from Sports Desk for Akashvani News.
0: In the final round of 32 match of the FIFA World Cup, Colombia are leading against Ghana 1-0. John Arias put Colombia ahead in the 14th minute with a close range finish. The winners of this match will face Switzerland in the round of 16. In men's cricket, the second T20 international between India and England will be played in Manchester today. The match will begin at 7 this evening, Indian time. The opening game of the five-match series was abandoned due to rain at Chesterley Street. The IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Odisha for today. Heavy to very heavy rainfall conditions are expected over East Rajasthan, East Madhya Pradesh, coastal Karnataka, Telangana and Vidarbha for next 2 days. Meanwhile, in Delhi, the sky is likely to remain cloudy with the possibility of light rain today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
2: Thank you, Anuja. All the dailies have covered the news on the rapidly warming oceans, raising the likelihood of heat waves, droughts and heavy rainfall across large parts of the world. Hindustan Times writes, El Nino to intensify rapidly by September, set off weather chaos. A headline in the Statesman says, India emerges as one of the lowest cost major solar power markets globally. Sent to summon Meta officials over alleged child sexual abuse ads on Instagram, cites the Times of India. An editorial in the Pioneer states a recent judgment in the Apex Court, the landmark judgment, recognizes homemakers as nation builders. The article adds that 15-17% of the GDP is contributed by unpaid caregiving work, household or unrecognized work. The Asian Age and all other dailies have noticed the Defense Acquisition Council clearing over 50,000 crore rupees of military purchases for all three services to boost combat readiness. All the dailies have noticed the government's order on removal of the three Chinese apps after these were allegedly found being misused for stalling e-rickshaws. The Hindu writes, SIT likely to re-audit Ram Temple Trust accounts for 5 years. And finally, a report in Times of India states, Bangalore, Chandigarh and Delhi having the highest average income in the country. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery and petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals and men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीनफील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एल नीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्क साली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक रोजा दौरे पर जाएंगे। पहले वो राजस्थान जाएंगे जहां वो आज सुबह जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी बालोतरा जाएंगे जहां वो आज दोपहर तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रूपये की लागत आई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: उम्मीद है कि रियासत के मगरबी जिलों में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से सरमायाकारी, रोजगार और सनअती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट से एमएसएमईज, पैकेजिंग, कपड़े की सनअतों, ऑटो कलपुर्जों और एग्री फिल्म जैसे स्टोरों को भी फरोग हासिल होगा, जिससे रियासत की मईशत में एक नई तकनीक पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के चैलेंजिंग सेना में बनाया गया है जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से शुमाल जनूब राहदारी खासतौर पर शहर की कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को फरोग हासिल होगा। इस राहदारी से मेट्रो ट्रेन हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से मजबूत हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के इस प्रोग्राम के रवां टेलीकास्ट के लिए रियासत के सभी जिला सदर दफ्तरों शहरी बलदियाती इदारों और ग्राम पंचायतों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: बाद में शाम को वजीर आजम मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। यहां वो अहमदाबाद के सनंद इलाके में बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजुर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सफर में एक अहम संग मील है, जिसके तहत भारत के पहले शुरू से आखिर तक चिप पैकेजिंग यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजुर्बाती मरकज ओसैट से एक खुद कफील टेक्नोलॉजी इको निजाम की जानिब भारत के सफर में एक बड़े संग मील की अक्कासी होती है। इस यूनिट में मसनू इजारत और आला कारकर्दगी वाली कंप्यूटिंग के शोबों में तेजी से तरक्की हुई है। यह यूनिट एडवांस मेमोरी और स्टोरेज के लिए आलमी मांग को पूरा करने के मकसद से कायम किया गया है। सनंद में ज्यादा पैदावार से आम सनतों में आलमी और घरेलू सार्फिन को बराह रास्त फायदा होगा। इन सनतों को ऑटोमेटिव सनती खुदकारी 5G मवासलात और इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: गुजरात के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ATS ने पाकिस्तान में कायम ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन अफराद को गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से कल एक साथ की गई कार्रवाईयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS के मुताबिक मुलजमीन पाकिस्तानी आकाओं के राबते में थे और अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मजीद तौसी देने के लिए गुजरात में एक सरगर्म नेटवर्क कायम करने के लिए जैश ए मोहम्मद की जानिब से सरगर्म अमल थे। ये अफराद जैश ए मोहम्मद के नुक्ते नजर की तशहीर के लिए उनके मवाद को गुजराती जबान में तर्जुमा करने का काम भी कर रहे थे। कौमी राजधानी में अब तक 1,02,000 से ज्यादा शुमारियाती फॉर्म्स डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर के मुताबिक दिल्ली में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के अमल के हिस्से के तौर पर तकरीबन 33,14,000 फॉर्म्स तकसीम किए गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर शुमारियाती फॉर्म्स तकसीम करने का काम फिलहाल जारी है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की बरामदात के अपने निशाने को हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तहत रवां माली साल की पहली सहमाही में तकरीबन 15% सालाना बरामदात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। कल नई दिल्ली में तिजारती मीटिंग के बोर्ड से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस निशाने को हासिल करने के लिए अशिया की बरामदाद में इजाफे की जरूरत होगी। ये बरामदाद अभी तकरीबन 480 अरब अमरीकी डॉलर्स की हैं, जिसमें इजाफा करके इन्हें तकरीबन 530 अरब अमरीकी डॉलर मालियत का किया जाएगा, जबकि खिदमात की बरामदात में सरदस्त तकरीबन 421 अरब डॉलर की मालियात में इजाफा करके इसे तकरीबन 470 अरब अमरीकी डॉलर किया जाएगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह और ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एलनिनो की वजह से मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात से मुतालिक सूरतेहाल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के कुछ इलाकों में एलनिनो की वजह से मामूल से कम बारिश और खुश्क साली के इम्कानी हालात से मुतालिक सूरतेहाल पर लगातार करीबी नजर रख रही है। उन्होंने ज़राअत की वजारत और मुतालिका वजारतों को हिदायत दी कि वह चौकन्ना रहें और रियासती सरकारों के साथ तालमेल रखें ताकि किसानों को सही फसल बोने के बारे में मशवरा दिया जा सके। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सदाकत मोतबरियत और आला तरीन पेशावराना मियारात पर अहदबस्ता रहना चाहिए। कल नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि जब मीडिया मुत्तला करता है, सवालात करता है और मोतबरियत बरकरार रखते हुए अवामी मुबाहसे को फरोग देता है तो जमहूरियत को फरोग हासिल होता है। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में हर रोज हजारों यात्री पहुंच रहे हैं। इस मौके पर अकीदतमंदों, सयाहों और मकामी लोगों के लिए नई दिलचस्प

0: यात्रियों को 3,880 मीटर बुलंदी पर वाक पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यात्रियों से अपील की गई है कि वो पेशगी इंदराज के बाद उनके लिए मखसूस की गई तारीखों पर ही पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाएं। ईरान में साबिक रूहानी पेशवाए आजम आयतुल्ला सैयद अली खामनई की सरकारी तौर पर 6 रोजा आखिरी रसूम की तैयारियां जारी हैं। ईरान के सीनियर रहनुमा, फौजी कमांडर्स और गैर मुल्की शख्सियतों ने आयतुल्ला अली खामनई को ईरान के मुसल्ला अजीम में खराज अकीदत पेश किया। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और खारिजी उमूर के वजीर मुमलिकत पवित्रा मार्गरेटा ने आखिरी रसूम में शिरकत की। उनके जसद खाकी का जुलूस अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद मुकद्दस शहर मशहद में इस महीने की 9 तारीख को उनकी तदफीन कर दी जाएगी। सरकारी तौर पर यह सोग 40 दिन तक जारी रहेगा। भारतीय आला इंतखाबी कमिश्नर जनाब ज्ञानेश कुमार आज दो रोजा दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद उनका यह रियासत का पहला दौरा होगा। पहले दिन वो इंदौर पहुंचेंगे जहां वो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दौरे के दूसरे दिन जनाब कुमार ओमकारेश्वर और महेश्वर के मजहबी और तारीखी मकाम जाएंगे। आयुर्वेदिक उलूम में तहकीक के मरकजी काउंसिल CCRAS ने कल नई दिल्ली में अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 5वीं मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग आयुष वजारत के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा की सदारत में मुनाकिद की गई। वजारत ने बताया कि यह मीटिंग शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निजाम को मुस्तहकम बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इस इको निजाम में आयुर्वेद की तालीम, तहकीक, साइंसी मवासलात और डिजिटल हुक्मरानी को फरोग देने के मकसद से 3 बड़े इकदाम किए गए हैं। CCRAS के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य ने कहा कि काउंसिल शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निजाम की तामीर का पाबंद है जिससे आयुर्वेद को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल होगी। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मगरबी मध्य प्रदेश और ओडिशा में शदीद से शदीद तर और कहीं कहीं पर इंतहाई शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी तरह मशरकी राजस्थान, मशरकी मध्य प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले 2 दिन के लिए शदीद से शदीद तर बारिश की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान आज दिल्ली में बादल छाये रहने और हल्की बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कल दर्ज हरारत से ज्यादा तकरीबन 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक और कम से कम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की पेशगोई की है। महकमे ने जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में अगले चंद दिनों में गरज चमक के साथ औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई के साथ इक्का दुक्का मकामात पर अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने का अंदेशा जाहिर किया है। महकमे ने लोगों को नालों, झरनों और चट्टाने खिसकने के खतरे वाले इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया है। उधर केरलम में आज इक्का दुक्का मकामात पर शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के 14 जिलों में से 11 में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फीफा आलमी कप में अमरीका के मियामी गार्डन्स में खेले गए नॉकआउट के एक सनसनीखेज मैच में इजाफी वक्त दिए जाने के बाद अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। जबकि अमरीका के शहर एलिंगटन में खेले गए एक दूसरे नॉकआउट मैच में मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था बारिश के सबब रोक देना पड़ा था। तीसरा मैच 7 जुलाई नॉटिंघम में खेला जाएगा। ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन आखिरी 2 मैचों की मेजबानी करेंगे। ये सीरीज 11 जुलाई को खत्म होगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैन अलाक्वामी मैच की सीरीज खेली जाएगी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में होने वाली मीटिंग में हुकूमत ने 52,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दी जिसे मुसल्ला अफवाज की सलाहियत बढ़ाने और उन्हें जदीद तरीन हथियारों से लैस करने की

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी योग फॉर हेल्दी एजिंग। योग एक समग्र दृष्टिकोण है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। स्वस्थ आयु के लिए योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रोताओं को विभिन्न योग आसनों की जानकारी के साथ सही प्रकार से योग आसन की मुद्रा के प्रदर्शन के लिए आकाशवाणी दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग द्वारा भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में एक सजीव लेक्चर और योग डेमोन्स्ट्रेशन सेशन का आयोजन हुआ। आमंत्रित विशेषज्ञ थी योग थेरेपिस्ट, प्रकृति योग और अल्टरनेट थेरेपी की डायरेक्टर डॉ नीलम जोशी कांठपाल। कार्यक्रम में विशेषज्ञ ने आमंत्रित अतिथियों की योग संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया। इसके बाद कक्षा सातवीं की छात्रा काशवी सिंह द्वारा योग नृत्य का प्रदर्शन किया गया। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट योग चैंपियनशिप सहित कई योग चैंपियनशिप्स प्राप्त की हैं। प्रस्तुत है इसी कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम जोशी कांठपाल आज आपके सामने बहुत ही अच्छे एक टॉपिक के साथ आई हूँ, जिसका है कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो ये जो दिवस है ये बहुत ही ज्यादा एक ऊर्जा से भरपूर हमें कर देता है पूरे साल के लिए। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था आपके यहाँ पे और उससे पहले भी। तो हम लोग हर साल एक संकल्प लेते हैं कि अब योगा डे आ गया है और अब पूरे साल के लिए हम फिर से ऊर्जावान हो गए हैं। तो ये इस ऊर्जा को भरने के लिए हम एक सेलिब्रेशन करते हैं योगा डे के रूप में। तो इस बार का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। उसमें योग की क्या भूमिका है, तो देखा जाए तो ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और गंभीर है, क्योंकि इस बारे में हम नहीं सोचते कभी भी। जब एज आ जाती है या जब बुढ़ापा आ जाता है तब हमको कुछ सोचते हैं कि पहले से कर लिया होता काश, या एक रूटीन फॉलो किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो एजिंग है या जो एज का बढ़ना है वो प्राकृतिक है, प्रकृति उसको होना ही होना है हमारे साथ। मतलब हर एक इंसान पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो एक नियति चलती रहती है। तो वो तो एक

शाश्वत सत्य है कि वो होगा, लेकिन हम कितना अवेयर हैं उस चीज के लिए, हम कितना कॉन्शियस हैं कि ये स्थिति जब आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा एक जो बच्चा होता है जब वो जैसे एग्जाम होते हैं, एक साल के बाद एग्जाम होते हैं, तो दो बच्चे हैं मान लीजिए, एक बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहा है, मतलब डे वन से उसने पढ़ाई करी, नोट्स बनाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करे अपने, और फिर उसने एग्जाम दिया, और एक बच्चा ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, कल एग्जाम है और आज पढ़ रहा है और कल उसको एग्जाम देना, तो किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, या कौन एक सिक्योर है जो पहले से पढ़ रहा है, जो डे वन से पढ़ रहा है, उसको कोई डर नहीं है, ना ही उसको कोई प्रेशर है, ना ही उसको कोई डर है कि मैं एग्जाम में फेल होऊंगा, और जो एक दिन पहले पढ़ रहा है उसको पूरा डर है, 99% उसको डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, उसको पता है, और उसको ये भी पता है कि मैंने लापरवाही की है और मैंने पढ़ाई नहीं की, तो हमको वो नहीं बनना। हमें ये भी पता है, सबको मालूम है एजिंग है, एज आनी है, बुढ़ापा आना है, एज चलनी ही है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करें, रोज रूटीन में उसको फॉलो करें। तो योगा हमको यही करता है, उससे जोड़ता है, हमें अपने आप से जोड़ता है, हमारी चेतना से जोड़ता है, मतलब हम जो कर रहे हैं उसके लिए अवेयर हैं, क्योंकि रूटीन हमारा सबका बिजी होता है, रोज जो हम काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक वो बिजी शेड्यूल है, पर अगर हम माइंड में योग को रखते हैं, योग के लिए अवेयर हैं, तो हम अपनी हेल्थ के साथ चलते हैं, मतलब जैसे कहा भी गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हम कुछ भी कार्य करेंगे तो शरीर के माध्यम से ही करेंगे, उसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, तो योग के साथ अगर हम जुड़ते हैं, योग के साथ अगर हम चलते हैं, तो हम समस्याओं से दूर रहेंगे। तो ये जो विचार था ना, ये योग दिवस का जो विचार था या योग का जो विचार है, ये कोई दिवस नहीं है बल्कि विचार है। कैसे? क्योंकि जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने जब योग को दिया था, इसीलिए दिया था क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा गया है जीवेम शरदा सतम, मतलब आप 100 साल तक जिए, निरोगी होकर जिए, बीमार होकर ना जिए, इसलिए योग को दिया गया था। हम उसको भूल गए और एलोपैथिक दवाइयों में, बाकी चीजों में हम लग गए, तो जो एक्चुअल में पद्धति थी उसको हम भूल गए। तो जीवेम शरदा सतम, मतलब 100 साल तक जिए तो निरोगी होकर जिए, सुखी होकर जिए। अब होता क्या है, जब हम कोई चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, या हम हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है, या हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो बीमार तो होना ही होना है, एजिंग तो होनी होनी है, उम्र तो बढ़नी ही बढ़नी है। अब बूढ़ा जो होना है वो दुख के साथ होना है या सुख के साथ होना है, ये हमारी चॉइस है। बूढ़ा जो होना है वो दुख के साथ बूढ़ा होना है हमने, या सुख के साथ होना है, अपने आप पे कंट्रोल रख के होना है, या बिस्तर में पड़ के होना है, या दूसरों पे आश्रित होके होना है, ये टोटली हमारी चॉइस है, हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। आपने देखा पहले जमाने में जो ऋषि मुनि का टाइम था, उस समय जो एज होती थी वो 200 साल की होती थी, 200, 250, 150, 100, 100 तो मिनिमम। धीरे धीरे धीरे वो एज, अब तो 100 मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग होते हैं, 60, 70, 80, बच्चे भी हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो चीजें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? हमारी लापरवाही की वजह से। प्रकृति ने नहीं कहा कभी भी ऐसा कि आप जल्दी इस संसार से चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो हमारी गलतियां और हमारी त्रुटियां जो है वो हमारे लिए भारी पड़ती हैं हमेशा। अब जैसे नदी होती है, एक नदी क्या करती है, जब पहाड़ों से निकलती है तो खूब आवेग के साथ निकलती है, बहुत तेज होती है उसकी रफ्तार, फिर वो धीरे धीरे मैदान में आती है, मैदान में थोड़ी सी उसकी रफ्तार कम हो जाती है, फिर वो जाती है समुद्र की तरफ, तो बिल्कुल धीमी पड़ जाती है, मतलब बहुत ही स्लो हो जाती है, धीरे धीरे समुद्र में उसका समागम हो जाता है। तो ऐसी एज भी होती है, जब हम छोटे होते हैं, चंचल स्वभाव होता है, फिर हम जवानी आती है, फिर थोड़ा सा काम में बिजी हो जाते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं, बुढ़ापे आने तक बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है। अब इसमें हम योग को कैसे जोड़ सकते हैं? योग के माध्यम से, अब जैसे कि योग में भी कहा गया है कि जीवन जीने की कला है योग, समत्वम योग उच्चते, जैसा बोला गया लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल में अगर योग को जोड़ेंगे तो हम मानसिक रूप से भी वीक नहीं पड़ेंगे, भावनात्मक रूप से भी वीक नहीं पड़ेंगे, और शारीरिक रूप से भी वीक नहीं पड़ेंगे अगर हम योग को अपने साथ रखते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मांसपेशियां हैं तो एज के साथ साथ वो ढीली पड़ने लगती हैं, जब हमारे जॉइंट पेन शुरू होने लगता है, या घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, शोल्डर पेन शुरू हो जाता है, कमर वीक होने लग जाती है, 90 डिग्री बेंड होनी शुरू हो जाती है एज के साथ। तो जब हम योग को शामिल करते हैं तो उसमें हम जैसे कुछ कुछ एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं योगा के द्वारा, हम साथ साथ में करते भी रहते हैं, जिसमें हाथ वाली जैसे स्ट्रेचिंग हम करेंगे, हाथ की एक्सरसाइजेस, धीरे धीरे हाथ

0: बोलिए ऐसे धीरे, सूक्ष्म व्यायाम टाइप का। इसको बच्चे भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं और बूढ़े भी कर सकते हैं। और इसको आप कभी भी बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे 10 टाइम्स स्ट्रेचिंग करेंगे। ये हम शारीरिक रूप से योगा को जोड़ रहे हैं। इसके बाद 10 अप एंड डाउन। अब इसमें अगर ब्रीदिंग को जोड़ देंगे तो आपका मन भी लगना शुरू हो जाएगा। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये डेली की एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज सब करते हैं लेकिन उसको सही तरीके से करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ताड़ासन की पोजीशन में आ जाइए, ऐसे स्ट्रेच, ठीक है। हाथ बिल्कुल सीधा, एल्बो स्ट्रेट, अब 10 पीछे, 1। स्पाइन के लिए एक्सरसाइज, स्पाइन और सर्वाइकल, 1, 2, 3, 4, 5। आपको पता है ओल्ड एज में जितनी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी आप बीमारियों से उतना दूर रहेंगे। अगर आपको अपनी जानना है कि मैं बीमार कब पड़ूंगा, कितना वो करूंगा, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी देख लीजिए अपनी स्पाइन की। जितनी फ्लेक्सिबल स्पाइन है उतनी बीमारियां हमसे दूर हैं। ये तो हो गई शोल्डर की स्ट्रेचिंग। नेक की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एरिया जो होता है सर्वाइकल का, ये नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। आप जब नीचे झुक के काम करते हैं या फोन देखते हैं तो यहाँ स्टिफनेस बढ़ जाती है इस एरिया में। उस वजह से एक एज के बाद वर्टिगो का प्रॉब्लम या चक्कर का आना, ये सब प्रॉब्लम, माइग्रेन के अटैक्स, ये सब यहाँ की वजह से ही आते हैं। तो आप रेगुलरली अगर इस एक्सरसाइज को करेंगे ऐसे ऊपर और सीधा 10 टाइम्स, 5 to 10, जैसा भी आपको टाइम हो, ऐसे एक्सरसाइज करनी है अप एंड स्ट्रेट स्लोली। ब्रीदिंग इसमें भी इनहेल एक्सहेल। इसको आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत देर हो गई काम करते हुए तो 2 मिनट आप स्ट्रेच करिए ऐसे लेफ्ट एंड राइट। ये बच्चे, यूथ, कोई किसी भी एज ग्रुप के, और स्टार्टिंग से करोगे तो स्टिफनेस कभी आएगी नहीं। ये एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। कान जरूर खींचना है, कान खींचना नहीं भूलना है आपको। कान खींचने से क्या होता है, कोई बताएंगे कान क्यों खींचे जाते हैं?
1: वैस्कुलर फोर्स को बैलेंस भी करता है।
0: यस, इसमें 60,000 पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के, जिससे कि हमारी जैसे मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, मेमोरी इंक्रीज होती है और नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है। और इसको खींचते रहेंगे तो आपकी एक तो कफ भी नहीं जमा होगा। कई बार बुढ़ापे में आपने देखा आवाजें आती है कान की, कई लोग बुजुर्ग बोलते हैं कान से कुछ ड्रम की आवाज आ रही है या टन टन की आवाज आ रही है या कफ का कंजेशन हो रहा है, वो भी नहीं होता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके कान खींचने के। और स्ट्रेस रिलीज करता है। अगर आप थके हैं ना दिन भर और आपको या तो गुस्सा आ रहा है या स्ट्रेस ज्यादा है, आप कान को खींचना शुरू कर दो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखने में सब इजी एक्सरसाइजेस होती हैं लेकिन ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए और पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए, जो कि आपका कंडक्टर है, पूरी बॉडी को चला रहा है, सारे हार्मोन को बैलेंस कर रहा है, ऑर्गन्स को कंडक्ट कर रहा है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस है जो माइंड को हमारे कंट्रोल करता है। एक एज के बाद क्या होता है ना, हम इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं। बॉडी तो खैर काम नहीं करती, बॉडी भी वीक हो जाती है, लेकिन ये सब एक्सरसाइजेस अगर आप कर रहे हो तो पेशेंस लेवल बढ़ा रहता है आपका, आपके अंदर कंट्रोल बढ़ा रहता है चीजों को लेके। ऐसे रोटेट करेंगे शोल्डर तो पेशेंस लेवल इंक्रीज करता है, कंट्रोलिंग बढ़ जाती है आपकी, लंग्स भी एक्सटेंड होते हैं, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है। ब्रीदिंग पे भी ध्यान दें, डीप ब्रीदिंग। आप पीछे ऐसे हाथ पीछे रखिए, बटरफ्लाई नेक अप, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। इसको आप अपने समय के अनुसार कितना भी कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, या 2 बार कर लीजिए मॉर्निंग में, इवनिंग में, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे कर सकते हैं। ट्विस्टिंग कर सकते हैं बैठे बैठे भी, ऐसे एक हाथ ऊपर रखिए, खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। सांस लिया, छोड़ दिया, ये ट्विस्टिंग है। स्पाइन को कभी स्टिफ नहीं होने देगा, ज्यादा टाइम नहीं, अगर आप करते हो तो 10-15 मिनट में ही आपकी एक्सरसाइजेस पूरी हो जाती हैं। इसके बाद हम पैर वाली थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे एक्सरसाइजेस, क्योंकि आपने देखा है कभी आपको पेन हो रहा हो, घुटने में दर्द हो रहा हो या एंकल में कहीं भी पेन हो रहा हो, तो किसी भी चीज में मन लगता है हमारा, किसी चीज में मन लगता है, नहीं लगता है, हमारा मन दुखी हो जाता है क्योंकि हमें पेन हो रहा होता है। तो अगर मन दुखी है तो शरीर नहीं चलता और शरीर दुखी है तो मन नहीं चलता, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दोनों के ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। ऐसे स्ट्रेच, इसमें इनहेल देखिए ऐसे होगा पीछे, इनहेल एक्सहेल। फील कहाँ करना है, काफ में, काफ मसल्स को स्ट्रेच करना है, इनहेल स्ट्रेच एक्सहेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक एज के बाद आपने वेरिकोज वेन्स की शिकायत देखी होगी, वेन्स बाहर आ जाती हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की, उलझ जाती है, जैसे वो होता है ना जाल सा बन जाता है वेरिकोज वेन्स का, तो वो सर्कुलेशन अगर ये खुला रहेगा ना, किसी को

और ना ही बीपी हाई होगा अगर ये आर्टरीज और वेन्स खुली रहेंगी डाउनवर्ड, क्योंकि प्रेशर डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। जो हार्ट का प्रेशर ऊपर की तरफ होता है वो डाउनवर्ड आना शुरू हो जाता है। आपने देखा जब बीपी हाई होता है या डायबिटीज होती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं वॉक करो, घूमो। क्यों कहते हैं वॉक करो? ताकि पैर की नसें खुल जाए, आपकी आर्टरीज वेन्स खुल जाए, ब्लड का फ्लो नीचे आ जाए, डाउनवर्ड जो प्रेशर ऊपर बना हुआ है सर की तरफ हैवीनेस वो डाउनवर्ड आ जाए। और जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं ना, अगर 10-15 मिनट भी कर ली तो आपको एक घंटे की वॉक का बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। अगर नहीं टाइम है बाहर जाने का, आप घर पे बैठ के ये वाला सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। आपने देखा टायर्डनेस भी सबसे ज्यादा पैरों में ही फील होती है जब हम थके होते हैं, या शाम होती है इवनिंग तक पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। ये ऐसी एक्सरसाइज है किसी भी एज ग्रुप पे हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान क्या देना है, एक पैर ऊपर रहेगा ये स्ट्रेच रहेगा, ये बिना स्ट्रेच के आप नहीं करोगे, ये वाला स्ट्रेच रहेगा। ये इसको बैंड करिए नीचे और फिर टमी प्रेस करिए, पैर सीधा रखिए 5 to 10 टाइम्स। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस है। चक्की 5 clock 5 antique, पर देखिए एल्बो नहीं बैंड होगी आपकी, चक्की में ऐसे रोटेशन सीधा स्ट्रेट 5 clock 5 antique clock। हमको क्या करना है, टमी को रोटेट करना है। ध्यान दीजिए, देखो ध्यान देके करेंगे तो अब दूसरे पैर से भी ऐसे करेंगे। पहले अप एंड डाउन, बॉडी सीधी नीचे फिर ऊपर, कमर सीधी। इससे क्या होता है आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है या पेनक्रियाज नहीं काम कर रहा है, डायबिटीज है, फैटी लीवर है, तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइजेस हैं। मोशन डेली आएगा, कुछ कुछ खाते हैं ना बुजुर्ग लोग, चूरन चटनी डेली कुछ कुछ चलता रहता है पेट साफ करने के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रेगुलरली इस सब एक्सरसाइजेस को करेंगे तो हमारी इंटेस्टाइन एक्टिवेट रहेंगे। अपने टाइम के अनुसार जिसको जितना समय है वो उस हिसाब से करें। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है मंडूकासन, जो हम डायबिटीज के लिए करते हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन जिससे सही होता है। ऐसे वज्रासन में जो नहीं बैठ पा रहे आराम से सुखासन में बैठो। अब नाभि के दोनों तरफ हाथ ऐसे डालने हैं, अंदर प्रेशर देना है दो पॉइंट्स पे, ब्रीद इन आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, जितना भी जा पा रहे अपने आराम से जाइए 4 to 5 times या 10 times। अब ऐसे करके उष्ट्रासन, घुटने पे आए, कमर पे हाथ रखें और बैक बेंडिंग करें ऐसे, इनहेल एक्सहेल। और जिनको घुटने में दर्द है, एक एज के बाद क्या होता है एजिंग का इफेक्ट क्या आता है हमारे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बॉडी में भी चेंजेस आने शुरू होते हैं, जिसको कि बायोलॉजिकल एजिंग बोलते हैं, बायोलॉजिकल एजिंग, तो वो आती आती है, उसमें यही सब चेंजेस आते हैं। तो जिनकी ग्रीस कम हो गई है, घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, उसके लिए रेगुलरली ये एक्सरसाइजेस करो आप, तो ग्रीस कम नहीं होगी। आजकल देखा आपने नी ट्रांसप्लांट के केसेस कितने ज्यादा, कि जिसको वो देखो नी ट्रांसप्लांट करा लो, क्यों करा लो, जो आपको नेचर ने दिया है वो उस पार्ट को आप वापस ला सकते हैं कभी नहीं, तो उसको बचा के रखिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो बोल है ना नी बोल, इसको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, नी की एक्सरसाइज 5 1 2 3 4 5, ये नी जॉइंट की एक्सरसाइज है, नी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंटी क्लॉक 1 2 3 4 एंड 5, फिर ऐसे पकड़िए इसको जैसे बच्चे को पकड़ते हैं ना गोद पे, 1 2 3 4 5। अब इसको टच होता है तो करिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो ये तो हुई योगा की बात, फिजिकल बॉडी की बात। अब थोड़ी सी मेंटल बॉडी की बात कर लेते हैं। मेंटल बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, प्राणायाम इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। प्राणायाम तो हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्राणायाम के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, खुली हवा हो तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें जो एंटी एजिंग प्राणायाम है जिसमें हम यूज करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, सबसे बेस्ट होता है अनुलोम विलोम, जिसको हम लेफ्ट टू राइट एक बार करें इसको, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में और ऐसे प्रणव मुद्रा बनाएंगे, रिंग फिंगर और थंब का यूज करते हैं ऐसे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये क्या करता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो हमारी सर पे ब्रेन में होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो टमी बाहर आना चाहिए, जैसे गुब्बारे में समझ लीजिए कि गुब्बारा है, बलून है, हवा भरी तो बाहर आया। अब जब इसको बाहर करते हैं तो लंग्स ऑटोमेटिकली भर जाते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है या आपको चक्कर आ रहे हैं या स्ट्रेस हो रहा है, तो आप डीप ब्रीदिंग शुरू कर दो, हाथ ना भी लगाओ चलेगा। आप देखोगे इतना रिलैक्स फील हो रहा है, आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया है। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो आपको करना ही करना है। दूसरा एक दांतों के लिए एक्सरसाइज, जैसे पायरिया की शिकायत हो जाती है, गम्स का ब्लड आना, और एक एज के बाद

दांत भी जवाब दे जाते हैं। तो हवा भरनी है, शीतली शीतकारी प्राणायाम। अब देखो करना क्या है, इसको पी लो और फिर नोज से एक्सहेल करो। ठंडा ठंडा लग रहा है गर्मी में, अगर एसी ना भी हो तो चलेगा। ध्यान लगाना, अगर यहाँ बैठे हैं तो ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, ये भी मेडिटेशन है। यहाँ पर हमने जो अभी किया इतनी देर सारा योगाभ्यास, अगर आपका ध्यान यहाँ पर है तो वो मेडिटेशन है। अलग से बैठ के ऐसे तपस्वी वाली मुद्रा में जरूरत नहीं है आपको, जहाँ जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाना इज मेडिटेशन। ठीक है, हर काम में मन लगाना शुरू कर दो, आपका मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है, ग्रे मैटर बढ़ता है हमारे दिमाग में, ग्रे मैटर। उस वो क्या होता है, एक एज के बाद जो डिसीजन मेकिंग होती है या याददाश्त की क्षमता होती है या नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल आना जो होता है वो ग्रे मैटर करता है, वो इंक्रीज होता है, मतलब बॉडी में बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो मेडिटेशन, योगाभ्यास, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें हमने अपने जीवन में रखनी है। योग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाथ पर हिलाए ये योग है, ऐसा नहीं है। जैसे बोला ना, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु योग युक्त स्वप्न प्रबोधस्य योगो भवति दुखा। मतलब आपका आहार विहार, आपकी लाइफ स्टाइल, सोने का टाइम, जागने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का, पूरी लाइफ स्टाइल आपकी योग के अंदर आती है, योग है। अगर आप नियमित दिनचर्या अपना रहे हैं तो आप योग को फॉलो कर रहे हैं। कई लोगों के माइंड में होता है ये सिर्फ योग है, नहीं। तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि क्या करेंगे, पूरे साल तक हम क्या संकल्प लेते हैं, सब कुछ फॉलो करेंगे। क्या क्या फॉलो करेंगे, खाना पीना, आहार विहार, अपना रूटीन, ये सब कुछ हम फॉलो करेंगे। डाइट में हम क्या कर सकते हैं, एंटी एजिंग जो डाइट है हमारी, सुबह आप एक तो सुबह हल्दी का पानी, कच्ची हल्दी, जैसे आजकल कैंसर के इतने इश्यूज आ रहे हैं, कच्ची हल्दी और तुलसी के पत्ते रात को डाल के या सौंफ भिगा के सुबह, अभी गर्मी के दिन है, सर्दी में मेथी दाना डाल सकते हैं, अभी सौंफ हल्दी और तुलसी के पत्ते डाल के सुबह पानी पीजिए। ग्रीन टी आपको तुलसी की बनानी है, सॉफ्ट वो वाली ग्रीन टी, मार्केट वाली अवॉइड करिए थोड़ा सा। ग्रीन पत्तों का जूस पीजिए, कड़ी पत्ता है, और आपके पीपल के थोड़ा पत्ते ले लिए, नीम के पत्ते ले लीजिए, पुदीने का पत्ता ले लीजिए, धनिया का पत्ता ले लीजिए, सबको पीसिए, एक शॉर्ट टैंक का बना लो इतना सा, उसको डेली कंज्यूम करना शुरू कर दो, तो एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है। मल्टी सीड्स लेने बहुत जरूरी है ग्रीसिंग के लिए, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स हो गए, और आपके मगज के बीज, एक अखरोट, काजू अवॉइड कर सकते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल है, दो चार पांच बादाम, मल्टी सीड्स मिलाइए। एक टीस्पून आपको डेली अपने मील में इंक्लूड करना ही करना है। खाना टाइम पे खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल का इंटेक ज्यादा करना है, पैक्ड फूड जो होते हैं, रिफाइंड फूड हो गए, प्रिजर्वेटिव जिनमें मिला है उनको अवॉइड करना है, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट को अवॉइड करना, व्हाइट सारी चीजें बंद कर दो, मैदा, चीनी, नमक, ब्रेड, जो जो व्हाइट होती है, फर्मेंटेड फूड बंद कर दो, रस, सुबह सुबह कड़ी की शुरुआत चाय के साथ रस से होती है वो बंद कर दो, उसकी जगह रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, रोस्टेड जो भुना चना होता है वो ले लो, ये सब आप अपनी डाइट में, बाकी रोटी सब्जी जो आप खा रहे हैं नियमित, रात को दाल अवॉइड करें, चावल अवॉइड करें, दिन में आप खा सकते हैं, खिचड़ी खा लीजिए, ये सब आप दिन में खा सकते हैं। रात को दाल खाएंगे तो जॉइंट पेन होना बहुत बढ़ जाता है, और सोते समय आप थोड़ा सा जीरा डालिए और एक चुटकी अजवाइन डाल के उसमें काला नमक मिलाइए और सिप सिप करके पी लीजिए। मिल्क प्रोडक्ट बंद करने हैं, अगर आपको जॉइंट पेन से बचना है तो मिल्क प्रोडक्ट प्लीज अवॉइड करिए, उसकी जगह कोकोनट मिल्क आप ले सकते हो, कोकोनट मिल्क का दही भी जमता है, आमंड मिल्क ले सकते हैं, ये सब आप डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। पानी ज्यादा पीजिए, 2 से 3 लीटर, और नियमित व्यायाम कीजिए, ये फुल एंटी एजिंग आपका दिनचर्या रहेगी। इसके साथ ही हम ओम चैंटिंग करते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, धीरे से आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, मन बिल्कुल शांत, मुख में प्रसन्नता का भाव, डीप इनहेल, ओम चैंट करेंगे।

0: अपनी बॉडी में स्प्रेड करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कक्षा सातवीं की छात्रा काशवी सिंह द्वारा योग नृत्य का प्रदर्शन किया गया।

0: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित सजीव योग कार्यक्रम के संपादित अंश सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत और अब प्रस्तुत है योग और संगीत विषय पर एक वार्ता। वार्ताकार हैं संगीत और योग विशेषज्ञ श्री अविनाश कुमार माथुर।
1: दोस्तों, आपने देखा होगा जैसा कि हाल ही में पूरे विश्व ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। यह केवल एक दिवस ही नहीं बल्कि मानवता को भारत की एक अमूल्य देन का उत्सव है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि इस योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और साथ ही हम जानेंगे कि योग और संगीत का आपस में कितना गहरा संबंध है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि योग क्या है। दोस्तों, जब हम योग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में विभिन्न आसनों की तस्वीर आती है। आप लोगों ने देखा होगा हम विभिन्न तरीके के आसन करते हैं योग के दौरान, लेकिन वास्तव में योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग शब्द जो है वो संस्कृत की धातु युज से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योग का उद्देश्य है शरीर का मन से जुड़ना, मन का आत्मा से जुड़ना और आत्मा का परम चेतना से जुड़ना। दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि योगश्चित वृत्ति निरोधा, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को शांत करना ही योग है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मनुष्य बाहरी रूप से तो बहुत विकसित हो गया है लेकिन आंतरिक शांति खोता जा रहा है। दोस्तों, योग हमें उसी शांति की ओर वापस ले जाता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि आज की जिंदगी में तनाव, चिंता, अनिद्रा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अवसाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। योग इन सभी समस्याओं से लड़ने का एक प्राकृतिक और प्रभावी माध्यम है। शरीर को स्वस्थ बनाता है योग, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है योग, मानसिक तनाव को कम करता है योग, सकारात्मक सोच विकसित करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, जीवन में संतुलन लाता है। दोस्तों, अगर हम सिर्फ 20 से 30 मिनट का नियमित योगाभ्यास हमारे पूरे दिन की ऊर्जा को बढ़ा देता है, बदल सकता है। अगर हम नियमित योगाभ्यास करें तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि योग और संगीत का अद्भुत संबंध कैसे है, ये दोनों मिलकर कैसे हमारे जीवन को सुखद बनाते हैं। दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, चाहे वे संगीत हो या योग, मन को शांत करना और चेतना को ऊंचा उठाना। जिस प्रकार योग शरीर और मन में संतुलन स्थापित करता है, उसी प्रकार संगीत भावनाओं और विचारों को संतुलित करता है। भारतीय संगीत में दोस्तों 7 स्वर हैं, सा, रे, ग, मा, प, धा और नी, और योग में 7 प्रमुख चक्रों की अवधारणा है। तो देखिए दोनों में कितनी समानता है। कई विद्वानों का मानना है कि विभिन्न स्वरों की तरंगे शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करती हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान के समय मधुर संगीत सुनता है तो श्वास की गति संतुलित हो जाती है, मस्तिष्क की तरंगें शांत हो जाती हैं, तनाव कम हो जाता है और ध्यान की गहराइयां बढ़ जाती हैं। इसी कारण आज दुनिया भर में म्यूजिक, मेडिटेशन और साउंड हीलिंग जैसी प्रक्रियाएं लोकप्रिय हो रही हैं। अब दोस्तों,

0: मैं आपको बताना चाहूंगा कि संगीत, चिकित्सा और योग दोनों कितने समन्वय के साथ चलते हैं। संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, यह चिकित्सा का भी एक प्रभावी माध्यम है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि शांत संगीत हृदय की गति को नियंत्रित करता है, रक्तचाप कम करने में सहायता करता है, चिंता और तनाव को कम करता है। दोस्तों, जब योग, प्राणायाम और संगीत का संयोजन किया जाता है तो उसका प्रभाव और अधिक गहरा हो जाता है, विशेषकर बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, दैनिक जीवन में हम योग को कैसे अपनाएं, मैं आपको बताता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन योग के लिए घंटों की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, प्रतिदिन 5 मिनट गहरी श्वास लें, 10 मिनट का प्राणायाम करें, 10 मिनट सरल योगासन करें और 5 मिनट का ध्यान करें। इतना अभ्यास भी अगर आप जीवन में सकारात्मक रूप से करें तो वह बहुत ही परिवर्तन ला सकता है। योग केवल एक क्रिया नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। योग हमें सिखाता है कि शरीर को स्वस्थ रखना और मन को शांत रखना और जीवन को सार्थक बनाना, और जब योग के साथ संगीत जुड़ जाता है तब जीवन एक सुरमयी साधना बन जाता है।
1: योग और संगीत, अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे श्री अविनाश कुमार माथुर, संगीत और योग विशेषज्ञ। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, धरती आकाश के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। वैकल्पिक ईंधन जैसे हाइड्रोजन, जैव ईंधन और बिजली और संबंधित प्रौद्योगिकियां पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों का स्थायी और स्वच्छ विकल्प हैं। ये तकनीकी विकास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक ईंधन और प्रौद्योगिकी विकास में CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP देहरादून के कार्य। इस विषय पर सुनिए ये भेंट वार्ता। डॉक्टर अंजन राय, पूर्व निदेशक CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP और वरिष्ठ परामर्शदाता टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी एंसर से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: डॉक्टर अंजन रे जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत साल बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है।
1: सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो CSIR की संस्था है देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, वो संस्थान किस तरह का है और वहाँ किए जा रहे कार्यों का अगर वर्तमान में देखें पर्यावरण कंसर्न को भी लेकर के, क्योंकि ये पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ रिसर्च सेंटर है, तो किस तरह से वो समाज के लोगों को और देश को लाभान्वित कर रहा है?
2: CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो देहरादून में स्थित है, जंगल के अंदर स्थित है और उसी पर्यावरण में जहां पे 250 एकड़ के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, शाम को निकलेंगे तो कभी कभी आपको तेंदुआ से मुलाकात हो जाएगी, कभी कभी हाथी आते हैं, 200 तरीके के पंछियां हैं उधर, 100 तरीके की तितलियां, वहां आएंगे तो लोग समझते भी नहीं है कि पेट्रोलियम का संस्थान है, लोग कहते हैं स्वर्ग है। परंतु वहां पे जो शोध हो रहा है, ये शोध का लक्ष्य यही है कि पेट्रोलियम को कैसे हम उपयुक्त तरीके से प्रयोग करें और साथ में ही कैसे जो मौसम बदलाव और पर्यावरण पे हानि की बातें आती हैं पेट्रोलियम जैसे ईंधनों का, उनको कैसे संभाला जाए। तो मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण यह है कि 2018 अगस्त में हम लोगों ने पेड़ के बीज और अपने रसोई के अपशिष्ट तेल से हवाई जहाज उड़ाए ईंधन बनवा के।
1: अच्छा,
2: देहरादून से दिल्ली आई फ्लाइट स्पाइस जेट की 27 अगस्त 2018 में, 5 केंद्रीय मंत्री दिल्ली में हमें स्वागत करने के लिए विमानतल पर ही खड़े थे हमारे लिए। और फिर उस सफलता के बाद जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ और उसका जो परेड होता है, उसके फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना की AN-32 विमान में भी ईंधन भर के 2019 में फ्लाई पास्ट किया गया। तो ये बड़ा एक मैं कहूंगा चिन्ह था कि देश के शोध में इतनी प्रौद्योगिकी आ चुकी है कि हम ईंधन अपने प्रयोगशाला में बना के हवाई जहाज तक उड़ा सके। अभी 1-2 साल में इसका एक बड़ा प्लांट लगने वाला है मैंगलोर में। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, जो गांव गांव में, शहर शहर में आज के दिन गैस चल रहा है, खासकर शहरों में अभी जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइप

0: नेचुरल गैस है, शायद आपके घर में भी होगा।
1: हाँ, आजकल महानगरों में और खास करके जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनियां हैं, चाहे अथॉरिटी की या बिल्डर्स हाई राइज है, उसमें जो है प्रमुख शहरों में जो पीएनजी गैसें हैं वो सप्लाई की जा रही है।
0: आपको आश्चर्य होगा जान के कि पीएनजी गैस तो सप्लाई हो रही है, परंतु लोग पुराने एलपीजी के स्टोव को ही कुछ जुगाड़ करवा के उसी से रसोई में काम चला रहे हैं। और ये न तो सिर्फ हानिकारक है, खतरेमंद है, क्योंकि पीएनजी और एलपीजी एकदम अलग तरीके के गैस हैं, और जब तक आप बर्नर नहीं चेंज करेंगे, पूरा रेंज नहीं चेंज करेंगे, तब तक ये खतरा रहेगा।
1: ये आपने बहुत काम की जानकारी दी है, क्योंकि अक्सर जब भी कोई नया चूल्हा लिया जाता है तो वो प्रायः एलपीजी के रूप में आता है कि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए एलपीजी के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और दूसरा जब उसको पीएनजी के लिए यूज करना होता है तो उसके पीछे जो एक बर्नर में एक सप्लाई है वो चेंज करना पड़ता है। तो आपने जैसे कहा कि जुगाड़ सिस्टम से लोग उस खर्चे को बचाने के लिए स्थानीय तकनीक पे ही उसको उपयोग करने लगे हैं, जो कि बहुत बड़े खतरे का आमंत्रण है।
0: जी, मैं और भी कहूंगा कि दुख की बात यह है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी अपने कनेक्शन के साथ ये जुगाड़ी कर रहे हैं, एलपीजी स्टोव में ही नॉजल चेंज कर रहे हैं, वो अनुपयुक्त है। सरकार की अपनी पाबंदी है इस पे, आपको पूरा स्टोव चेंज करना पड़ता है। 25% गैस आपका लीक होता रहेगा और ये गैस आयात होता है विदेशी मुद्रा देकर। तो इस शोध का काम हमारे संस्थान ने की थी और इस शोध से कम 14 कंपनियों को इसका लाइसेंस दिया गया कि आप पीएनजी के ही बर्नर बनाओ, पीएनजी के ही स्टोव बनाओ। पर अभी भी क्योंकि जो कंपनी गैस बेच रही है उसको फायदा है कि गैस 25% निकल जाए तो बिलिंग ज्यादा होगी, तो देश के सारे कंपनी अभी भी पीएनजी स्टोव नहीं अपनाए।
1: ये कंपलसरी है
0: सरकार के अपने नियम के अनुसार।
1: आप एक रसायन विज्ञान में भी डॉक्टरेट की उपाधि की है, वो भी आपने एक नोबेल पुरस्कार विजेता के अंदर में किया है। जलवायु संबंधी समस्याएं आ रही है, खास करके पर्यावरण से संबंधित जो बातें होती हैं, जो चिंता का विषय है, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हमेशा प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण रहा है, और अब कहा जाता है कि इस प्रदूषण के कारण भी गर्मी बढ़ती है। इन संस्थानों में क्या इस तरह के भी अनुसंधान किए जा रहे हैं या किए जाने की आवश्यकता है?
0: जी अवश्य, प्रदूषण को लेकर इसका शोध चल रहा है। सीएसआईआर के कई सारी प्रयोगशाला में इसका काम चलता है। एक जगह पर भोपाल में है एम्प्री बोल के सीएसआईआर का प्रयोगशाला, उन्होंने लिखा है कि पराली जो जलती है पराली से कैसे पार्टिकल बोर्ड बने। फिर दिल्ली में ही है केंद्रीय सड़क
1: अनुसंधान संस्थान रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
0: उन्होंने इसी से बिटुमिन बनाया है पराली से, आईआईपी के साथ योगदान करके, कि पराली से ही जो बिटुमिन मतलब जो टार रास्ते पे हम लोग बिछाते हैं रास्ता बनाने के लिए, अलकतरा बोलते हैं जिसको, उसको पराली से कैसे बनाया जाए बिटुमिन। फिर भारत पेट्रोलियम ने अपशिष्ट प्लास्टिक से डीएनडी फ्लाईवे का हिस्सा बनाया है अपशिष्ट प्लास्टिक डाल के, तो काफी सारा शोध हो रहा है कि अपशिष्टों से कैसे उसका सही उपयोग हो ताकि जलवायु परिवर्तन पे प्रभाव कम पड़े।
1: निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि वेस्ट को वेल्थ में कैसे हम बदल सकते हैं, उस अवसर को नहीं चूकना चाहिए, और इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप इंडियन सोसाइटी ऑफ कॉस्मेटिक केमिस्ट के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। बात आती है एक औषधि उद्योग के भी, तेल एवं गैस के भी, बायोटेक्नोलॉजी का भी क्षेत्र बढ़ रहा है, तो इस तरह की जो चीजें हैं उसमें एज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब उसका रिसर्च उसमें किया जाता है तो क्या इस तरह के भी कुछ बाय प्रोडक्ट उपयोगी प्रोडक्ट निकलते हैं, चाहे फार्माकोलॉजी में, कॉस्मेटिक्स में या लुब्रिकेंट वगैरह के लिए? और इसके अलावा भी हम लोगों ने चर्चा की है कि पीएनजी में और एलपीजी में तो उसमें मुख्य रूप से क्या अंतर होता है?
0: पीएनजी हवा से हल्का होता है और एलपीजी हवा से भारी होता है, तो कहीं उत्सर्जन जब होए, कोई भी लीकेज आए हमारे स्टोव से, पीएनजी ऊपर जाएगा, एलपीजी नीचे जाएगा। अब गौर से एलपीजी बर्नर देखेंगे तो उसके जो छेद हैं वो अंदर की ओर होते हैं ताकि भारी गैस अंदर जाके ठीक से जले, और जो पीएनजी का बर्नर होगा उसका छेद जो है ऊपर की ओर जो है रहेगा ताकि भारी गैस ऊपर जाने से पहले जल जाए। तो बर्नर का जो छेदों का जो मतलब पैटर्न है वही अलग रहता है। पहली बात तो वो है
1: जो बर्नर के ऊपर के हिस्से का
0: होल होता है वो भी अलग है, और क्योंकि एलपीजी भारी है तो एलपीजी अलग प्रेशर से चलता है, सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा होता है, पीएनजी का प्रेशर कम होता है। उसका जो मिक्सिंग ट्यूब है आपको दिखेगा भी नहीं, वो भी अलग रहता है। एलपीजी का मिक्सिंग ट्यूब ज्यादा मोटा होता है, अब उसमें मैं पीएनजी के मिक्सिंग ट्यूब से चला दूं तो वो गैस जो है बहुत जल्दी निकल जाएगा ऊपर, पूरे डिजाइन की बात है ये।
1: इसके अलावा इसके रासायनिक रचना में क्या है, जब ये प्रोडक्ट के रूप में निकलता है तो क्या स्टेज होता है इनको अलग अलग करने का?
0: तो जो आपका नेचुरल गैस है वो जब पाइप में डालते हैं उसको हम पीएनजी बोलते हैं, और उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में डालेंगे तो उसको सीएनजी बोलते हैं। माल तो वही है नेचुरल गैस। रासायनिक तौर पर देखें तो ये एक कार्बन अणु और चार हाइड्रोजन अणु मिलकर

0: मीथेन गैस बनता है और एलपीजी में 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन प्रोपेन गैस लगभग होता है। दोनों जो है तेल के फील्ड से आते हैं, पर एलपीजी पेट्रोलियम से आता है और पीएनजी नेचुरल गैस से आता है। मैंने पूछा कि इन सब के साथ जैसे कॉस्मेटिक्स या स्वास्थ्य का क्या जुड़ा हुआ है, तो एक साधारण एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसको हम वैसलीन बोलते हैं या पेट्रोलियम जेली। इसमें पेट्रोलियम वैक्स और मिनरल ऑयल डालते हैं ताकि जब हम चमड़े पे डालें तो चमड़े से जो हमारा वाष्प निकल जाता है, पानी निकल जाता है, चमड़ा ठंड में या सूखे मौसम में न सूखे। यह वैक्स जो है इंडिया में बहुत साल से आयात होता। कुछ ही साल पहले नुमालीगढ़ बोल के रिफाइनरी है असम में, उनके पास जो क्रूड ऑयल आता है, असम के क्रूड बोलते हैं, वो कच्चे तेल का बहुत वैक्स होता है और ये वैक्स के वास्ते उनके पाइपलाइन चौक हो जाते हैं। तो वो रिफाइनरी में क्या करते थे, हाइड्रोजन दबाव डाल के इस वैक्स को डीजल बना देते थे। अब डीजल का भाव आपको मालूम है 80-100 रूपये के आसपास है, टैक्स वैक्स देके रिफाइनरशिप निकलता है थोड़ा कम है उससे, और वैक्स का भाव है 120 रूपये। तो ये पैसा देके वैक्स तोड़ के डीजल बनाते थे। तो हमारी संस्था ने उनको दिखाया कि इससे वैक्स पहले कैसे निकाल लिया जाए, तो जो वैक्स आया थोड़ा था वो तो बंद हो ही गया, वैक्स निर्यात हो रहा है उस रिफाइनरी से।
1: हमें ये क्या बाय प्रोडक्ट में बेकार हो जाता था,
0: बेकार क्या, उसको डीजल बना देते थे करके।
1: अच्छा, उतना एनर्जी भी फिर लगाते थे,
0: एनर्जी लगाते थे और वैक्स ज्यादा महंगा है। हमारी रिफाइनरी का जो प्रॉफिट है वो एक साल में 77 करोड़ बढ़ गया पहले साल में।
1: आपको 2021 में इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा आउटस्टैंडिंग ग्रीन एनर्जी एक्टिविस्ट के लिए ज्यूरी च्वाइस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो ग्रीन एनर्जी की ओर सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन है, खास करके हाइड्रोजन मिशन पे काम चल रहा है। तो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को इस ग्रीन एनर्जी के बारे में भी बताइए कि किस तरह से ये भविष्य की ऊर्जा है, हरित ऊर्जा तो कहते हैं, और किस तरह से उसका अधिक से अधिक उपयोग लोगों को करना चाहिए।
0: मैं पहले कहूंगा कि ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा अपनाने का तरीका यह है, अपनी सारी चीजों की खपत कम करें। जब हम एक नया शर्ट खरीदते हैं उस शर्ट के लिए कोई कहीं किसान ट्रैक्टर चला रहा है, उसके बाद कहीं फैक्ट्री में उस ट्रैक्टर के बाद कपास की मशीन से वो कपड़ा जो है बुना जा रहा है, फिर वो कपड़ा किसी मशीन से शर्ट बन रहा है, फिर वो किसी मशीन से किसी ट्रक से किसी शोरूम में आ रहा है। आप उस शोरूम में जा रहे हैं, उसमें शोरूम के 3 फ्लोर होंगे, आप एलिवेटर एस्केलेटर से एनर्जी खर्चा करके वहां चढ़ रहे हैं। शर्ट फेंकने के पहले नया शर्ट मत खरीदे। जैसे मैं जो आज पैंट पहना हुआ हूं 1995 का पैंट है, अभी तक मैंने नया पैंट नहीं खरीदा। इसको ग्रीन एनर्जी का पहली चीज है खपत कम करें। दूसरी चीज है जो सौर्य ऊर्जा सरकार कर रही है, मैं इसका सराहना करना चाहूंगा। तो मैं कहूंगा कि अपने घरों में प्लीज अपना सोलर पैनल लगाइए और जितने भी आपके मीटर्स हैं, जितने भी अप्लायंसेस हैं, स्मार्ट मीटर लगाइए, ज्यादा स्टार रेटिंग की चीजें लगाइए। कम भाव में कम स्टार रेटिंग के तो मिल जाएंगे, पर एक बार देश के लिए भी और अपने लिए भी खर्चा करके ज्यादा स्टार रेटिंग की चीजें लगाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को ये जलवायु परिवर्तन से कम तकलीफ होगा।
1: माननीय प्रधानमंत्री की दूर की एक सोच ने जब उन्होंने ये कहा था कि वन अर्थ वन ग्रिड की बात की थी कि ऊर्जा की खपत के लिए, और उसके बाद सोलर एनर्जी जनरेशन में क्रांति आई है, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है देश में। नेशनल साइंस एकेडमी के सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी में आपका जो अनुभव है एज एन एडवाइजर, किस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम को और आगे बढ़ाने के लिए, खास करके उसमें जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, युवाओं को, उसके लिए कार्य किया जाना चाहिए या किए जाने की जरूरत है?
0: देखिए, जो मैंने कॉलेज के समय देखा था 1984 में मेरी IIT से पढ़ाई समाप्त हुई, और आज जो IIT में देख रहा हूं जमीन आसमान का अंतर है। आजकल IIT में जो लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं उसमें मैं कहूंगा कि 10% लोग कम से कम स्टार्टअप में जा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मैं कोई नया कोई आइडिया लेके आऊं, कोई आविष्कार लेके आऊं, कोई तरीका लेके आऊं, उसको अपनाने के लिए देश में सिर्फ खरीदारी नहीं है, सरकार भी है। सरकार कह रही है कि आप आइडिया लेके आओ जो हमारे देश के काम में आए। किस किस इलाके में? डीपटेक जो हम कहते हैं, डीपटेक जो है रक्षा प्रणाली, डिफेंस, हमारे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, परमाणु, कंप्यूटर के अंदर जो रहता है सेमीकंडक्टर चिप, स्वास्थ्य, कृषि, सब में आपको डीपटेक चाहिए। और डीपटेक क्या है? डीपटेक यह है कि जो चीजें आज हैं उसके गंभीर तरीके से अनुसंधान करके ऐसे ऐसे समाधान निकालें कि आज के समाधान और कल के समाधान में खर्चा कम हो, पर्यावरण पे प्रभाव कम हो और लोगों को, खासकर अंत्योदय के स्तर पे लोगों को जो है लाभ ज्यादा हो। तो नवम कैपिटल हमारी जो वेंचर कैपिटल फंड है, इसका नाम भी एक थोड़ा अनोखा है संस्कृत में। नवम का मतलब नया भी है और नौ या नौवा भी है, और 10^-9 को कहते हैं हम लोग नैनो, जो विज्ञान का आधार है, और 10^+9 1 बिलियन यानी कि 10 करोड़। ये जो है, कोई कंपनी जब इस साइज से हो जाती है उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न।

0: तो हम नई चीजों से नैनो साइंस करके यूनिकॉर्न बनाने का प्रयास करते हैं।
1: बहुत अच्छा, मुझे याद है कि जब पेटेंट को लेकर के हल्दी और नीम की एक लड़ाई लड़ी गई थी भारतीय वैज्ञानिकों ने CSIR के अंदर के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी थी यूरोपियन और अमेरिका में और उसको जीते थे। तो उस समय CSIR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर जी ने हमें एक इंटरव्यू में हम लोगों को बताया था कि आने वाला समय ऐसा होगा कि भारतीय जो है सरस्वती की आराधना करेंगे, लक्ष्मी का उपार्जन करेंगे। ज्ञान और बुद्धि के और विवेक के उपयोग से भारतीय वैज्ञानिक जो है इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो अपने अनुसंधान के द्वारा जो विद्या है उसका लाभ लक्ष्मी उपार्जन जो आर्थिक रोजगार और आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को अवसर दिला रहे हैं। डॉक्टर अंजन राय जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में अपने निदेशक के जो आपके अनुभव रहे हैं और साथ ही उस तरह के संस्थानों के जो कार्य हैं उससे बने हुए जो उत्पाद हैं और वर्तमान में जो एक आवश्यकता है जो भविष्य के विकसित भारत की आधारशिला बन रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो कि इनोवेशन बेस्ड होना चाहिए, उन सब बातों पर विस्तृत जानकारी आदि, इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप लोगों को भी मुझे आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।
2: वैकल्पिक ईंधन और प्रौद्योगिकी विकास में CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP देहरादून के कार्य। अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। डॉक्टर अंजन राय, पूर्व निदेशक CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP और वरिष्ठ परामर्शदाता टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी पेंसा से भेंट कर रहे थे दिलीप झा। और इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यही सम्पन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

9:45 पर सुबह का ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। खबरें नश होंगी 9:50 पर, सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अकबाल जर्री पर मबनी शम्मे फरोजा। प्रोग्राम में आज के फनकार हैं सुमित्रा राय चौधरी और शब्बीर हुसैन, पेश करेंगे चंद गैर फिल्मी गजलें। कराम शकील बदायूनी, फराग गोरखपुरी, जानिसार अख्तर और खुमार बाराबंकी का। और इस प्रोग्राम का वक्त आएगा सुबह 10:05। सुबह 10 बजे स्वामी विवेकानंद की शख्सियत के हवाले से एक फीचर आप सुनेंगे मीनार ए नूर, तहरी जनाब मोइन एजाज की। सुबह 11 बजे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम आप सुनेंगे मेरी पसंद और 11:30 पर सादत हसन मंटो के अफसाने पर मबनी रेडियो ड्रामा आप सुनेंगे अकल दाड़। खबरें नश की जाएंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी दुकानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम जारी रहेगा 12:45 तक। दरानी प्रोग्राम 12:30 बजे तारीख साज प्रोग्राम में आज का मौजू है स्वामी विवेकानंद। सुर्खियों में ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 12:45 पर। दिन में 1 बजे आलमी खबरें नशी की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल एप न्यूज ऑन AIR और DD फेडरेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। खिदमत प्रोग्राम सुबह का ही प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए भजन।

0: सुबह के प्रोग्राम में आज आप समाप्त कर रहे थे भजन। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और श्रोताओं, आज है 4 जुलाई 2026। तो आइए इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। 1894 की अगर बात की जाए तो हवाई गणराज्य का गठन आज ही के दिन किया गया था, जो बाद में 1900 में आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बना। और तन्मय, आज ही के दिन 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टाइगर हिल पर घुसपैठियों को खरीद कर कब्जा कर लिया। और अब आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे पहले बात हिंदी फिल्मों के अभिनेता सुशील कुमार की। वो 60 के दशक की हिट फिल्म में दोस्ती में बैसाखी का सहारा लिए अपंग रामनाथ के किरदार में पर्दे पर नजर आए, और इस फिल्म का गाना भी काफी लोकप्रिय रहा। तो आइए सुन लेते हैं।

0: इसके अलावा फिल्म फिर सुबह होगी, धूल का फूल, मैंने जीना सीख लिया, काला बाजार, श्रीमान सत्यवादी, संजोग, संपूर्ण रामायण इनकी काफी लोकप्रिय रही। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के मालिक ताराचंद बड़जात्या 1959 में प्रदर्शित हुई बांग्ला फिल्म लालू भूलू का हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे, जिसकी केंद्रीय भूमिकाओं के लिए वे 17-18 वर्ष के दो नए लड़कों की तलाश कर रहे थे और इसी में उन्होंने लिया सुशील कुमार को। उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
1: And the next person in our list is Naseem Bano. It is her birth anniversary. An Indian actress, and she started her acting career in the mid-1930s. She continued to act till mid-1950s. Her first film was Khoon Ka Khoon, which was based on Hamlet. That came in 1935. According to the composer Naushad, she got the sobriquet Pari Chehra, that's the fairy face, Naseem, through the publicity advertisements of her films, and she was the mother of actress Saira Bano. Let's hear one of the beautiful tracks picturized on her from her film Anokhi Ada.

0: Let me just tell you some of the films that she did. Pukar, Chal Chal Re Naujawan, Anokhi Ada, Sheesh Mehel, Khan Bahadur, Meetha Zeher, Vasanti and many more. And she worked in what became the most famous film of hers, that was Pukar, in the role of Noor Jahan. To prepare for the film, she went riding every day and also learned singing. The film took over a year to complete and brought Naseem into prominence into a spectacular manner. And the publicity of the film dealt on her beauty, calling her beauty queen and Pari Chehra, a name that she was to endure over the years before passing on to her daughter Saira Bano.
1: और श्रोताओं, आइए अब जिस शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले उनके विचार को जान लेते हैं। उनका मानना था कि किसी की निंदा ना करें, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, और अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। जी हाँ, ये कहना था स्वामी विवेकानंद का। एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेर

रहने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रखंड विद्वान थे ये। विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। और शिकागो में भी उन्होंने एक अपनी स्पीच दी थी। और श्रोताओं, आज जाने माने सिंगर श्रद्धा पंडित का भी जन्मदिन है। इन्होंने 1998 में फिल्म खामोशी से अपने गायन के करियर की शुरुआत की। इन्होंने दिल्ली 6 का ससुराल गेंदा फूल, लेडीज वर्सेस रिकी बहल का जिगर का टुकड़ा और काफी सारे लोकप्रिय गीत गाए। तो आइए सुन लेते हैं उनका ये प्यारा सा गीत, पहली पहली बार बलिए।

घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें कहना होगा अपने श्रोताओं को अलविदा, लेकिन चलते चलते हम स्वामी विवेकानंद के विचार को याद कर लेते हैं, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं से भी यही कहना चाहेंगे, अगर आपने ठान लिया है तो आज ही उस काम को जरूर करिए, तभी आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।

0: अब आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुझे बख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीन फील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एल नीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुशहाली की इम्कानी सूरतहाल का जायजा लिया। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया है और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक रोजा दौरे पर जाएंगे। पहले वो राजस्थान जाएंगे जहां वो आज सुबह जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी बालोतरा जाएंगे जहां वो आज दोपहर तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रूपये की लागत आई है। उम्मीद है कि रियासत के मगरबी जिलों में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से सरमायाकारी, रोजगार और सनअती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट से एमएसएमईज, पैकेजिंग, कपड़े की सनअतों, ऑटोकल पुर्जों और एग्री फिल्म जैसे शोबों को भी फरोग हासिल होगा, जिससे रियासत की मईशत में एक नई तकवीयत पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के चैलेंजिंग सहरा में बनाया गया है जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से शुमाल जुनूब राजधानी खासतौर पर शहर की कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को फरोग हासिल होगा। इस राजधानी से मेट्रो ट्रेन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से मरबूत हो जाएगी। वजीर आजम के इस प्रोग्राम के रवा टेलीकास्ट के लिए रियासत के सभी जिला सदर दफ्तरों, शहरी बलदियाती इदारों और ग्राम पंचायतों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। बाद में शाम को ज्यादा मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। यहां अहमदाबाद के सरंद इलाके में बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर कलपुर्जों के तरतीब और तजर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सफर में एक अहम संगमील है, जिसके तहत भारत के पहले शुरू से आखिर तक चिप पैकेजिंग यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज हो जाएगा। बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के

0: दिन तक जारी रहेगा। भारतीय आला इंतजाई कमिश्नर जनाब ज्ञानेश कुमार आज दो रोजा दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने गुजरात, कोकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मगरबी मध्य प्रदेश और ओडिशा में शदीद से शदीद तर और कहीं कहीं पर इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी तरह मशरकी राजस्थान, मशरकी मध्य प्रदेश, साहली कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले दो दिन के लिए शदीद से शदीद तर बारिश की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया है। फीफा आलमी कप में अमरीका के मियामी गार्डन्स में खेले गए नॉकआउट के एक सनसनी खेज मैच में इजाफी वक्त दिए जाने के बाद अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है, जबकि अमेरिका के शहर एलिंगटन में खेले गए एक दूसरे नॉकआउट मैच में मिस्र ने पेनाल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे T20 वर्ल्ड क्वाली मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था बारिश के सबब रोक देना पड़ा था। खास खबरें एक बार फिर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैसे मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एल नीनो यो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुशहाली के इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। और भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTF रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है अक़वाल ज़र्री पर मबनी शम्मे फरोज़ा।
2: एहसान की नेकी, खुश अखलाकी, ताज़ीम व एहतराम, एहसान व मुरव्वत, रवादारी और रहमदिली के जज्बात के बाहमी और मुआशरती ताल्लुकात में अवली मुजाहरे का नाम हुस्न सलूक है। हुस्न सलूक से मुआशरे में एक खुशगवार फजा कायम करने में मदद मिलती है और इसे अमन और चैन का गहवारा बनाने का रास्ता हमवार होता है। इंसान एक माशरती जानदार है, वो हमेशा से ही दूसरे इंसानों के साथ मिलजुल कर रहता आया है। मिलजुल कर साथ रहने में जहां एक तरफ उसे बेशुमार फवायद हासिल होते हैं, वहीं कुछ जिम्मेदारियां और इखलाकी फराइज भी आयद होते हैं जिनकी अदायगी और पासदारी करने से इज्तिमाई जिंदगी खुशगवार और पुरामन तरीके पर बसर की जा सकती है। इन अकदार में हुस्न सलूक बहुत अहमियत का हामिल है। इंसान की माशरती और इज्तिमाई जिंदगी कई मुख्तलिफ इकाइयों पर मुश्तमिल होती है। इसमें सबसे छोटी इकाई उसकी फैमिली या घर होता है जो शौहर, बीवी और बच्चों पर मुश्तमिल होता है। इसमें उसके वालदैन भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल मुआशरती जिंदगी की यही वो इकाई है जहां इंसान की हुस्न सलूक की तरबियत का आगाज होता है। एक बच्चा जब शुऊर की उम्र को पहुंचता है तो वो अपने वालदैन के आपस में एक दूसरे के साथ और अपने बुजुर्गों के साथ सलूक को देखता है और जो अकदार अपने घर में उसके मुशाहदे में आती हैं वही उसके किरदार का भी हिस्सा बनने लगती हैं। इस तरह फैमिली या घर हुस्न सलूक के ताल्लुक से पहली दरसगाह और बुनियादी इकाई है। जो इंसान अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक का मामला रखता है, अगलब इम्कान ये है कि वो घर के बाहर अपने माशरती ताल्लुकात में भी हुस्न सलूक से काम लेगा और एक साले मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सेदार बनेगा। साथ ही उसकी औलाद भी हुस्न सलूक का मामला रखने वाली बनेगी। घर के बाद खानदान माशरे की दूसरी इकाई है जो कराबतदारों और दीगर रिश्तेदारों पर मुश्तमिल होती है। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का तकाजा है कि उनके साथ सिलाए रहमी का मामला किया जाए और उनकी खुशियों के साथ साथ उनके दुख दर्द में भी शरीक हुआ जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अज़्ज़ा व अक़ारिब के साथ हुस्न सलूक का अपनी इबादत के साथ जिक्र किया है और फरमाया है, अल्लाह की इबादत करो और किसी शय को उसका शरीक न बनाओ और वालदैन और अपने कराबतदारों के साथ नेक बर्ताव करो। इस आयत से ये बात वाजह होती है कि अपने अहलोयाल के साथ बेहतरीन बर्ताव के साथ साथ इस्लाम ने रिश्तेदारों के साथ भी बेहतरीन सलूक करने की ताकीद की है। आस पड़ोस भी मुआशरे की एक अहम इकाई है। اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی

पड़ोसियों से वास्ता रहता है। यहां भी उसने सुलूक की कई सूरतें होती हैं। सबसे अहम बात यह है कि हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाए कि हमारी किसी बात से पड़ोसी को ईजा न पहुंचे और उसकी दिलाजारी न हो। इससे बढ़कर ये कि हर परेशानी और मुसीबत में पड़ोसी का साथ दिया जाए और उसकी हर मुमकिन मदद की जाए। हुस्न सलूक के लिए जरूरी है कि इंसान में मरव्वत का एहसास, सब्र का मादा, अफ़ दरगुजर का जज्बा और तहम्मुलो बर्दाश्त की कुव्वत हो, लेकिन आज की दुनिया की तेज रफ्तारी में ये सब खसूसियात तेजी से पीछे छूटती चली जा रही हैं। हुस्न सलूक के मामले में गफलत की वजह से न सिर्फ खानदानों का शिराजा बिखर रहा है बल्कि माशरती जिंदगी के वसीतर मैदान में भी तरह तरह की खराबियां पैदा हो रही हैं। हुस्न सलूक की बदौलत बड़े से बड़े इख्तलाफ को बखूबी दूर किया जा सकता है, लेकिन हुस्न सलूक के फुकदान की वजह से छोटे छोटे इख्तलाफात भी संगीन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और तमाम फरीकैन के लिए बायस जहमत बन जाते हैं। ये सूरत हाल उस वक्त तक रहेगी जब तक माशरे को साले अकदार की बुनियाद पर मुस्तहकम नहीं किया जाता।

अभी आप सुन रहे थे अखबार जर्रे पर मबनी शम्मे फरोजा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। हुस्ने गजल इस प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए सुमित्रा राय चौधरी और शब्बीर हुसैन की गाई चंद गैर फिल्मी गजलें। कलाम है शकील बदायूनी, फिराक कुरकपुरी, जानिसार अख्तर और खुमार बाराबंकी का। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं शकील बदायूनी के इस कलाम से।

हुस्न गजल प्रोग्राम में आज आप समाप्त कर रहे थे सुमित्रा राय चौधरी और शब्बीर हुसैन की गाई चंद गैर फिल्मी गजलें। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और लीजिए अब सुनिए जनाब मोइन एजाज का तहरीर करदा फीचर मीनार-ए-नूर स्वामी विवेकानंद की शख्सियत के हवाले से।

0: इनमें एक नाम स्वामी विवेकानंद का है, जिन्होंने अब से 100 साल कबल मशरक से मगरिब की मसाफत तय की और फर्कों, कौमों और मजाहिब में बटी हुई दुनिया को प्रीत की मैं पिलाई, और उसने अहले मगरिब को न सिर्फ सरशार किया बल्कि चौंकाया भी। उनका चौंकना इस एतबार से काफी अहमियत का हामिल करार पाया कि ये शरारा मशरक के उस खत्ते से उठा था जो गुलाम था, और गुलाम होने के नाते इसका हर ख्याल और हर फलसफा नाकाबिले इतना तसव्वुर किया जाता था, जहां के रस्म रवाज मगरिब में मजाक का मौजू बनते थे।
1: स्वामी विवेकानंद ने ये मकाम और ये अहमियत क्यों कर हासिल कर ली? इनके इर्द गिर्द क्या था जिससे मुतासिर होकर उनका जहन ऐसी बुलंदियों की तरफ मायल परवाज हुआ? कहते हैं कि जहन की बुलंदी अच्छे माहौल, बेहतर तरबियत और मुस्बत अंदाज की तालीम की भी देन होती है। तो क्या विवेकानंद को ये सब कुछ हासिल था? क्या उनके बचपन और जवानी के दौर में वो मंजिलें और मरहले भी आए थे जिनसे गुजरकर उन्होंने बहमगुमान की भूल भुलैयों को जांचा और परखा?
0: जी हाँ, कुछ तो उनका फितरी और खुदादाद मिलाने तबा और सलाहियतें थी जिन्होंने उनको आजाद ख्याली और वसीउल मशरबी की जानिब मायल किया, लेकिन बहुत कुछ उन्हें अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से भी मिला। उस शागिर्द की वसत नजर का क्या कहना जिसके गुरु यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शागिर्दों को ये तालीम देते थे,
2: मैंने हिंदू मत, इस्लाम, मसीहत, हर मजहब का तजर्बा किया है और मैं हिंदू मजहब के मुख्तलिफ फिरकों की राह पर भी चला हूं। मैंने तो यही पाया कि खुदा एक ही है जिसकी जानिब सब कदम बढ़ा रहे हैं, अगरचे राहें मुख्तलिफ हैं। तुम्हें हर अकीदे को आजमाना और एक बार हर रास्ते पर चलना चाहिए। मैं जिधर देखता हूं लोग मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, उनमें हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण और वैष्णव सभी हैं। ये लोग कभी इस पर गौर नहीं करते कि वो जिसका नाम कृष्ण है वही शिव कहलाता है, उसी का नाम कुव्वत-ए-उला, मसीह और अल्लाह भी है। हजारहा नामों के साथ वही राम भी है। इस तालाब के बहुत से घाट हैं। एक घाट पर हिंदू अपना घड़ा भर रहा है और उसे जल के नाम से पुकारता है, दूसरे पर मुसलमान अपनी चर्मी मश्क भर रहा है और उसे पानी से मौसूम कर रहा है, और तीसरे पर ईसाई है जो उसे वाटर कहता है।
1: ये थी वसीउ नजरी पर मबनी रामकृष्ण परमहंस की तालीम जो स्वामी विवेकानंद के जहन पर अपनी असरात मुरतब कर रही थी। ये ख्यालात आजाद रवि और कलंदराना सिफत की देन होते हैं। हालांकि जिस जमाने में स्वामी परमहंस ये तालीम दे रहे थे उस जमाने में हिंदुस्तानी माशरे में उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते बाज सख्त किस्म के बंधनों में जकड़े रहते थे, लेकिन रामकृष्ण ऐसे बंधनों को इंतहाई नापसंद करते थे। वो खुद को अपने नौजवान शागिर्दों के साथ एक ही सतह पर रखते थे, बेतकल्लुफी से बातें करते थे, न उनमें बर्तरी का एहसास था और न तो वो ये चाहते थे कि उनके शागिर्दों में कमतरी का एहसास पैदा हो, क्योंकि उनके ख्याल में इस तरह की बंदिशें तखय्युल की परवाज पर कदगन लगाती हैं।
0: कहते हैं कि इमारत बनाते वक्त अगर पहले ईंटें टेढ़ी रख दी गई तो बाकी ईंटें भी टेढ़ी ही रखी जाएंगी, और यह सिलसिला इमारत की इंतहाई बुलंदी तक कायम रहेगा। इंसानी जहन में नीम पुख्तगी के दौर में अगर मनफी सोच बिठा दी जाए तो यही सोच आगे चलकर अपने मनफी असरात से पूरे समाज को आलूदा कर देगी, लेकिन अगर

0: स्वामी विवेकानंद ने मुल्क के गोशे गोशे का दौरा किया, लोगों से मिले, लेक्चर दिए, उनके सवालात सुने और जवाब दिए। हर जगह एक ही पैगाम दिया, इंसानियत और अजीम आदर्शों का पैगाम। वो किसी भी मजहब और किसी भी मसलक के अकायद की आंख बंद की पैरवी करने के सख्त खिलाफ थे और हर मजहब व मिल्लत के अच्छे और ऊंचे आदर्शों को अपनाने और जदीद दौर के तकाजों पर तवज्जो देने पर इसरार करते थे। उन्हें मालूम था कि इंसानी तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए तमाम मजाहिब और तहरीकों के अच्छे अनासिर को एक लड़ी में पिरोना जरूरी है।
1: वो अपने मुल्क के मिले जुले माशरे और उस माशरे के तकाजों को अच्छी तरह समझते थे और उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान के लिए एक इस्लामी जिस्म और वैदांती दिल की जरूरत है। एक बार उनके एक गैर सन्यासी शागिर्द ने हिंदुस्तान में इत्तेहाद और हम आहंगी पैदा करने की दुश्वारियों की तरफ इशारा किया। स्वामी विवेकानंद ने किसी कदर नाराजगी के लहजे में जवाब दिया,
2: अगर तुम्हें कोई काम बेहद मुश्किल नजर आता है तो यहाँ ना आओ, खुदा के फजलो करम से हर चीज आसान हो जाती है। तुम्हारा फर्ज ये है कि मजहब और जात का इम्तियाज किए बगैर हर गरीब और लाचार की खिदमत करो। तुम्हें इसकी क्या पड़ी है

व्यास बीकानेर में पैदा हुए थे और उनके जो बड़े भाई छोटे भाई थे बृजमोहन व्यास, वो भी अदाकार थे। उन्होंने कोलकाता से बीकॉम में की तालीम हासिल की और पहली फिल्म एक नगमा निगार के तौर पर थी दुहाई, जो 1943 में मंजरे आम पर आई थी। और उनकी एक उनका एक दुहाई नगमा है, दो आंखें बारह हाथ फिल्म में ए मालिक तेरे बंदे हम, ये बड़ा मशहूर हुआ था। इसके अलावा एक और नगमा ये कौन चित्रकार है, और उन्होंने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी रंगीला राजस्थान, जो 1949 में मंजरे आम पर आई। और खास बात ये थी कि इसके नगमे उन्होंने लिखे और मौसीकी भी कंपोज की थी। और इसके अलावा कुछ और नगमे उन्होंने लिखे थे माता महाकाली में, जो 1968 में मंजरे आम पे आई थी। बहुत कई फिल्में रही, गुंजुटी शहनाई, सारंगा, नवरंग, स्त्री, राम राज्य, संत ज्ञानेश्वर वगैरह वगैरह।

और ये सुने नवरंग फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया हुआ, भरत व्यास का लिखा हुआ नगमा है और मौसीकी श्री रामचंद्र की।

0: इस नाते के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशात का सिलसिला जारी है।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है।

रंगा रंग तंग मजाक के इस प्रोग्राम में आज सुनिए सात असन मंटो की कहानी हकदार का रेडियाई अक्स। तरतीबकार हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार।

0: अरे आप मुंह सुझाए क्यों बैठे हैं? यह शक्ल ही ऐसी हो गई है।
1: अरे भाई दांत में दर्द हो रहा है, तुम तो खामखा हर बात को।
0: खामखा क्या, आपके दांत में कभी दर्द हो ही नहीं सकता।
1: कैसे कह रही हो?
0: आप भूल जाते हैं कि आपके दांत नकली हैं, जो असली थे वो कभी के रुखसत हो चुके हैं। किसे बना रहे हैं आप?
1: लेकिन बेगम भूलने की बीमारी आपको है। मेरे 32 दांतों में सिर्फ 9 दांत नकली हैं, बाकी असली और मेरे अपने हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो मुंह खोलकर अच्छी तरह मुआयना कर लो।
0: रहने दो, मुझे यकीन आ गया और मुझे आपकी हर बात पर यकीन आ जाता है।
1: शुक्रिया शुक्रिया।
0: वैसे परसों आपने मुझे यकीन दिलाया था कि आप सिनेमा नहीं गए थे और मैं मान गई थी।
1: अरे मानना चाहिए।
0: मगर आपकी कोट की जेब में टिकट पड़ा था।
1: हाँ वो किसी और दिन का होगा।
0: कल की तारीख थी। आपका मतलब साल कोई दूसरा है?
1: अरे भगवान, मेरा मतलब है आज से कोई 2-2.5 महीने पहले का, जब मैं मजबूरन किसी दोस्त के साथ पिक्चर देखने चला गया था। वरना तुम तो जानती हो मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम तो खैर हर फिल्म देखती हो।
0: खाक, मुझे फुर्सती कहाँ होगी।
1: अरे फुर्सती फुर्सत है तुम्हें, बच्चियों को स्कूल भेज दिया फिर सारा दिन तुम क्या करती हो? नौकर उनको स्कूल से ले आता है, खाना खिला देता है, सारे काम तुम्हारे वो करता है। तुम या तो अपनी किसी सहेली या रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती हो या मैटनी शो देखने।
0: वो
1: शाम को फिर दौरा पड़ता है तुम्हें, तुम चली जाती हो कोई और फिल्म देखने। जैसे कि तुम दुनिया में सिनेमा देखने ही आई हो। कई

0: पे तो तुमने बार बार और लगातार देखी है, घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर।
1: ये सफेद झूठ है।
0: सफेद है ना काला, हकीकत है।
1: आपके दांत के दर्द की क्या हकीकत है? बिना रुके चटाक पटाक क्या बातें करें? और वो आपका ड्रामा
0: कौन सा?
1: डेंटिस्ट के साथ।
2: नर्स।
3: यस सर।
2: इनके हाथ तो पकड़ो।
3: जी सर।
2: ये मुआयना भी नहीं करने दे रहे।
0: डॉक्टर साहब, शिद्दत का दर्द है।
2: देखने तो दीजिए कि कौन सा दांत है जो निकाला जाना है।
0: वो सबसे पीछे वाला डॉक्टर साहब।
2: देखने तो दीजिए, मुंह तो खोलिए।
0: आ
2: और खोलिए।
0: आ आ
2: थोड़ा सा और खोलिए।
0: मुंह में बैठकर निकालिएगा।
2: कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक देख लिया मैंने। नर्स, इंजेक्शन तैयार है तो ले आओ।
3: ये लीजिए सर।
0: दरअसल तुम्हारे होते हुए मुंह बंद रखने की आदत सी हो गई।
1: क्या फरमा रहे थे आप? आपको आदत है मुंह बंद रखने की?
0: हाँ, कितनी बार कहा कि सुनने की आदत भी डालो, सिर्फ बोलने की नहीं। बोलो तब जब कुछ पूछा जाए, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता, और आदत डालो मुंह बंद रखने की।
1: तो क्या गलत है इसमें?
0: हाँ जी हाँ, सबसे बड़ा दर्द तो तुम हो, उसके सामने दांत का दर्द क्या हकीकत रखता है?
1: तो आपने जिस तरह अपने दांत निकलवाए थे उसी तरह मुझे भी निकाल बाहर फेंकिए।
0: काश ये काम इतना आसान होता तो मैं कब का कर चुका होता। ये बड़ी हिम्मत का काम है, इसमें बड़ी जुर्रत की जरूरत है।
1: आप जुर्रत की बात ना करें, आपको मुफ्त में एक नौकरानी मिल गई है जो आपका खाना पकाती है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या क्या खाना पकाती हो? अव्वल तो बनाती नहीं हो। अगर बनाती हो तो हर बार निवाला मुंह में रखने से पहले अल्लाह को याद करना पड़ता है।
1: रहने दो, ये मुफ्त की नौकरानी दिन रात खिदमत करती है, उसे आप बर्खास्त कैसे कर सकते हैं बताइए?
0: गजब खुदा का, तुमने दिन रात मेरी कब खिदमत की है? पिछले महीने जब मुझे निमोनिया हो गया था तो तुम मुझे बीमारी की हालत में छोड़कर सियालकोट चली गई थी।
1: वो बिल्कुल जुदा बात है।
0: जुदा बात कैसे, बताओ ना।
1: आपको मालूम है मुझे मेरी एक अजीज तरीन सहेली ने बुलाया था कि उसकी बहन की शादी हो रही है।
0: और यहाँ जो मेरी बर्बादी हो रही थी।
1: अच्छे भले थे आप, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था, उसने मेरी तसल्ली कर दी थी। उसने कहा था कि फिक्र की कोई बात नहीं है, निमोनिया का अटैक कोई इतना सीरियस नहीं है, फिर पेंसिलिन के टीके दिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह दो एक रोज में तंदुरुस्त हो जाएंगे।
0: डॉक्टर से पूछ कर जाना और मेरे यहाँ मेरे पास रहना एक ही बात है।
1: ठीक तो हो रहे थे ना आप?
0: ठीक तो तुम्हारे बगैर भी हो गया था, खासा जल्दी हो गया था। वैसे तुम सियालकोट कितने दिन रही?
1: यही कोई 10-15 दिन।
0: इस दौरान तुमने मुझे कोई खत लिखा, मेरी खैरियत के मुतालिक पूछा?
1: इतनी फुर्सत नहीं थी कि आपको एक सतर भी लिख सकती।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लिखने के लिए फुर्सत नहीं थी और अपनी अशद वालिदा को 4 खत लिखे।
1: वो तो बहुत जरूरी थी ना?
0: मैंने सब पढ़े हैं।
1: है? आपने क्यों पढ़े? ये तो बहुत बदतमीजी है।
0: ये बदतमीजी मैंने नहीं की, तुम्हारी वालिदा मुकर्रमा ने मुझे खुद उनको पढ़ने को कहा, तब मुझे मालूम हुआ कि वो किस कदर जरूरी थे।
1: क्या जरूरी थे?
0: हाँ बहुत जरूरी थे, इसलिए कि खाविंद के फेफड़ों के मुकाबले में दुल्हन के जहेज की तफसीलात बहुत अहम थी। उसके बालों की रूपहला चूरण, उसके गालों पर लगाया गया गाजा, उसके होठों की सुर्खी और न जाने क्या क्या, ये तमाम इत्तलाएं पहुंचाना वाकई अशद जरूरी था। वरना दुनिया के तमाम कारोबार रुक जाते, चांद और सूरज की गर्दिश बंद हो जाती। दुल्हन के घूंघट के मुतालिक अगर तुम ना लिखती कि किस तरह बार बार झुंझला कर उसे वो उठा देती थी, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी दुनिया

0: शादी से पहले के सब्ज बाग जब हकीकत में आए शादी के बाद, ये गनीमत है कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। छोड़ दिया होता ना तो होश ठिकाने आ जाते मेरे जाने के बाद।
1: अभी भी क्या देर हुई है, अब चली जाओ, देखता हूँ किसमें कितना जिगरा है जो चंद घड़ियां में तुम्हारे साथ काट सके।
0: देखिए आप मेरी तौहीन कर रहे हैं।
1: तुम नालिश कर दो, मुकदमा कर दो।
0: मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहती मैं।
1: अच्छा तो फिर किन चक्रों में पड़ना चाहती हो ये तो बता दो।
0: आपसे जो मेरी शादी हुई भला इससे बड़ा चक्कर और क्या हो सकता है। अरे मत मारी गई थी, सोचने की ताकत भी कम हो गई थी। मेरे बस में हो तो मैं इससे निकल भागूं।
1: अरे तुम्हारे बस में क्या कुछ नहीं है, तुम चाहो तो आज ही इस चक्कर से निकल सकती हो।
0: कैसे, जरा मैं भी सुनूं तुम्हारी अकल इस बारे में क्या कहती है।
1: ये मुझे मालूम नहीं, मगर तुम माशाल्लाह अकलमंद हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लो ताकि रोज रोज की बकबक और झकझक खत्म हो।
0: तो इसका मतलब ये है कि आप खुद ये चाहते हैं कि मुझे निकाल बाहर करें।
1: अरे लाहौल विला, मैं तो खुद निकलने के लिए तैयार हूँ, मगर हो तो नहीं रहा, कैसे करूँ सूझ भी नहीं रहा।
0: मैं पूछ सकती हूँ कि कहाँ रहेंगे आप?
1: अरे जब अलग ही हो गए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी रहूं, किसी दोस्त के यहाँ कुछ देर ठहर जाऊंगा या किसी होटल में चला जाऊं। अरे अकेली जान होगी, मैं तो फुटपाथ पर भी गुजारा कर सकता हूँ। वो किसी ने कहा भी है ना कि उम्र कटी होटलों में और मरे अस्पताल जाकर। कपड़े अपने साथ ले जाऊंगा, उनको किसी लॉन्ड्री के हवाले कर दूंगा, वहां वो इस घर के मुकाबले में ज्यादा महफूज रहेंगे, शीशे की अलमारियों में सजे रहेंगे। जब गए एक सूट निकलवाया, उसकी धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के पैसे अदा किए और फिर खरामा खरामा।
0: खरामा खरामा कहाँ गए?
1: अरे कहीं पर भी, कभी भी, किसी के संग भी, बदल बदल के भी, एक के साथ लॉरेंस रोड, दूसरी के साथ सिनेमा, किसी और के साथ अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, और क्लब में तो अपनी शान ही निराली होगी। ये मत बोलो कि शामें रंगीन करने के जरिए भी होंगे, क्या मर्जी हो जाऊंगा। इन सभी कारनामों से जो चेहरे की रंगत और दिली सुकून जो देखेगा वही जानेगा, और वो पूछेगा भी कैसे करते हो भाई, कोई पाबंदी तो नहीं होगी उस वक्त।
0: तो यहाँ मैंने कौन सी पाबंदियां आयद कर रखी हैं? पापा कमाल की सोच है आपकी, कभी कोई जिक्र भी किया है कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? खुले बंदो जो चाहे करते हैं, मैंने कभी रोका आपको, कभी टोका है?
1: टोका तो नहीं है, लेकिन मेरा हर बार ऐसा झटका किया है कि महीनों तबीयत साफ रही, यहाँ तक के यार दोस्त भी भाव लेते हैं कि मामला कुछ अलग है।
0: अरे अगर तबीयत साफ रहे तो उसमें हर चीज क्या है, जैसे मेरी तबीयत साफ है वैसे आपकी तबीयत भी साफ रहनी चाहिए।
1: मानता हूँ मैं कि तबीयत हमेशा साफ रहनी चाहिए, मगर तबीयत साफ करने वाले को इतना ख्याल जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि वो जरूरत से ज्यादा साफ ना हो जाए।
0: क्या मतलब, कब मैंने जरूरत से ज्यादा साफ की आपकी तबीयत? हाँ सहन तो होता नहीं आपसे, तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, मैं सारे ड्रामों से क्या वाकिफ नहीं हूँ?
1: क्या ये खराब तबीयत के जो निशानात हैं, जो दर हकीकत है, तुमने ड्रामा कह रही हो? लाहौल विला कुवत,
0: आपके तो हर काम में कोई ना कोई ड्रामा है, कभी पता ही नहीं चला कि हकीकत है या ड्रामे की फिक्रेबाजी जो रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं आप।
1: अच्छा अच्छा, मैं फिक्रेबाजी करता हूँ, मगर तुमने कभी दाद नहीं दी, हौसला अफजाई नहीं की, कुछ इनाम विनाम भी दे सकती थी।
0: ओफो, ये अनाप शनाप क्या बक रहे हो।
1: अच्छा छोड़ो, तुम्हें दाद देने का एक मौका और देता हूँ। वो कह रहा हूँ शेर में जो तुम मेरे साथ कर रही हो, हमारा नाम जमीन पर लिख के मिटा देते हैं।

0: उनका तो खेल रहा, हमें खाक में मिला देते हैं।
1: अब ये बकवास बंद कीजिए। आपके तो दांत में दर्द हो रहा था ना?
0: वो दर्द अब दिल में चला गया है।
1: दिल में? कैसे?
0: आपकी गुफ्तगू हर किस्म के करिश्मे कर सकती है। मैं हूँ जो इन करिश्माई तीरों को झेल रहा हूँ, कब से और ना जाने कब तक। खुदा ने भी मुझे बर्दाश्त करने की ताकत बख्शी हुई है, और कोई होता ना तो अब तक जमी दोस्त हो चुका होता और आप मसरत के राग अलाप रही होती। अजब थी शख्सियत तो तुम भी। हालात बदलने में यूं कहिए कि कुछ भी बदलने में वक्त नहीं लगता तुम्हें। दाढ़ में शिद्दत का दर्द था, लेकिन खुदा मालूम आप क्यों तशरीफ ले आई और मुझसे लड़ना शुरू कर दिया और दाढ़ का दर्द दिल में मुंतकिल हो गया।
1: मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि आपका मुंह क्यों सूजा हुआ है। बस इतनी सी बात का आपने बतंगड़ बना दिया।
0: यानी आपको ये इतराज है कि आपके अलावा मेरा मुंह कोई और भी सुझा सकता है?
1: हद हो गई जी, हद हो गई। मैंने आपका मुंह कब सुझाया है?
0: ओहो, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।
1: क्या मतलब है आपका?
0: एक फहरिस्त है, कब और कहां आपने मेरा मुंह सुझाया। खैर, तुम्हें तो ये बताना ही मुहाल है। वैसे मेरे एक दोस्त ने शादी के बाद अपनी हालत बयान की एक नज्म के जरिए और पूछा था, तुम्हारा भी यही हाल है?
1: अच्छा, क्या कहा आपके दोस्त ने? जरा मैं भी तो सुनूं।
0: जब से हुई है मेरी शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। अरे भगवान, मैं नहीं वो कह रहा है, आगे तो सुनो। सुबह के 9 बजे हैं, मेम साहब सो रही हैं, फिर अच्छे साबुन से नहाकर खुशबू में तर रही हैं, बच्चों के बीच बैठा मैं घंटी बजा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ।
1: दोस्त के बहाने मैं आपकी सच्चाई जान गई हूँ। आफत हूँ ना मैं, गले पड़ी हूँ ना, मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस खोपड़ी के इंसान हैं।
0: अरे खोपड़ी तो मेरी भी वैसी ही है जैसी तुम्हारी या किसी दूसरे इंसानों की। वैसे तुम्हें इसमें क्या फर्क महसूस होता है?
1: फर्क? बनावट के मुताबिक कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपकी खोपड़ी में ना कोई नुक्स तो जरूर है।
0: अरे किस किस्म का, जरा खुलासा तो कीजिए ना। बनावट का, सोच का, विचार का, फिक्रेबाजी का, किस तरह का नुक्स है?
1: अब मैं किस्म कहाँ बता सकती हूँ, जाकर पूछिए ना किसी डॉक्टर से।
0: डॉक्टर ने तो कभी इस पर तबसरा नहीं किया जो आप इतने कॉन्फिडेंटली कर रही हैं। ये जाने बगैर कि नुक्स किस किस्म का है।
1: एक मर्तबा फिर पूछ लेना।
0: पूछ लूंगा, मगर मुझे इस बात का यकीन है कि वो यही कहेगा कि नुक्स आप में नहीं, आपके इर्द गिर्द है, उससे बचाइए अपने को। अरे माय डियर, नाराज नहीं हो, मैं डॉक्टर की तरफ से कह रहा हूँ।
1: सारे मर्द एक से हैं, तुम और तुम्हारा डॉक्टर।
0: अरे अब बस करो ना, अब मेरे दिल में दर्द हो रहा है।
1: रहने दो, ये सब झूठ है।
0: क्या क्या?
1: हाँ, आपका दिल बहुत मजबूत है।
0: अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
1: आज से 2 बरस पहले जब आप अस्पताल में दाखिल हुए थे तो आपका एक्सरे लिया गया था।
0: मुझे नहीं मालूम ये।
1: हाँ, आपको इतना होश ही कहाँ था, मुझे आप कोई नर्स समझ बैठे थे।

0: और हाँ, और अजीब अजीब बातें करने लगे थे।
1: कैसी
0: कैसी? ऐसी।
1: नर्स, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारे हाथ कितने नाजुक और मुलायम हैं। और एक वो मेरी बीवी है, उसके हाथ छू लूं तो ऐसा लगता है कि किसी पत्थर को छू लिया। नर्स सुनो, जब मेरी छुट्टी होगी हम तुम साथ चलेंगे ना, तुम मुझे साथ ले चलोगी ना? बोलो ना, कहाँ ले चलोगी मुझे?
0: जहन्नुम में। पत्थर के बने हैं ना मेरे हाथ, सिर पर ना दे मारूं। होश में तो हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें, बस हकीकत तो गुनूदगी ब्याह होती है।
1: देखो, बीमारी में की गई हर खता माफ कर देनी चाहिए। तुम कहती हो ना मुझे तो होश ही नहीं था, तो बताओ मैं सही बातें कैसे कर सकता था?
0: मैं आपके दिल के मुतालिक कह रही थी। अस्पताल में जब 5-6 एक्सरे ले लिए गए तो सभी डॉक्टर्स की राय थी कि ये शख्स सिर्फ अपने मजबूत दिल की वजह से जी रहा है। इसके गुर्दे कमजोर है, इसकी अंतड़ियों में वर्म है, इसका जिगर खराब है। लेकिन
1: लेकिन क्या?
0: उन्होंने ये कहा था कि ये जल्दी नहीं मरेगा, इसलिए कि इसके फेफड़े और दिल सही सलामत है।
1: ये बात सुनकर तुम्हें कोई खुशी तो हुई नहीं होगी, दिल और फेफड़े सही काम कर रहे हैं, इतनी जल्दी मरेगा नहीं।
0: हाँ हाँ, मैं तो आपके मरने की दुआ करती हूँ, सारी जिंदगी आपकी खिदमत की, उसके बदल में ये सिला दे रहे हैं आप।
1: किस खिदमत का नाम ले रही हो? घर को संभालना, खाना बनाना, बच्चों को पालना, ये खिदमत में शामिल नहीं है?
0: अच्छा, तो आप ही बताइए ना, क्या शामिल है खिदमत में?
1: किसी वजह से मर्द का मूड ऑफ हो, उसके मन को रिझाना, थका हारा काम से आए तो उसे महसूस कराना कि पल भर में आपको फ्रेश कर दूंगी, आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी।
0: ओहो, लेकिन कैसे?
1: मर्द की पसंद के पकवान बनाना, उसे अपने हाथों से खिलाना और इस अंदाज से टांगे दबाना कि वो आराम कर सके, या बजाय इसके कि उसका गला दबाना, बगैर सिर पैर की बहस करना और उसे ये जता देना कि दफ्तर से सीधा आकर उसने बहुत बड़ी हिमाकत की है।
0: अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या मैं हमेशा से आपको ऐसी ही लगती हूँ?
1: हमेशा से तो नहीं, शुरू शुरू में तो मामला बहुत अच्छा था, काबिले तारीफ।
0: तो अब मुझे ऐसा किसने बनाया? आपके रवैये ने, समझे? आपके मिजाज ने, बेवजह की उम्मीदों ने, जरूरतों ने। आपने बिल्कुल दिल तोड़ने वाली बात कही है।
1: वैसे तुम्हें मालूम है
0: क्या
1: कि गुस्से में और भी हसीन लगती हो, गजब ढाती हो? तो
0: रहने दीजिए ये मस्कापन, मेरा तो दिल ही तोड़ दिया
1: ना। ना ना ना ना, हमारा अपना दिल हमारे पास है कहाँ? दिल में तो खैर तुम बसी रहती हो, पहले दिन से
0: रहने
1: हटने का नाम ही नहीं लेती, कोई दूसरी कहाँ से आ जाएगी? याद है मैंने ही किसी वक्त इसरार किया था कि मेरे दिल का क्वार्टर कर लो आको पाई, मत देना डार्लिंग रेंट के सिंगल पाई, और बस बस गई आके, अब तो एकदम पक्के तौर पर दिल में बस गई हो, शुक्र है फेफड़ों में नहीं हो। वाह, मालूम नहीं कौन रहता है।
0: रहती होगी आपकी कोई।
1: कौन?
0: मैं क्या जानू।
1: ओ खुदा की कसम, तुम्हारे सिवा मैंने कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं।
0: रहने दो, अब बनाओ नहीं मुझे।
1: सच कह रहा हूँ।
0: सच कह रहे हो?

0: अच्छा, तो वो जो दफ्तर में थी, तुम्हारे साथ आती जाती थी, वो कौन थी
1: अरे
0: भला?
1: क्या बात करती हो, काम के सिलसिले में आना जाना पड़ता था और कोई बात नहीं थी।
0: बस में आपके लिए सीट रखती थी?
1: अरे वो इंसानियत के नाते, अच्छे शहरी के नाते, किसी और नाते से नहीं।
0: जो लंच में आपके साथ खाना खाती थी दफ्तर में?
1: अरे क्या बात करती हो, वो और मैं अकेले नहीं थे, हम सब मिलकर खाते थे। हाँ इतना जरूर था कि वो मेरी पसंद नापसंद से वाकिफ थी, इसलिए कोई तरकारी मेरी पसंद की ले आती थी बस।
0: रहने दो।
1: अरे तुम शरीर के हर अंग में विराजमान हो, वो भी इतने अरसे से, कोई कहां से आ जाएगा? किसी की हिम्मत मजाल नहीं है ना। मैंने तो तुम्हारे अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है।
0: तो आंख झुकाकर देखा होगा?
1: अरे वो तो खैर देखना ही पड़ता है, मगर किसी बुरे ख्याल से नहीं, बस एक नजर देखा और चल दिए।
0: लेकिन एक नजर से देखना क्या बहुत जरूरी है? क्या शरीयत में लिखा है?
1: अरे ना जाने कहां कोई अच्छी नजर वाली, दिल को सुकून देने वाली मिल जाए। राहत तो मिलती है ना, उसे भी कितनी तसल्ली होती है अपने हुस्न की कि किसी शाइस्ता शख्स ने देखा और मन ही मन मेरी तारीफ की। वरना अच्छी शक्लें क्यों बनाई जाती हैं, देखने के लिए ना। अच्छा भाई इस बहस को छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या कहने आई थी। तुम्हारी आदत है कि अपना मतलब बयान करने से पहले तुम झगड़ा शुरू कर दिया करती हो।
0: मुझे आपसे कुछ नहीं कहना था।
1: तो फिर आप तशरीफ ले जाइए, मुझे दफ्तर के चंद काम करने हैं।
0: मैं नहीं जाऊंगी।
1: तो फिर खामोश बैठी रहो, मैं काम खत्म कर लूं तो जो तुम्हें उल जुलूल बकना हो बक लेना, मेरी दाढ़ में शिद्दत का दर्द हो रहा है।
0: मैं किस लिए आई आपके पास?
1: मुझे क्या मालूम,
0: मेरी अकलदार निकल रही है।
1: वाह वाह, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, तुम्हें कुछ अकल तो आ जाएगी।
0: अरे बहुत दर्द हो रहा है।
1: अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस दर्द से ही अकल आ रही है।

अकलता। तंजमिजा के प्रोग्राम रंगारंग में अभी आपने सादत हसन मंटो की इस कहानी का उर्दू रेडियाई रूप सुना, जिसे तरतीब दिया था डॉक्टर अश्वनी कुमार ने। हिस्सा लेने वाले फनकार थे गीता वर्मा, मुफ्ती सैनी, सलाम मोहम्मद और डॉक्टर अश्वनी कुमार। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन शादाब अली खान।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर हमारी नशियात जारी है। सामने हम आपको याद दिला दें, हमारी दूसरी मजलिस में सपहर 3:30 बजे आज आप सुन सकते हैं सुबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में गुजराती लोकगीत। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, आपसे चंद लम्हों के बाद आप खबरें सुनेंगे।

वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया, जिसमें सालाना तौर पर 20 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश है। ईरान के साबिक रूहानी पेशवा आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की सरकारी तौर पर 6 रोजा आखिरी रसूम का सिलसिला आज तेहरान में शुरू होगा। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। कदावत पसंद पार्टी की रहनुमा कीकू फूजी मूरी ने पेरो के सदारती इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली है। और फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। यह प्रोजेक्ट 480 करोड़ रूपये की लागत से तैयार किया गया है। यह इमारत 23,000 मुरबा मीटर से ज्यादा रकबे पर फैली हुई है और इसमें सालाना तौर पर 20 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश है। इस इमारत में मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं ताकि वो बिला रुकावट और आसानी से सफर कर सकें। इस नई टर्मिनल इमारत से खित्ते में सियाहत, तिजारत और रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। हवाबाजी के शोबे के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें इलाकाई कनेक्टिविटी पर खसूसी तवज्जो दी गई है। नरेन्द्र मोदी ने जोधपुर में उड़ान स्कीम का भी आगाज किया, जिसे नए सिरे से तश्कील दिया गया है। ये मुल्क के शहरी हवाबाजी के मंजरनामे की जानिब एक बड़ा कदम है। इसके लिए अगले 10 साल में 28,840 करोड़ रूपये मुख्तस किए गए हैं। इस स्कीम का मकसद हवाबाजी की क्यादत वाली तरक्की के अगले मरहले की रफ्तार तेज करनी है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी पीर से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में वजारत खारजा के मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि जनाब मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया में रहेंगे। वजीर आजम का इंडोनेशिया का चौथा दौरा होगा और मई 2018 में जब से भारत इंडोनेशिया के ताल्लुकात जामे दिफाई शराकतदारी की सतह तक लाए गए हैं, ये उनका पहला दो तरफा दौरा होगा। ईरान में साबिक रूहानी पेशवाए आजम आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की सरकारी तौर पर 6 रोजा आखिरी रसूम की तैयारियां जारी हैं, जो आज शुरू होंगी। हुक्काम को उम्मीद है कि रसूम में लाखों सोगवार शिरकत करेंगे, जिसके लिए सलामती और ट्रैफिक के वसी इंतजाम किए गए हैं। सीनियर ईरानी रहनुमा, फौजी कमांडोज और गैर मुल्की शख्सियतों ने तेहरान के मुसल्ले आजम पर आयतुल्ला खामनेई को खराज अकीदत पेश किया। इन रसूम में भारत की नुमाइंदगी बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और उमूर खारजा के वजीर ममलकत पवित्रा महागीतरा ने की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मार्गेरिता ने कहा कि उन्होंने भारतीय हुकूमत और अवाम की तरफ से खिराज हकीकत पेश किया। उन्होंने हालिया जंग में हलाक होने वालों के कुंभों से भी ताजियत का इजहार किया। आयतुल्ला खामनेई 28 फरवरी को इसराइल और अमरीकी हमलों में शहीद हो गए थे। उनके जनाजे का जुलूस अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद अगले महीने की 9 तारीख को मुकद्दर शहर मशहद में उनकी तदफीन कर दी जाएगी। इसके बाद ईरान में 40 दिन तक सोग मनाया जाएगा। गुजरात के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान में कायम ममनू दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन अफराद को गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से कल एक साथ की गई कार्रवाईयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस के मुताबिक मुलजमीन पाकिस्तानी आकाओं के राबते में थे और अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मजीद तोसी देने के लिए गुजरात में एक सरगर्म नेटवर्क कायम करने के लिए जैश ए मोहम्मद की जानिब से सरगर्म अमल थे। ये अफराद जैश ए मोहम्मद के नुक्ते नजर की तशहीर के लिए उनके मवाद को गुजराती जुबान में तर्जमा करने का काम भी कर रहे थे। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की बरामदात के अपने निशाने को हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तहत रवा माली साल की पहली सेमाही में तकरीबन 15% सालाना बरामदात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। कल नई दिल्ली में तजारती मीटिंग के

मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। मिले सुर मेरा तुम्हारा इस प्रोग्राम में सुनिए चंद फिल्मी दुकानें। आगाज गीत गाता चल फिल्म के दुकाने से, आवाजें आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की, मौसीकी और नगमा निगार रविन्द्र जैन।

नमस्कार, मेरा तुम्हारा प्रोग्राम मिली जब सुनिए रफू चक्कर फिल्म का दो गाना, आवाजें शैलेंद्र सिंह और कंचन की, नापा निगार गुलशन बावरा, मौसीकी कल्याण जी आनंद जी की।

सुनिए दो झूठ फिल्म का नगमा, किशोर कुमार और उषा मंगेशकर का गाया हुआ, मौसीकी शंकर जयकिशन की।

प्रेम कहानी फिल्म का नगमा सुनी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो, देखेंगे तो

0: मैं सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उर्दू सर्विस से। सामिन ये प्रोग्राम अभी जारी है, आइए पहले सुनते हैं तारीख सास प्रोग्राम। आज का मौजू है स्वामी विवेकानंद।
1: हिंदुस्तान की तवील और शानदार तारीख में बहुत सी ऐसी जलील कदर और काबिल फख्र शख्सियात गुजरी हैं जिनके सुनहरे कारनामे हर हिंदुस्तानी के लिए बाइस इफ्तिखार रहे हैं। तारीख के हर दौर और हर जमाने में यहां ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने मुख्तलिफ उलूम और फुलूम के मैदान में कामयाबी का आलम बुलंद किया और मुल्क में शोहरत इज्जत हासिल करने के साथ बैरून मुल्क भी एक मौजिज मुनफरद और काबिल रश्क मकाम हासिल किया। उनके फिक्र और फलसफे से एक आलम ने इस्तफादा किया और उनकी इल्मियत और लियाकत का बरमला इजहार भी किया। उनकी बुलंद फिक्र और दिल को छू लेने वाले फलसफे की तफहीम का अमल आज भी जारी है। इन मुमताज शख्सियात में स्वामी विवेकानंद का नाम कई मानों में नुमाया अहमियत का हामिल है। स्वामी विवेकानंद की शनाख्त सिर्फ एक मजहबी पेशवा, हिंदू मजहब के मुजद्दिद और रूहानी गुरु की ही नहीं है बल्कि एक समाजी मसले, रोशन ख्याल मुफक्किर और वसीम नजर आलिम, बेहतरीन मुकर्रर, वेदांत और यूरोपियन दोनों फलसफों के जबरदस्त फाजिल, सच्चे मुहिब वतन और एक दर्दमंद दिल के इंसान भी थे। स्वामी विवेकानंद कोलकाता के एक बंगाली खुशहाल कायस खानदान में 12 जनवरी सन 1863 में पैदा हुए थे। उनका असल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वो एक एमी और मजहबी खानदान के चश्मो चिराग थे। उनके वालिद विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक मशहूर वकील थे। उनकी वालिदा भुवेश्वरी देवी मजहबी ख्यालात की खातून थी और उनके दादा दुर्गा चरण दत्त संस्कृत और फारसी जबान के आलिम थे। उनके घर और खानदान में जदीद तालीम के साथ साथ रूहानियत और रियाजत का बाहमी मेल था और इसी माहौल ने उनकी सोच और शख्सियत की तकमील में मदद की थी। उनका इंतकाल 4 जुलाई 1902 में वेल्लोर में हुआ था। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही मजहबी रुझान रखते थे और उनको रूहानियत से खासी दिलचस्पी थी। उनके घर में पाबंदी के साथ पूजा पाठ का एहतमाम होता था। खानदान के मजहबी और रूहानी माहौल के असरात से बच्चे नरेंद्रनाथ दत्त के जहन में बचपन से ही मजहब और रूहानियत पर यकीन गहरा होता चला गया। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निहायत जहीन थे और इसके साथ साथ शरारती और चंचल भी। स्कूल और घर में उनकी शरारत के किस्से आम थे लेकिन उनकी जहानत और काबिलियत की वजह से असाज़ा उनकी शरारतें नजरअंदाज कर देते थे। उनकी लियाकत, सलाहियत और जहानत का यह आलम था कि उनके असाज़ा भी उनसे मरूब रहते थे। कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था के प्रिंसिपल विलियम होस्टे ने तो यहां तक कह दिया था कि मैंने इतनी काबिलियत और जहानत का मालिक किसी और लड़के को नहीं पाया, ये बड़ा होकर नुमाया काम करेगा। स्वामी विवेकानंद की तालीम जदीद अंदाज से हुई।

और ये प्रोग्राम के आखिर में सुनिए पाप पुण्य फिल्म का दो गाना, मुकेश और कंचन का गाया हुआ। मौसीकी कल्याण जी आनंद जी की।

0: ये सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने का एक सम्मेलन रहा है या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो बदलती हुई रणनीतियां हैं उनके लिए कोई संकेत है या फिर आपको लगता है कि कोई बड़ी उपलब्धि इस मुलाकात से हासिल हुई है?
1: मैं समझता हूं कि हमारे जो रिश्ते हैं विदेशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, सभी देशों के तुलना में जिस देश के साथ हमारे रिश्ते सबसे बड़ा महत्व रखते हैं मेरे ख्याल से वो है जापान। जापान और भारत के रिश्ते की खूबी अगर कोई अगर है तो इस रिश्ते में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो दोनों को खलता है या किसी तरह से नीचे खींचता है। ये आगे जाने वाला रिश्ता है। दूसरी बात यह है कि जो जापान की विद्यमान प्रधानमंत्री है वो पहली बार भारत आ रही है और वो भी जापान की पहली प्रधानमंत्री है, तो वो भी एक अपनी विशेषता रखती है। और 16वां जो शिखर वार्तालाप है ये रिश्ते को दिखाता है कि कितने उच्च स्तरीय बैठकें होती है और उसको कितना इस रिश्ते का महत्व है। सिर्फ प्रशांत महासागर ही नहीं, दुनिया में जहां जहां अलग अलग तरीके से इसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं उनके बारे में भी जिक्र आया है। प्रशांत महासागर के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाल ही में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा अमेरिका ने इसको इंडो पैसिफिक के बजाय यूएस पैसिफिक कहना शुरू कर दिया, और हालांकि बहुत राजनयिक प्रयत्नों के बाद इंडो पैसिफिक ये बात जो है रिकॉग्नाइज होती आई है पिछले कुछ एक दो दशकों में। तो ये प्रशांत महासागर जो है हमारे लिए सभी तरह से महत्वपूर्ण है। वहाँ बहुत सारे संसाधन हैं, वहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण देश हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं, और एक दुनिया का महत्वपूर्ण जो रिसोर्स बोलते हैं सागरीय रिसोर्स।
0: भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान के संबंध वास्तव में बेहद विशेष हैं।
2: हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती है। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
0: दोनों प्रधानमंत्रियों की मीटिंग के बाद जो संयुक्त वक्तव्य दिया गया उसमें रक्षा, आर्थिक सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क को आपसी रिश्ते के तीन बड़े स्तंभ के रूप में बताया गया है, तो आपको लगता है कि भारत और जापान के जो संबंध है एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंच चुके हैं?
1: ये रिश्ता स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये रिश्ता ऑलरेडी उस ऊंचाई तक पहुंच गया है। अब दोनों देशों की ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाए और मजबूत कैसे बनाए और इसके आयाम जो है वो किस तरह से बढ़ाए, ये अभी विषय है। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात तो है ही है, इसके साथ ऊर्जा की सिक्योरिटी की बात है, इसमें AI से लेकर कोलैबोरेशन की बात है, रेयर अर्थ और प्रेशियस मटेरियल जो होता है उसके बारे में, जैसे बैटरी का बड़े पैमाने पे दोनों देशों में निर्माण होने के लिए प्रयत्न, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चर्चा है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रशांत महासागर में शांति प्रस्थापित हो तो भारत का है ही महत्वपूर्ण उद्देश्य। उसके साथ साथ अन्य मामलों पे भी बहुत अच्छी चर्चा हुई है जिसका प्रतिबिंब जो है हम लोग इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में देख सकते हैं जो कि 10 पन्नों तक चला जाता है।
0: अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया तमाम चीजों का, तो सेमी कंडक्टर का भी काफी बड़े पैमाने पर उल्लेख किया गया। हाई टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने की बात है, साइंस या फिर स्पेस की हम बात कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी, लुपिक्स टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मिशन की कई सारी चीजों में बात कर रहे हैं, तो ये भविष्य की कूटनीति और विज्ञान को मिला जुला करके दोनों देश आपसी संबंधों को आगे ले जा रहे हैं?
1: बिल्कुल ले जा रहे हैं। कि हमारा जैसे व्यापार है, व्यापार के बारे में चर्चा ये हुई है कि भारत से निर्यात जापान बढ़नी चाहिए। आज के दिन में जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं वो जापान के फेवर में बड़े पैमाने पर है। भारत की निर्यात जो है वो करीबन 6 बिलियन के आसपास है और कुल मिलकर जो 27 बिलियन डॉलर ट्रेड है उसमें 5 बिलियन बहुत कम लगता है, इसलिए इसके बारे में कोशिश की जाएगी। करीबन 10 ट्रिलियन जापानीज एन की इन्वेस्टमेंट में आ रही है। इसमें रेलवे का भी जिक्र है, इसमें नए नए उद्योगों का जिक्र है, बड़े पैमाने पे सुमितोमो ने भारत में इन्वेस्ट करने का निर्णय ले लिया है। तो इस तरह से एक कमी ढूंढने की मुश्किल लगती है इस पूरे ज्वाइंट स्टेटमेंट में, इतना सारा इसका आयाम जो है विशाल है, दोनों देश के बीच में संबंधों को दर्शाता है।
0: जापान के प्रधानमंत्री

0: मंत्री सनाए ताकाइची ने कहा कि जापान और भारत को अपनी अपनी ताकत का पूरा लाभ उठाते हुए साथ मिलकर और अधिक सशक्त तथा समृद्ध बनना चाहिए।
1: We confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. The following points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation.
0: अगर ट्रेन की बात करें तो मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन परियोजना है इसका भी जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी परियोजना है भारत के लिहाज से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जापान ने इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, निवेश भी किया है। तो ये परियोजना जो है एक तरह से कह सकते हैं भारत और जापान की साझेदारी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रतीक बन चुकी है। व्यापक अहमियत अगर हम देखें इकोनॉमिक दृष्टि से तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट होगा? ये
2: बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। जैसा कि मैंने कहा, व्यापार की चर्चा हुई है, निवेश की चर्चा, ज्वाइंट कोलैबोरेशन की चर्चा हुई है, बैटरी और अन्य उत्पादों के प्रोडक्ट्स की बात हुई है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जितनी चीजें जरूरत है उन सब के बारे में चर्चा, एआई के बारे में कोलैबोरेशन का जिक्र है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलकर आर्थिक जो नीतियां हैं, वित्तीय नीतियां हैं, उसके बारे में काफी प्रगति इसमें हो चुकी है और जापान ने कमिटमेंट दिया है कि वो बड़े पैमाने पर भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा।
0: उसमें एक चीज ये भी देखने में आई है कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के कई अहम फैसले हुए हैं और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र किया गया, क्लीन अमोनिया की बात हुई, बायोगैस के क्षेत्र में नई साझेदारी शुरू करने की बात हुई है। भविष्य की ऊर्जा को लेकर के भारत के अपने एजेंडा है, भारत ने बहुत कुछ सोच रखा है कि हमें कितना ज्यादा करना, कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने पर लगातार बात होती है। तो आपको लगता है कि ये जो नई चीजें शुरू हो रही है भारत और जापान के बीच में, तो इससे हमारे जो अपने गोल्स हमने डिसाइड किए हैं भारत ने, उसमें उन्हें प्राप्त करने में बड़ी भूमिका होगी?
2: बिल्कुल, जैसे हमारे लिए होर्मुज का जो कंफ्लिक्ट रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा हमारे देश के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए। उसी तरह से बिल्कुल जापान भी ऊर्जा के लिए बहुत निर्भर है। तो दोनों देशों ने जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए कदम उठाने का इसमें जिक्र किया है। ये मैं समझता हूँ कि ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी चर्चा हुई है कि किस तरह से यूक्रेन में शांति प्रस्थापित होना जरूरी है, किस तरह से कोई एक देश खुद के टर्म पे ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। गाजा जो है, पैलेस्टीनियंस और इसराइल का जो मुद्दा उठा है, उसके पुनर्स्थापन के लिए, रिसेटलमेंट के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए चर्चा हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि भारत जापान के संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत आगे ले जाएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद में, सुरक्षा परिषद में भारत और जापान जो है सदस्य रूप में आना चाहिए, इसके ऊपर भी सहमति पहले ही हो चुकी है, उसके ऊपर दोबारा एक बार स्टैम्पिंग जो है मैं कहता हूँ इस बैठक में हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलकर ये बहुत सफल यात्रा रही है।
0: भारत और जापान कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी बात रखते हैं, क्वाड की हम बात करें, आसियान का जिक्र करें या फिर बिम्स्टेक जैसे मंचों का उल्लेख करें, ऐसे स्टेटमेंट हमारे सामने आते हैं जहां पर दोनों देश मिल करके बहुत ही स्पष्ट नीति के साथ में काम करना चाहते हैं। तो जो नई रणनीतिक व्यवस्थाएं वर्तमान समय में बनी हुई है उनको देख करके भविष्य को कैसे देखते हैं?
2: भारत और जापान मुझे लगता है कि दुनिया की जो डेस्टिनी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वाले हैं और उसकी नींव जो है भविष्य की, आगे आने वाले दशकों की तैयारी जो है इसमें ये डॉक्यूमेंट जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट दर्शाता है, किस तरह से दो देशों के बीच संबंध होने चाहिए और किस तरह से उनको विश्व में शांति और समृद्धि लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।
0: भारत के आंतरिक हिस्सों की अगर हम देखते हैं तो जापान का बहुत ज्यादा उत्साह रहता है पूर्वोत्तर भारत में निवेश करने का, हालांकि हमारे लिए क्षेत्रीय विकास की बात है, लेकिन भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें जापान की क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं?
2: देखिए, जापान दूसरे विश्व युद्ध में हमारे पूर्वोत्तर तक पहुंच गया था, जैसे अंडमान निकोबार में पहुंच गए थे उसी तरह से, तो जापान अच्छे से इससे एक उनका कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है उस इलाके से। दूसरा जो है कि उनकी ये सोच है कि जहां विकास कम है वहां जाके हम विकास के कार्यों में सहभाग दें, तो जापान का पूर्वोत्तर में रुचि लेना जो है भारत के लिए भी बहुत सहायक है। वहां से बड़े पैमाने पे जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी की ट्रेंड, मैन पावर जो है बहुत बड़े पैमाने से पूर्वोत्तर के राज्यों से जापान आज के दिन में जा रही है और ये बहुत ही स्वागत करने वाली बात है।
0: संयुक्त बयान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और दोनों देशों ने कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा भी की है। तो जापान का इतना खुलकर भारत के पक्ष में आना, इसे भारत के दृष्टिकोण से कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं और वैश्विक स्तर पर इसके क्या असर होंगे, क्या मायने होंगे?
2: जापान और भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन ने दिया है और चीन और जापान के रिश्ते जो है वो भी काफी संघर्ष वाले रिश्ते रहे हैं, बहुत नकारात्मक रिश्ते रहे हैं भूतकाल में भी और आज भी उसमें काफी असंघर्ष के मुद्दे हैं। तो इसलिए भारत और जापान की जहां तक बात है, एक कन्वर्जेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, दोनों के हित संबंध जो है, इंटरेस्ट जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए जापान भी और भारत भी आतंकवाद को लेकर बहुत मजबूती से विरोध करते हैं।
0: ज्ञानेश्वर जी, अक्सर जब इस तरह के समझौतों की या स्टेटमेंट पर हम चर्चा करते हैं तो ये देखा जाता है कि लोगों के बीच संपर्क, खासतौर पर दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके बीच संपर्क हो, उनकी बातचीत, जापान की भाषा हो, पर्यटन हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, इस पर जोर देने का लगातार जिक्र होता है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट का जो एक थॉट है उसको लेकर के जापान का हमारे प्रति दृष्टिकोण, हमारा जापान के प्रति दृष्टिकोण, दोनों में आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है?
2: 7वीं शताब्दी में पहला बुद्ध मंदिर जो है जापान में प्रस्थापित हो चुका था और बौद्ध धर्म जो है यहाँ से चीन होके तिब्बत, चीन और कोरिया होके जापान चला गया। उसके अलावा जो है गांधी और नेहरू के विचारों का जापान में बहुत प्रभाव शुरू के सालों में था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान की जिम्मेदारी तय करने की बात आई तो भारत के राधा विनोद पाल जज थे, उन्होंने ये कहा कि हारने वाले राष्ट्र पर आप अपना जो है शर्तें ला नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ी बात थी उस जापान के लिए। बुद्धिज्म के अलावा बोनसाई हो या अन्य कलाएं हो, सुमिए हो, जहां पर जापान भारत के कवियों पर हाइकू का बड़ा प्रभाव है, तो ये सब चीजें जो है, एनिमेशन जो है बच्चों के लिए बहुत लोकप्रिय है। तो इस तरह से आदान प्रदान जो रहा है वो सदियों का रहा है सांस्कृतिक संबंधों का। मुझे लगता है कि इस तरह के जो राजनयिक रिश्ते अच्छे हो जाते हैं उसका असर सहज अन्य आयामों पर भी हो जाता है।
0: ज्ञानेश्वर जी, भारत लगातार अपने महासागर, पहले जो सागर था उसे महासागर में चेंज किया गया, उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वहीं जापान की अगर बात हम समझे तो वो उनका कहना है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की हम बात करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो दोनों पहल दोनों देशों की तरफ से हो रही है पूरे क्षेत्र में, ये एक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से मजबूत करेंगे? और अगर चीन को लेकर के इसे हम समझें तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
2: बहुत जरूरी है कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है विश्व में अलग अलग तरीके से, सिर्फ राजनयिक नहीं, वो तो मिलिट्री भी है, इकोनॉमिक पावर भी है और अलग अलग तरीके से वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए भारत और जापान का एक साथ आना बहुत जरूरी था और इस जो शिखर वार्ता के समय इस पे मुहर लग चुकी है कि हम जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे और इकट्ठे जो है इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव बना करके।
0: ज्ञानेश्वर जी, अगर हम इस पूरे संयुक्त वक्तव्य को देखें, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को देखें, ऐसे समय में जब वैश्विक हालात काफी उथल पुथल हो रखे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही है ऐसा एजेंडा हमारा, या फिर भारत जापान संबंधों को और भी लंबा ले जाने के लिए खासतौर पर एक दशक की रणनीतिक रूपरेखा को यह तय करेगा?
2: मेरे ख्याल से ये हर साल प्रधानमंत्री के स्तर पर शिखर वार्ता होती है, इसका अर्थ ही यही है कि हम एक दूसरे के बहुत करीब है। इस तरह से द्विपक्षीय वार्तालाप हर साल होना ये अपने आप में बहुत विशेष बात है।
0: ज्ञानेश्वर जी, आपने इस चर्चा में तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, जिज्ञासाओं का समाधान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मुले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: सुर्खियों में
5: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशात जारी है। दिन का 1 बजा है, अब आलमी खबरें नशे की जाएं।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से आलमी खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया, जिसमें सालाना 20 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश है। ईरान के साबिक रूहानी पेशवा आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की सरकारी तौर पर 6 रोजा आखिरी रसूम का सिलसिला आज से तेहरान में शुरू हो रहा है। वेनेजुएला

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया, जिसमें सालाना 20 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश है। ईरान के साबिक रूहानी पेशवा आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की सरकारी तौर पर 6 रोजा आखिरी रसूमात का सिलसिला आज से तेहरान में शुरू हो रहा है। वेनेजुएला के वजीर खारजा ने उनके मुल्क में तबाहकुन सैलाब से मुतासर अफराद की बरवक्त मदद के लिए भारत सरकार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरू के सदारती इंतखाबात में कंजर्वेटिव रहनुमा के फौजी मोरी की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी है और फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में के वर्डी को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया है। इसके साथ ही ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी पहली मजलिस की नशियात अब इख्तिताम पजीर होती है। दिन में 3 बजे आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे दूसरी मजलिस की नशियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

0: आगे भी करेंगे कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बातें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: Hey guys, आज तो पार्टी चाहिए, हस्बैंड के साथ सेल्फी लेंगे।
2: मैं आपको दे डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करना।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की हमारी फिल्म है दीवाना। और इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ बनी हुई हूं, आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा। श्रोताओं, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि शाहरुख खान की भूमिका के लिए सनी देओल पहली पसंद थे। जब सनी देओल ने इस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया तो फिर शाहरुख खान को कास्ट किया गया। ये शाहरुख खान की पहली फिल्म थी। उन्होंने इस फिल्म से पहले ही दिल आशना है के लिए साइन कर लिया था। ये फिल्म थोड़ी देरी से रिलीज हुई और संयोग से दोनों ही फिल्मों में उनकी जोड़ी दिव्या भारती के साथ ही थी।

तो एक बड़ी ही रोचक बात ये है कि ऋषि कपूर को पहली बार इस फिल्म का एक गीत है ऐसी दीवानगी गाना सुनने पर इस गीत से प्यार हो गया था। मैं लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि ये गाना उन पर फिल्माया जाए, लेकिन फाइनली इस गाने को शाहरुख खान के लिए ही फिल्माया गया। ये भी बताना चाहूंगी कि इस गीत की धुन एक फेमस कन्नड़ गाने पर आधारित है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म को, इस फिल्म के इसी गीत को अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में।

एक बहुत ही गौर करने वाली बात है कि इस फिल्म में बोल राधा बोल से बहुत कुछ मिलता जुलता है जो उसी साल रिलीज हुई थी। दोनों में ऋषि कपूर हैं और दोनों में ही उनकी मां का किरदार सुषमा सेठ ने निभाया था। दोनों फिल्मों में अन्य कलाकार जो दिखाई दिए हैं उनमें आलोक नाथ और मोहनीश बहल शामिल हैं। दोनों फिल्मों में बहल ने नायक के परिवार की एक भरोसेमंद कर्मचारी के दुष्ट बेटे की भूमिका निभाई है। साथ ही दोनों फिल्मों में जब मोहनीश बहल के बुरे काम पकड़े जाते हैं तो उसका पिता उसे घर से बाहर निकालने का नाटक करता है। साथ ही दोनों फिल्मों में एक किरदार को मरा हुआ मान लिया जाता है लेकिन अंत में वह जीवित और स्वस्थ दिखाई देते हैं। खैर ये तो रही दोनों फिल्मों की सिमिलैरिटीज, लेकिन गीतों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते हैं इस फिल्म का ये अगला गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम के बीच में बहुत सारे संदेश हमें आ रहे हैं। जो संदेश आ रहे हैं वो आ रहे हैं गुजरात अजीत भास्कर का, और जो अगला संदेश है वो यसीन अंजान का झारखंड से। गुरमीत सिंह हमें लिख के भेज रहे हैं शालीमार बाग से। पूनम गजनेजा जी हमें संदेश भेज रही हैं, साथ ही सुधाकर यादव, और इनके साथ हैं प्रशांत राज कुमार, सचिन मयाल कुमार, प्रथमेश देशमुख और इनके अन्य साथी जो हमें लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही अगला संदेश है नरेंद्र जी का और राधे श्याम देवगन हमें लिखकर भेज रहे हैं इंदिरा नगर भंवरपुर से। कमल कांत गुप्ता जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, सतीश अनेजा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, साथ ही अगला संदेश है वो हरजिंदर शिंदा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं पंजाब से। आर कुमार हमें लिखकर भेजा है और इनके साथ है मिंटू टॉमस पंजाब से। धर्मेंद्र चीपा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, कपिल चीपा और पूजा परिहार जी हैं, फागू राम यादव हैं, मुकेश पट्टा जी हैं, पीएस नावकर भी हमें लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही जो अगला संदेश है वो रामशरण विश्वकर्मा जी का है और बसना से हमें लिखकर भेज रहे हैं राधेश्याम जी। राजकुमार डूडी हमें लिखकर भेज रहे हैं, रोजी डिकस्ट्रा भी हमें लिखकर भेज रहे हैं और इनके अन्य साथी हैं संजय ढींगिया हमें लिखकर भेज रहे हैं, सुदर्शन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमें लिखकर भेज रहे हैं।

दूरदर्शन मुखी जी हमें लिखकर भेज रहे हैं कि उन्हें हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है और बहुत ही जानकारियां प्राप्त हो रही है। आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन मुखी जी। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारे सभी लिसनर्स के जीवन बहुत ही सुखद हो। फारूक अली खान हमें संदेश भेज रहे हैं, संदीप मक्कर हमें संदेश भेज रहे हैं, साथ ही जो अगला संदेश है वो है दिग्दर्शन गौर जी का। सुरेश जाधव हमें लिखकर भेज रहे हैं, अहमद फूल वाले हमें लिखकर भेज रहे हैं, उनके साथ

ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि उस साल दूसरी सबसे हिट फिल्म बनी। बेटा फिल्म के बाद इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की। यही नहीं, इस फिल्म का संगीत भी उस साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला संगीत था, जिसमें 7 से 8 मिलियन यूनिट बेची गई थी। आपको ये बता दें कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट डेब्यू के लिए, दिव्या भारती को वर्ष का लक्स न्यू फेस के लिए, नदीम श्रवण को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, समीर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए, कुमार सानू को गाने सोचेंगे तुम्हें प्यार के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिले। तो श्रोता, ये था हमारा आज का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और अब मैं दीक्षा आपसे अनुमति देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले सुनते हैं, जाते जाते सुनते हैं इस फिल्म का ये अंतिम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। 1:40 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर 480 करोड़ रुपए की लागत नाल बनी नई टर्मिनल इमारत का उद्घाटन किया है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान आधारित कई युवकों में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम बारे व्यापक तौर पर दहशतगर्द ऐलान किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास प्रकट किया कि

सोशल मीडिया पोस्ट है तो उपराष्ट्रपति ने दस कि दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी जिला चुनाव अधिकारियों वोटर रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और बीएलओ ने उपराष्ट्रपति भवन एसआईआर अधीन चल रही गणना प्रक्रिया सहायता प्रदान की। श्री राधा कृष्ण ने सारे योग वोटर इस प्रक्रिया सरगर्मी हिस्सा लेने की अपील की। भारत और इजराइल विचकार दुवल्ला निवेश समझौता डीआईए अज तो लागू हो गया। इस समझौते पर पिछले सितंबर में नई दिल्ली में दस्तखत किए गए सन। वित्त मंत्रालय ने कहा कि समझौता दुवल्ले आर्थिक संबंधा मजबूत करने और एक सुरक्षित निवेश वातावरण यकीनी बनाने वाले महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि डीआईए सरहद पार निवेश गतिविधियों हुलारा मिले और भारत और इजराइल

ఉపముఖ్యమంత్రి తమిళ్ సై దత్తాహస్నాన్, అత్తే విదేశాల మంత్రి పవిత్ర మార్గరెట్ అనేకే. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेट ने कहा कि उन्होंने सरकार के भारत के लोगों पर श्रद्धांजलि भेंट की है। ईरान के मरहूम सर्वोच्च आदमी सुपुर्द खान के कारण संबंधित प्रोग्राम अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगे। इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में उन्होंने दफनाया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों का सर्वमत शोक मनाया जाएगा। फ्रांस 1947 तो बाद जून सब तो गर्म महीना रहा है। जबरदस्त गर्मी कारण 22 तो 28 जून दरमियान 2000 तो लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में पहली बार औसत तापमान राष्ट्रीय पद्धर तो 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने मेंबरों की एक मीटिंग बुलाई है, जिस वक्त कई महत्वपूर्ण प्रशासकीय तो माली मामलों पर चर्चा की जाएगी। इन्होंने कि ट्रस्ट में प्राप्त दान की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी के सिपे भी शामिल होंगे। मीटिंग के एजेंडे ट्रस्ट के जनरल सकत्र चौंपत राय और ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्रा वालों दिए गए इस्तीफे से विचार करना शामिल है। मीटिंग में राम मंदिर के प्रबंधन में संबंधित भविख की व्यवस्था बारे भी चर्चा की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद उन्होंने दर्शन पर श्रद्धांजलि भेंट की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देश भगत और दार्शनिक दसा। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद देश के इस दिव्य ज्ञान को दुनिया के सामने लेके आए। उन्होंने उम्मीद प्रकट की कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श हर किसी को समर्पण में सेवा करन, चरित्र के सर्वोच्च मियारों को बनाए रखन और राष्ट्र निर्माण में दृढ़ रहने की प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की संस्कृति अध्यात्मकता और राष्ट्रीय चेतना में विश्वव्यापी मानता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का ज्ञान और प्रेरणादायक विचार लक्षण नौजवानों का मार्गदर्शन करते रहेंगे तो उन्होंने अध्यात्मिक शिक्षा एक विकसित भारत के दृष्टिकोण में साकार करने के देश को नई दिशा प्रदान करेंगे। भारत और इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर खेडा जाएगा। यह मैच भारत के समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मिनट की लड़ी का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में मीह कारण रद्द हो गया। तीजा मैच 7 जुलाई में नॉटिंघम खेडा जाएगा। आखिर 2 मैच ब्रिस्टल के साउथहैम्पटन खेडे जाएंगे। इसके बाद भारत इंग्लैंड का 3 मैचों की 1 रोजा लड़ी भी खेडेगा। उत्तरी रेलवे की जम्मू डिवीजन ने सोने श्री अमरनाथ यात्रा में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुचारू आवाजाही यकीन बनाने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर रात प्रबंध करते हैं। रेलवे अधिकारियों ने बैठक रोशनी पक्षे कूलर और पीने वाले पानी की सहूलतों लैस एक मुसाफत उड़ीक पेपर स्थापित किया है। साफ सफाई बनाए रखने लिए सफाई कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहते हैं और रेलगड्डियों में निर्विघ्न पानी की सप्लाई यकीन बनाने लिए वाधु स्टाफ तैनात किया गया है। स्टेशन से 24 घंटे चल रहे बड़ा हेल्प डेस्क भी कायम किया गया, जिसे रेलवे कर्मचारी स्काउट्स के गाइड्स ने श्रद्धालुओं गड्डियों की समय सारणी प्लेटफॉर्म जानकारी डॉक्टरी सहायता के होर सेवा प्रदान कर रहे हैं। भारत ने भूचाल प्रभावित वेनेजुएला भारतीय फौज की एक विशेष

0: में इंदिराजी अमल में मदद की।
1: SIR is a big exercise undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat.
0: सरकार ने नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने टेलीग्राम से कहा है कि वो OTT पर कंटेंट और फिल्मों की नकल के खिलाफ फौरी इकदाम करे। जराये के मुताबिक मजीद बताया जराये ने कि टेलीग्राम से 15 दिन के अंदर इकदाम की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। इस इकदाम का मकसद भारत की क्रिएटर मईशत, फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म, नशर करने वालों, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को तहफ़ फराहम करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी कुमार ने एतमाद जाहिर किया है कि अहमदाबाद और मुंबई को मिलाने वाला पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर 2019-20 तक मुकम्मल हो जाएगा। वो अहमदाबाद में नामनिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे जहां उन्होंने गुजरात में रेलवे के जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया था। जनाब अश्विनी कुमार ने यह भी कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और गुजरात सेक्शन में 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। रेलवे के वजीर ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम मरहलावार तरीके पर किया जा रहा है। सूरत को बिलमोरा से जोड़ने वाला पहला सेक्शन अगले साल शुरू किए जाने का प्रोग्राम है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के अंत तक कम्प्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कम्प्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी से मुतालिक समझौता आज से नाफिज हो गया है, जिस पर नई दिल्ली में पिछले साल सितंबर के महीने में दस्तखत किए गए थे। वजारत खजाना ने कहा है कि यह समझौता बाहमी इकतसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की सिमत में नहायत अहम कदम की हैसियत रखता है। वजारत ने यह भी कहा है कि इस बाहमी समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी की सरगर्मियां बढ़ने की उम्मीद है। मौसमियात के महकमे ने बताया है कि अगले 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के गुजरात के कुछ और हिस्सों, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए साजगार हालात पाए जाते हैं। इसी दौरान आज कौमी राजधानी में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को हवस और गर्मी से कुछ राहत मिली। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे T20 बैन अवी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था, बारिश के सबब इसे तर्क करना पड़ा था। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है, उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैन अवी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन

0: का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार

0: मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कम्प्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कम्प्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बेज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्टाट के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र स्तुरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
4: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। नर्सरी बनाई है तो उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 KHz। स्टूडियो की घड़ी में इस समय 2:30 और 16 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए पेश है आपका अपना शो एक ही कलाकार।

शायद इंदौरी साहब ने एक शेर बहुत पहले ही कह दिया था कि लफ्ज कम पड़ जाते हैं जज्बात के आगे, संगीत बोलता है फिर हर हालात के आगे। एक ही कलाकार में आज बात उनकी जिनकी पहचान ही संगीत से है। तो आज की कहानी संगीत जगत के ऐसे ही फनकार की जिन्हें तीन अलग अलग नामों से जानते हैं हम। बॉलीवुड उन्हें एम करीम के नाम से जानता है, वहीं तेलुगु सिनेमा में वे एम कीरावानी के नाम से मशहूर हैं और तमिल सिनेमा में उन्हें मरगद मनी के नाम से पुकारा जाता है।

भारत के इकलौते ऐसे दिग्गज संगीतकार और गायक जिन्होंने दक्षिण भारत से लेकर बॉलीवुड तक और फिर पूरी दुनिया तक अपने संगीत की खुशबू फैलाई। और ऑस्कर विजेता संगीतकार एम कीरावनी एक ऐसे संगीतकार जिनका संगीत प्रेम, भक्ति, दर्द, वीरता यानी इंसानी जज्बात के हर रंग में ढलना जानता है।

जुलाई 1961 आंध्र प्रदेश के कोवूर में जन्मे कोडूरी मलकतमणि कीरवाणी। पिता कोदूरी शिव शक्ति दत्ता पेंटर और म्यूजिक कंपोजर, जिन्होंने फिल्मों के लिए कई गीत और स्क्रीन प्ले भी लिखे। मुंबई के सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई करने वाले पिता ने बचपन से ही संगीत से कीरावानी का परिचय कराया और सिर्फ 10 साल की उम्र से ही उन्होंने वायलिन और हारमोनियम से दोस्ती कर ली। 1987 से अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत करने वाले 61 वर्षीय कीरावानी को एसएस राजामौली की फिल्म आरआर के लिए गीत नाटू नाटू के लिए पहले गोल्डन ग्लोब से नवाजा गया और फिर सबसे बड़े संगीत सम्मान ऑस्कर अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए। आइए सुनते हैं हम उनके एक और बहुत ही प्रसिद्ध गीत को।

नमस्कार साथियों, आपको याद दिला दें आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आपके संदेश, आपके मेल, हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, इसके लिए हम प्रतीक्षा में हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें शाहजी बोडके हैं, ये हैं हनुमान बोटके के साथ, उत्तम जमदाड़े जी के साथ हिंगोली महाराष्ट्र से, और हमारे कार्यक्रम को बहुत गौर से सुन रहे हैं। उसी तरह कार्यक्रम एमएम करीम जी पर आधारित आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, उनके गीत इन्हें बहुत पसंद है। और ये श्रोता साथी हैं संतोष कुमार सोनार, सन्नी मुन्ना, बंडू दादा, ये हैं रथ चौक बहादुरपुर खानदेश महाराष्ट्र से। जी, महाराष्ट्र के बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और हमारे हौसले को बढ़ाते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। गांव की टोली नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम, तबस्तुम तरन्नुम और तराना हिना और सीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम को बहुत गौर से सुन रहे हैं। इसी तरह पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हैं अनिल, उषा, टिल्लू नायक और मधु नायक, कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज प्रसिद्ध बॉलीवुड संगीतकार एमएम करीम जी पर केन्द्रित कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और जानकारी अच्छी लग रही है। और ये लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से। उसी तरह हमारे श्रोता साथी हैं, ये हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान और ये हैं धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल और पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबलपुर कांकेर से फग्गूराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव हैं। और देखिए, जो हमारे लिसनर्स हैं वो संगीत से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं और इसीलिए रेडियो उनका अपना मनपसंद साथी होता है और हमारे साथ वो जुड़कर हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, हमारे कार्यक्रम के लिए हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। और आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार में आज प्रसिद्ध संगीत एमएम करीम के बारे में। तो चलिए, हम आपके इसी तरह संदेश साझा करते रहेंगे आपसे भी, लेकिन फिलहाल करते हैं हम उनके बाद जो हैं आज हमारे कार्यक्रम के केंद्र में। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने वाले कीरावानी जी जो हैं, उनकी यात्रा भी हर सफलता की यात्रा की तरह आसान नहीं रही। दोस्तों, लंबे समय बतौर असिस्टेंट काम करने के बाद जब उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला तो उनकी वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। 1990 से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इस प्रतिभाशाली कलाकार को 1991 में तेलुगु क्षण क्षणम से बड़ा ब्रेक मिला। ये वो पहली हिट फिल्म थी जिसने कीरावानी को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। और 1994 में उनकी एक फिल्म आई क्रिमिनल, जिससे उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला हिंदी सिनेमा में कदम रखने का। क्योंकि क्रिमिनल का तेलुगु संस्करण जो था वो 1994 में आया था और हिंदी संस्करण 1995 में आया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहा।

लेकिन सबसे ज्यादा कोहराम मचाया फिल्म के संगीत ने। क्रिमिनल फिल्म ने जितना पैसा फिल्म से कमाया था उससे कहीं ज्यादा उसकी म्यूजिक सीडी की बिक्री से कमाया गया और इस फिल्म के गीत तू मिले दिल खिले ने रात रात मशहूर कर दिया संगीतकार एम एम करीम को।

जी हाँ, 1998 में फिर उनकी फिल्म आई जख्म, जिसका गीत गली में आज चांद निकला ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आज भी वो गीत जब कहीं बजता है, जैसे कुछ देर पहले हमने आपके लिए बजाया, तो एक कदम हर संगीत सुनने वाले साथी का ठिठक कर रह जाता है उस गीत और संगीत में खो जाने के लिए। और उसके बाद एक बहुत ही औसत फिल्म का जादुई गाना आया, जादू है नशा है, जो महीनों तक लोगों की जुबान पर चढ़ा रहा। एक के बाद एक हिट गीत देने वाले एम करीम, जिन्होंने कई ऐसे गीत कंपोज किए और उनके हर कंपोज किए गीत को सुनने वाला संगीत का दीवाना मदहोश होकर सुनता रहा।

एम कीरावनी कुडूरी मराक थामनी कीरावनी, ऐसे परिवार से आते हैं जहां संगीत और सिनेमा दोनों मिले हैं विरासत में उन्हें। परिवार में कला का माहौल और मेहनत और सफलता उनके कदम चूमने लगी। जानते हैं उन्होंने महान संगीतकार के चक्रवर्ती के सहायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और यहीं से उन्होंने सीखा धुनों को जीना।

साथियों आपको बता दें, एक ही कलाकार में बात हो रही है प्रयोगवादी मौलिक धुनों के रचनाकार एम करीम की। 90 के दशक में जब हिंदी फिल्म संगीत में नए दौर में हिंदी फिल्म संगीत प्रवेश कर रहा था, तब निर्देशक महेश भट्ट ने एम करीम की प्रतिभा को पहचाना। क्रिमिनल के बाद ही उन्होंने यानी महेश भट्ट निर्देशित फिल्म जख्म में संगीत दिया। इस फिल्म में एम केरावनी ने भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया। फिल्म की संवेदनशील कहानी के साथ वो गीत बिल्कुल मुफीद रहे। उनकी सरल धुन, भावनाओं की गहराई, इस फिल्म के गीत संगीत ने अपनी अलग पहचान तो बनाई ही। साथ ही आपको बता दें कि एक ही कलाकार में ये जो हमारे साथी हैं आज के एम करीम, ये कलाकार, इनके साथ एक किस्सा बहुत ही मशहूर हुआ। वो था तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पितामह रामोजी राव के लिए, कि उस समय किरावनी ने कई फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया था उनके लिए, और एक फिल्म पर काम करने के लिए फिल्म के निर्देशक ने से उनका मतभेद हुआ और उन्होंने उस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। रामोजी राव ने जब इसकी वजह उनसे पूछी तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरी की पूरी फिल्म की कहानी में क्रिएटिव डिफरेंस और रचनात्मकता की कमी लग रही है। ऐसे जो शब्द थे वो रामोजी राव के लिए बहुत ही नए थे, अनोखे थे और अनसुने थे। फिर क्या था, रामोजी राव को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि किरवानी की जगह किसी और को लेकर आए, कोई एम करीम है, उनका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। ऐसा कहा उन्होंने, यानी जिस दौर में लोग उनकी धुनों के दीवाने थे तब वे एम करीम का नाम भी नहीं जानते थे। 1994 से लेकर अगले 10 सालों तक एम करीम हिंदी सिनेमा के लिए गुमनाम से रहे और लोग सिर्फ उनके गानों के मुरीद थे, वे नहीं जानते थे कि कंपोज किसने किया है।

साथियों, एमएम की रवानी के बारे में ये बताना जरूरी है कि अपने काम को पूजा की तरह करने वाला ये कलाकार, उनका मानना है कि संगीत कहानी का किरदार होती है और बैकग्राउंड की तरह उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। शायद यही कारण है कि उनका हर गीत दिल में चस्पा हो जाया करता था। ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, पद्मश्री विजेता किरवानी साहब इंटरनेट के पहले भी पैन इंडिया हो चुके थे, लेकिन अब वे ग्लोबलाइज हो चुके हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनके खुशहाल जीवन की हम कामना करते हैं और उन्हें अपने कार्यक्रम के माध्यम से जन्मदिन की बधाई देते हैं। आशा करते हैं आज का शो, आज के कलाकार में प्रस्तुत जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम से दीजिए मुझे यानी मनीषा को अनुमति, छोड़े जा रही हूँ इस शो के अंतिम गीत के साथ। आपको नमस्कार।

0: में 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हो जाते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मजबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्त किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। उधर दाखला ने गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 30 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है, उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बालोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रूपये के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, जिनमें रेलवे, सड़कें, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली की तरसील और तवानाई वगैरह भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बालोतरा में

पचपेद्रा के मकान पर मुल्क का पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स कौम के नाम वक्फ किया, जो मुल्क के तवानाई और पेट्रोकेमिकल के शोबे में एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा वजीर आजम मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का संग बुनियाद भी रखा, जिस पर 13,000 करोड़ रूपये से ज्यादा लागत आने का अंदाजा लगाया गया है। वजीर आजम ने चूरू सादुलपुर और चूरू रत्नगढ़ की रेल लाइन को दोहरा करने से मुतालिक प्रोजेक्ट और जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 2 और नेशनल हाईवे 125A को 4 लेन वाले प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया। इससे पहले वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। यह प्रोजेक्ट 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह इमारत 30,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर फैली हुई है और इसमें सालाना 20 लाख मुसाफिरों की आमद और रफ्त की गुंजाइश है। इस इमारत में मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं, ताकि वो बिना रूकावट और आसानी से सफर कर सकें। इस नई टर्मिनल इमारत से खित्ते में सियाहत, तिजारत और रोजगार मौक पैदा करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने जोधपुर में उड़ान स्कीम का भी आगाज किया, जिसे नए सिरे से

तश्कील दिया गया है। इस स्कीम के लिए अगले 10 साल के दौरान 28,840 करोड़ रुपए सर्व किए जाने का निशाना रखा गया है। वेनेजुएला के वजीर खारजा इवान गिल ने मुल्क में तबाहकुन जलजले से मुतासिर होने वाले अफराद की बरवक्त मदद के लिए भारत सरकार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जनाब गिल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत कायम किए गए भारत के फौजी फील्ड अस्पताल का

दौरा किया, जहां जलजले से मुतासर अफराद का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में वेनेजुएला के आवाम को रात दिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वेनेजुएला की वजीर खारजा ने बताया कि इस फील्ड अस्पताल में रोजाना 400 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरू के सदारती इंतखाबात में जीत हासिल करने पर क्यूको फुजीमोरी को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी करीबी दोस्ती को बहुत अहमियत देता है और वसी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बरूनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए पाबंदे अहद है। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। यह दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शोरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहे की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मंसूबाबंदी जैसी मुतअद्दिद सरगर्मियों में उनके मुलव्वस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। यह कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाजत देगा कि वह इन अफराद की इकतसादी असासे को मुंजमित करे, असलहे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें जब्त करे। UAPA की तरमीम से भारत की इंसदाद दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी हुकूमत और तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं। इस तरमीम को 14 अगस्त 2019 में नोटिफाई किया गया था। इस तरमीम ने मरकजी हुकूमत को इस बात का इख्तियार दिया है कि वो कानून के तहत न सिर्फ तंजीमों बल्कि अफराद को भी दहशतगर्द करार दे सके। इस तरमीम के नफाज के बाद से हुकूमत ने 80 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने टेलीग्राम से कहा है कि वो OTT पर कंटेंट और फिल्मों की नकल के खिलाफ फौरी इकदाम करे। जराये ने मजीद बताया कि टेलीग्राम से 15 दिन के अंदर इकदाम की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। इस इकदाम का मकसद भारत की क्रिएटर मईशत, फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म, नशर करने वालों, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर को तहफ्फुज़ फराहम करना है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी से मुतालिक समझौता आज से नाफिज हो गया है, जिस पर नई दिल्ली में पिछले साल सितंबर के महीने में दस्तखत किए गए थे। वजारत खजाना ने कहा है कि यह समझौता बाहमी इकतसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की सिमत में नहायत अहम कदम की हैसियत रखता है। वजारत ने यह भी कहा है कि इस बाहमी समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी की सरगर्मियां बढ़ने की उम्मीद है और भारत और इसराइल के दरमियान इकतसादी साझेदारी भी मुस्तहकम होगी। ईरान में साबिक रूहानी पेशवाए आदम आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की 6 रोजा आखिरी रसूम की तैयारियां जारी हैं, जो सरकारी तौर पर अंजाम दी जाएंगी और यह सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। हुकाम को उम्मीद है कि इन रसूम में लाखों सोगवार शिरकत करेंगे, जिसके लिए सलामती और ट्रैफिक के वसी इंतजाम किए गए हैं। सीनियर ईरानी रहनुमा, फौजी कमांडर्स और गैर मुल्की शख्सियतों ने तेहरान के मुसल्ले आजम पर आयतुल्ला खामेनेई को खराज अकीदत पेश किया। इन रसूम में भारत की नुमाइंदगी बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और उमूर खारजा की वजीर ममलकत पवित्रा मार्गरेटा ने की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारतीय हुकूमत और आवाम की तरफ से खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने हालिया जंग में हलाक होने वालों के कुनबों से भी ताजियत का इजहार किया। आयतुल्ला खामेनेई 28 फरवरी को इसराइल और अमरीकी हमलों में शहीद हो गए थे। उनके जनाजे का जुलूस अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद इस महीने की 9 तारीख को मुकद्दस शहर मशहद में उनकी तदफीन कर दी जाएगी। इसके बाद ईरान में 40 दिन तक सुरूग मनाया जाएगा। अवामी जमहूरिया कांगो ने एबोला मर्ज में मुब्तला 1502 अफराद की तस्दीक हुई है। आलमी सेहत तंजीम ने खबरदार किया है कि वहां की सूरत हाल संगीन है। 473 अफराद की मौत की भी तस्दीक हुई है। सेहत से वाबस्ता हुक्काम ने बताया कि 628 मरीजों को या तो अलग थलग रखा गया है या उनका इलाज चल रहा है। 229 अफराद रूबे सेहत हो चुके हैं। यह मरज इतूरी और शिमाली क्यू के मशरकी सूबों में अभी अभी फैल रहा है। आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि मुतासर इलाकों में सिक्योरिटी न होने और मुसलह टकराव की वजह से मरीजों का पता लगाने और उनके इलाज

रुकावट पेश आ रही है। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 बैन अल-अक़वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टन स्ट्रीट में खेला जाना था, बारिश के सबब इसे तक करना पड़ा। बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA का कहना है कि रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से 21वीं मरतबा ज़ापोरेजिया एटमी पावर प्लांट ZNPP की बिजली की सप्लाई मुनक़िद हुई है। इसकी वजह से एटमी तहफ्फुज के बारे में तश्वीश पैदा हो गई है। IAEA का कहना है कि फौजी सरगर्मियों की वजह से बिजली की सप्लाई बंद हुई है। एजेंसी के मुताबिक एटमी पावर प्लांट के इमरजेंसी डीजल जनरेटर ने एहतियात के तौर पर आज खुद बिजली की सप्लाई निजाम को बंद कर दिया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार

0: सिलसिला उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी इफ्तिताह किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है, उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं मारूफ नगमा निगार भरत व्यास के लिखे हुए, जिनका आज यौम वफात है। भरत व्यास 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में पैदा हुए, पहले उन्होंने कलकत्ता में हासिल किया, उसके बाद वो बंबई आ गए। बंबई में उन्होंने जो पहले फिल्म लिखी है, जिसके पहले नगमा निगार थे, वो फिल्म थी दुहाई। उसके बाद एक उन्होंने फिल्म डायरेक्ट भी की थी 1949 में, रंगीला राजस्थान। उनके अगर नगमों की बात की जाए तो एक प्रार्थना बहुत मशहूर है, मालिक तेरे बंदे हम, या फिर एक नगमा है उनका, ये कौन चित्रकार है। उन्होंने बहुत से नगमे दिए हैं और खूबसूरत नगमे दिए हैं। कुछ उन्हीं की फिल्मों के नगमे यानी कि उन्हीं के लिखे हुए नगमे हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में।

उपन्यास के लिखे नगमों की अगर बात की जाए तो रानी रूपमती फिल्म का एक नगमा था लौट के आजा मेरे मीत। ये नगमे बड़ा खूबसूरत था और इसने काफी शोहरत न सिर्फ भरत व्यास को दिलाई बल्कि इस नगमे के जरिए फिल्म को भी काफी शोहरत हासिल हुई।

सारे लगने के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज सुनिए मुख्तलिफ गुलकारों के गाए गुजराती लोकगीत।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ठोकर फिल्म का नगमा। मौसीकार थे श्याम जी घनश्याम जी। और समझ लीजिए, सुनिए उदित नारायण की आवाज में वीर दारा फिल्म का नगमा। नगमा के बाद जावेद अख्तर, मौसीकार मदन मोहन।

0: कुमार राठौर की आवाज में आप सुन रहे थे सालिम सुलेमान की मौसीकी से नगमा, फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी। अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी से नगमा, फिल्म है उपासना।
1: सिखा दूं

see.

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे टैक्सी ड्राइवर फिल्म का नगमा। मौसीकार थे ओपी नैयर और लीजिए सुनिए किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म वक्त की दीवार, नगमा निगार अंजान, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारे।

0: मौसमियात के महकमे ने बताया है कि अगले 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के गुजरात के कुछ और हिस्सों, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए साजगार हालात पाए जाते हैं। इसी दौरान आज कौमी राजधानी में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को हब्स और गर्मी से कुछ राहत मिली। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 बैन अल्कोमी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में भी कतारी के तरकिनो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात भी अख्ताम पजीर होती है। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार। एफएमबैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र ए। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिंदे पंजाबी सेवा। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी ए। सभा दी शुरुआत च आओ सब तो पहला सुनदे हां सरेकी प्रोग्राम चोक माही दी।

प्रकाश कौर ते सुरिंदर कौर तक आया गीत सुनना लियो। आजकल साइबर फ्रॉड बहु वधेंदे पए हिन। तुसा सुनया हो सी के इंदे खाते चो 40,000 रुपये निकल गए। उन्होंने ऑनलाइन काम करेंदे हुए 2,00,000 रुपये गुआ गिदे। इंज हर महीने हजारा धोखे आलिया लेवन देवन दिया शिकायतां पईया मिलेंदियां हिन। तुहाडे कोलों भी इंज दे फोन आवदे होवणगे कि तुहा को इनाम देवदे पए हां। अपने खाता नंबर दे आखरी 4 नंबर दस देवो। पैसे तुहाडे खाते विच पोसन की पोसन बल्कि कड गिने जा सन। ऑनलाइन लेवन देवन दे धोखे बहुत ही गए हिन। लोगों को ऑनलाइन काम करना बहुत सौखा लगेंदा है, पर इसको बहुत सावधानी नाल करण दी जरूरत है। तुसा रत्ता को ओटीपी दसेंदे नहीं कि तुहाडे खाते दी सारा जानकारी उन्हा तिकण पुजवेंदी है ते तुहाडा नुकसान थिया ही थिया। ई करके अपना इंटरनेट कनेक्शन पासवर्ड दे नाल हिफाजत करके रखो। दूई गल, साइबर कैफे जा फ्री वाईफाई तू इंटरनेट बैंकिंग जा ऑनलाइन लेवन देवन कदहा ना करो। धोखे तू बचो ते क्यों ना हुन एक गीत सुनावन जी। बहुत वधिया गीत है, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया दिल करे वेखदा रवां। गावन आले हिन नुसरत फतेह अली खान ते उन्हां दे साथी।

तो सुन रहे थे सराइकी प्रोग्राम चोक माहिती आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिंदी ए पंजाबी सेवाएं शाम के 5:03 हो रहे हैं। हम पेश कर रहे हैं प्रोग्राम देश पंजाब।

देश में का प्रोग्राम सुन वाले सारे ही श्रोतियों करमजीत वालों प्यार भरे नमस्कार आदाब अते सत श्री अकाल। हाजिर हो गए दोस्तों तुहाडे लिए आज के देश पंजाब प्रोग्राम दे सिलसिले लेके। तुम जानू करवा दवा कि आज केड़े केड़े सिलसिले तुहाडी नजर करने ने। हुण तो थोड़ी देर बाद तुसी जानदे हो कि आज दी गल सिलसिला तुहाडी नजर कीता जाएगा। सुबाद यानी 5:40 ते तुहाडे लिए पेश करांगे पंजाबी नाटक अपने होए पराए। नाटक के बाद सुगम संगीत सिलसिला लेके हाजिर होवांगे तुहाडे लिए 6:10 ते, जिस तहत आज तुसी चमन लाल पल्ला ते पुष्पा हंस होरा दे गाए हुए गीतां नूं सुनोगे ते प्रोग्राम दे अखीर च तमन्ना सिलसिले दे तहत सुनोगे खूबसूरत जिहा गीत। सो शुरुआत करदे हां प्रोग्राम दी अज दी गल दे नाल।

0: और पकड़ सिंह आ जरा
1: दस बच्चा
0: अरे तीवी की वड्याई करता रहना मेनू भी दस भी एडी केड़ी खूबी देखी आ तू ए
1: समुचे जग दी जन्नी औरत ही है
0: तो फकीरा कदी उस प्यो कोल भी बैठ के आई जिदी घर हुणे किसे धी ने जन्म लिया होवे ओदे सामने बह के ये गाना गाई यार वेखी तेरी झोली च की खैर पाउंदा
1: असी खैर दे लोभ च नहीं पटकदे फिरदे बच्चा असी तां हर वेले सच दी पाल च रहने आ सच नूं प्यार करदे आ ते सच दा ही गुणगान करदे आ सच दे मार्ग ते चलदे आ भुख प्यास वाल ध्यान नहीं जांदा बच्चा
0: ओ फेर क्यों गली गली गीत गाउंदा फिरदा है
1: इसलिए शायद ये गीत किसे ते असर कर जाए तीर दे जम्मन दा डर ओदे दिल चो निकल जाए मोहब्बत ते इबादत वर्गी इस रूह लई ओदे मन चो लुकी हुई नफरत सदा ले मर जाए सदा ले मर जाए
2: ए औरत तू महा

चाचा, मैनू पता है तू इस व्याह तो खुश नहीं। व्याह तेरी मर्जी नाल नहीं होया। जे सारे तेरे ते जोर ना पाउंदे तां तू कदी भी ना मंदा।

मिल जाना हो चन्ना तारियां दी रात हो। तुसीं सुन रहे सी पुष्पा हंसरा दी आवाज दे विच गाए इस गीत नूं। अगला गीत पेश कर रहे हां तमन्ना सिलसिले दे तहत और सुनदे हां सुनील सिकंदर दी आवाज दे विच प्रोग्राम दी आखरी पेशकश। इक चरखा गली दे विच डालिया

सदियों से गंदर दे गायस के इतने नारी दोस्तों तमन्ना सिलसिला भी होने थे ही मुकता है अपने दोस्त करमजीत नु आज ताई प्रोग्राम खत्म करने दी इजाजत दो फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम चिता तक ले नमस्कार।

0: ਤਾਇਆ ਰੋਣੂ ਸਿਆ ਦੇਖਣ ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ ਚਿੜੇ ਦੀ ਤਾੜ ਕੀ
1: ਚਿੜੇ ਦੀ ਤਾੜ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਤੀਆਂ
0: ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋੜੂ ਸੜਾ ਕਰਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨੀ ਲੜਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੱਸੀ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ
1: ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਮਾਰਦਾ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ
0: ਜਦੋਂ ਚਿੜਾ ਆਪਦੀ ਤੀਵੀ ਮੂਹਰੇ ਮਤ ਬਣਾ ਚਿੜੀ ਮੂਹਰੇ ਨੰਬਰ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਬ ਜੇ ਚੌੜੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲੱਸਣ ਦੇਖੀ
2: ਨਮਸਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵੀ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
2: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप जापान अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPS के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया।

भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: की जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, बहुत बार देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई हैं जो अपने फसल की सिंचाई करते हैं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जितनी मात्रा में पौधों को फसल को पानी की जरूरत होती है उससे ज्यादा पानी हमारे किसान भाई फसलों को दे देते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे के जिस हिस्से पर पानी की आवश्यकता नहीं होती उस पर भी पानी पहुंच जाता है। इससे पौधे खराब होने और कीड़े लगने का डर सताने लगता है। फिर इसी पौधे को बचाने के लिए हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। अब वो सवाल ये है कि इन सब से कैसे बचा जा सकता है, तो इन सब का समाधान है टपक सिंचाई।
1: बिल्कुल शशि भाई, हमारे बहुत से किसान भाई इस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक कर भी रहे हैं जिससे पानी की एक बूंद का भी नुकसान नहीं होता। ऐसा करने से वो अपने पौधों को खराब होने से भी बचा लेते हैं और अधिक पानी से खराब पौधों को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता। ड्रिप इरिगेशन प्रोसेस या टपक सिंचाई के तहत किसान भाई अपने खेतों में लगी फसलों तक पानी पहुंचा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ट्यूबवेल या बोरवेल से बहुत पानी की जरूरत नहीं पड़ती।
0: बिल्कुल नीलम बहन, इसके साथ ही महंगी बिजली और महंगे डीजल के युग में अगर कम खर्च में सिंचाई का काम हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई टपक सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई अगर टपक सिंचाई का फायदा जान जाएं तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बहुत कम खर्च में टपक सिंचाई का सिस्टम लगाया जा सकता है। इससे सरकार का सपना पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी साकार हो जाएगी।
1: बिल्कुल, टपक विधि का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि एक घंटे के भीतर एक एकड़ के खेत की सिंचाई की जा सकती है और पानी की बर्बादी भी रोकी जा सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा नीलम बहन आपने, तो हमारे किसान भाई जरूर टपक सिंचाई जो विधि है इसका इस्तेमाल करके अपने खेतों में फसलों की सिंचाई करें ताकि आपका समय भी बचे, आपका पैसा भी बचे। तो नीलम बहन, ये तो बात रही टपक सिंचाई की, और अब बात करते हैं उन किसान बहन भाइयों की जो अगेती फूल गोभी की रोपाई करने के लिए अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं। तो इस समय पौध को उखाड़ते समय फिर उसके बाद रोपाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ सावधानियां उनको रखनी है, खेत की तैयारी कैसे करें और रोपाई के बाद जल प्रबंधन है, खाद का प्रबंधन है वो कैसे करें, तो इसी क्रम में अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक बातचीत जिसका विषय है फूल गोभी की रोपाई एवं देखभाल। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर श्रवण सिंह और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान भाइयों नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि फूल गोभी की अगेती खेती के बारे में और इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर श्रवण सिंह जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: तो डॉक्टर साहब फूल

0: गोभी एक ऐसी फसल है कि जिसको पहले तो लोग ज्यादातर सर्दियों में देखते थे, लेकिन अब ये बारहों महीने उगाई जाने लगी है और हम बाजार में देखते हैं कि हर समय आती रहती है। तो कहीं न कहीं इसकी बिजाई का, इसकी रोपाई का साल भर कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन जो आगे आने वाले समय में आपके जुलाई अगस्त सितंबर में आएगी, तो उसकी तैयारी हमारे किसान भाई कर रहे होंगे। तो इस समय जो अगोयती फूल गोभी है कि उसकी तैयारी के लिए क्या उसकी कुछ अलग किस्में होती हैं?
1: हाँ देखिए किसान भाइयों, फूल गोभी की जैसे सर ने अभी बताया कि ये अलग अलग महीनों में उपलब्ध होती है और ये सितंबर अक्टूबर से लेकर के पूरा मार्च तक उपलब्ध होती है। इसके लिए अलग अलग किस्में हैं, एक किस्म कोई भी ऐसी नहीं है जो अभी से बोना शुरू करें और उसको आप दिसंबर तक उसको लगा लें, ऐसी कोई किस्म नहीं है। इसके अलग अलग समय के लिए अलग अलग किस्में हैं। फूल गोभी की बात करें तो अभी जो समय है अगेती फूल गोभी का, उसकी चार पांच महत्वपूर्ण किस्में हैं, जैसे कि पूसा मेघना जो अभी लगाई जा सकती है और कुछ किसानों ने तो उसकी एक महीने पहले भी बुआई कर चुकी है, क्योंकि इसका जून से लेकर के जुलाई तक का महीना होता है और बुआई का समय होता है।
0: यानी डॉक्टर साहब जिन्होंने इसके पौधे डाल दिए हैं वो भी इसकी रोपाई कर सकते हैं?
1: वो भी उसकी रोपाई कर,
0: और जिन्होंने अभी तक नहीं डाल पाए हैं वो भी उनके डालने का अभी सही समय है।
1: समय है। साथ ही साथ दूसरी जो किस्म है, जो पूसा मेघना है, इसकी पैदावार कम रहती है, लगभग 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर रहती है। फूल का आकार थोड़ा छोटा है, लगभग 250-300 ग्राम का रहता है। उसकी बजाय अच्छी किस्में जो उपलब्ध नई किस्में जो आई है पूसा संस्थान की तरफ से, उसमें पूसा अश्विनी है जो अभी जुलाई के महीने में बहुत अच्छी मानी जाती है लगाने के लिए, और ये अक्टूबर के अंत में तैयार होती है, मध्य अक्टूबर के बाद में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। तो इस किस्म को भी आप ले सकते हैं, इसका आकार है वो 500-600 ग्राम के आसपास आ जाता है। साथ ही एक किस्म और है पूसा कार्तिकी, तो इसकी भी पूसा अश्विनी की तरह ये भी जो अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा है उसमें कटाई के लिए तैयार होती है, और ये नवम्बर के प्रथम पखवाड़े में भी तैयार रहती है, तो ये एक लंबा अंतराल लेती है। इन दोनों किस्मों को अभी लगा सकते हैं। साथ ही साथ पूसा संस्थान ने नई संकर किस्में भी विकसित की हैं, उसमें पूसा फूलगोभी संकर 101 और पूसा फूलगोभी हाइब्रिड 102 है। इन किस्मों को भी किसान भाई ले सकते हैं। इनकी पैदावार 20 टन प्रति हेक्टेयर से ज्यादा पैदावार इनकी होती है, और ये यही अक्टूबर के महीने में और नवंबर के प्रथम पखवाड़े में ये कटने के लिए तैयार हो जाती है।
0: जैसे आपने पहले जो किस्में बताई जैसे पूसा सोनी और दूसरी पूसा की किस्में, लेकिन आपने कुछ हाइब्रिड किस्मों का जिक्र किया, इसमें और उसमें अंतर क्या है?
1: हाँ देखिए, जैसे मैंने बताया था कि पूसा मेघना में फूल का आकार छोटा रहता है, ऐसे अश्विनी में थोड़ा ठीक है 500 ग्राम के आसपास रहता है, और पूसा कार्तिकी में भी वो 550-600 ग्राम का, लेकिन जो संकर किस्में हैं उसमें एक तो आकार जो फूल का है वो ज्यादा है, तो ज्यादा आकार है तो ज्यादा वजन और ज्यादा पैदावार, क्योंकि जो ओपन पोलिनेटेड किस्में होती है, जो किस्में होती है उनकी पैदावार लगभग 15-16 टन प्रति हेक्टेयर रहती है, वही संकर किस्में यदि किसान लगाते हैं तो उनकी पैदावार 20 टन से ज्यादा चली जाती है। ये एक हाइब्रिड जो वैरायटीज होती है उनकी ज्यादा पैदावार की क्षमता होती है। दूसरी उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, ऐसे नहीं कि खेत में कुछ पौधे अब कट रहे हैं, कुछ थोड़े दिन बाद में कट रहे हैं, कुछ और थोड़े दिन बाद में, ये समस्या ओपन पोलिटेड जो किस्में होती है उसमें ज्यादा रहती है, और ये हाइब्रिड में कम रहती है। हाइब्रिड में एक साथ कटाई होती है, एक या दो कटाई में पूरा खेत खाली हो जाता है, जो किसान के लिए ज्यादा लाभकारी है। तो ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है, ज्यादा पैदावार और एक साथ कटाई के लिए तैयार होना।
0: तो अक्सर ये तो रही किस्मों की बात, लेकिन अगर कोई हमारे किसान भाई इसके पौधे डालना चाहते हैं तो पौधे डालते समय क्या सावधानी रखें?
1: क्योंकि फूल गोभी एक शीतकालीन फसल है और हमने ऐसी किस्मों का विकास किया जो गर्मी में भी आ सकती है, उसके साथ साथ ऐसी तकनीकी का भी ध्यान रखने की जरूरत है जो गर्मी में फूल गोभी को सही वातावरण दे, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वो नर्सरी उत्पादन होती है। किसान भाइयों, आजकल जो गर्मी है उसमें पौध तैयार करना एक बड़ा चैलेंज है। आप इसके लिए उठी हुई क्यारियां बनाएं जो लगभग 1-1.5 फीट चौड़ी हो और 3 से 5 मीटर लंबी आप ले सकते हैं, जो लगभग 1 फीट के आसपास उठी हुई क्यारी होनी चाहिए, क्योंकि जलमग्नता कभी कभी खेतों में कहीं हो जाती है, तो उसमें ये उठी हुई क्यारी नर्सरी तक पानी नहीं जाने देती ऊपर पौधों तक, और आपकी पौध बचाव होती है। उसके ऊपर आप अच्छे से भुरभुरी बना लें उनको हाथों से, और फिर उसके अंदर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लाइन सोविंग करें, छिटक कर बीज बेड पे नहीं बोएं। उसके लिए सीधी सी बात ये कहते हैं हम किसान भाइयों को कि लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर लगभग एक डेढ़ इंची जो गहरी नालियां बनाते हैं उसमें बीज डालें और बीज का उपचार अवश्य करें।

0: चाहे आप बाविस टिन से करें 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, या जो भाई जैविक खेती करते हैं वो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर 1 किलो बीज के लिए उपचारित करके और उन नालियों में बीज की बुआई करें और उसके बाद उनको ढक दें मिट्टी से, या जो आप कोई भी ऐसे जो मिट्टी आपके पास रहती है बालू मिट्टी रहती है उसे ढक दें और उसके ऊपर सूखी घास जरूर रखें। फिर उसके ऊपर धीरे धीरे पानी डालते रहें 2-3 दिन तक। आप देखिए तीसरे या चौथे दिन तक जमाव आ जाता है, उस समय आप उस सूखी घास को हटाइए और बाविस्टिन का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक छिड़काव जरूर कर दीजिए, जिससे आपके पौध में कोई बीमारी नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये देखिए कि कहीं ज्यादा गर्मी तो नहीं है, ज्यादा गर्मी है तो जो ग्रीन कलर का जो हरे रंग का शेड नेट आता है उसको 50% या 75% से ढकने की कृपा करें। उससे क्या होगा कि जो तेज दिन की धूप होती है उसमें आपकी नर्सरी को नुकसान नहीं होता। साथ ही साथ ये भी देखिए आजकल मौसम बारिश का है तो जो किसान भाई अभी बुआई कर रहे हैं वो प्लास्टिक की सीट से नर्सरी को जब आपको लगे कि मौसम विभाग का अनुमान आया है कि बारिश होगी उसको ढकने की जरूर व्यवस्था करें ताकि जो सीधा तेज पानी गिरता है नर्सरी पे उससे आपके पौधों को नुकसान न हो जाए। हाँ, यदि ऐसी कोई संभावना नहीं है तो प्लास्टिक से ढकने की कोई जरूरत नहीं है और शेडनेट है वो आप रात के टाइम में हटा सकते हैं, लेकिन दिन में अवश्य शेडनेट रखें। इस 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें और जैसे आपकी पौध 15-10 दिन की हो जाती है एक गुड़ाई अवश्य करें, जो नालियां बनाई आपने जिसमें बुआई की उसके बीच बीच में गुड़ाई करें और उसके बाद में हल्की हल्की सी मिट्टी बैठी करें। और जब रोपाई का समय आता है उसमें कई किसान भाई गलती करते हैं कि वो 30 दिन के पौध लगाते हैं उसकी हार्डनिंग नहीं करते हैं, वहां भी उस बात का ध्यान देने की जरूरत है। उसमें किसान भाइयों से कहूंगा कि जैसे आप रोपाई के लगभग 35 दिन के आसपास के पौध लें और रोपाई से 7-8 दिन पहले आप 1-1 दिन के अंतराल पे पानी दें तो उससे क्या होगा जो पौधों में थोड़ी शक्ति आती है और वो फिर आप शाम के समय रोपाई के लिए लेके जाएं वो ज्यादा अच्छा आपके खेत में पौधे स्थापित होंगे।
1: तो ऐसा ये तो पौधशाला जो हमारे किसान भाई खेतों में या दूसरी जगह तैयार करते हैं वहां की बात की, बहुत से ऐसे किसान भाई हैं कि इसको संरक्षित दशा में भी पौध उत्पादन करते हैं तो वहां पे हार्डनिंग कैसे कर सकते हैं?
0: हाँ, देखिए कुछ किसान भाइयों के पास ऐसी संरक्षित संरचनाएं होती हैं जिसमें पौध तैयारी करते हैं, उनके लिए ये सलाह दी जाती है कि जैसे पानी का मैंने बताया कि जैसे 25 दिन की पौध के लगातार पानी उसको देते रहें सुबह शाम जब जरूरत पड़े, उसके बाद में आप एक समय दें और दूसरे समय नहीं दें तो ये जो सूखापन महसूस करेगी पौध वो भी एक तरीके का हार्डनिंग का प्रोसेस होता है, उससे पौधों में जान रहती है। साथ ही साथ अंत के दिनों में थोड़ा सा शेडनेट भी कम कर दें, जो हरी छाया आपने ऊपर रखी है उसको कम कर दीजिए ताकि धूप पौधों पे गिरेगी और पानी का कम रहेगा, ये दोनों चीजें पौधे को शक्ति देती हैं तो इसका जरूर विशेषता ध्यान रखना चाहिए।
1: अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि जमीन लाइनों में उस तरीके से उसकी बिजाई करें, लेकिन जो संरक्षित वातावरण में करते हैं तो उस किस तरीके से पौध तैयार करते हैं?
0: इसमें ये रहता है कि ज्यादातर प्रो ट्रेज या प्लग ट्रेज का भी किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। हाँ, छोटे छोटे जो प्लग ट्रेज होते हैं जिसमें 96 सेल 96 जो सेल्स होती हैं ऐसी भी होती हैं और किसी में ज्यादा भी रहती हैं, उसमें जो मीडिया रहता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा साथ में यदि आप कोकोपीट और वर्मी कम्पोस्ट इन दोनों का कम्बिनेशन भी आप लेते हैं उससे भी आप पौध तैयार कर सकते हैं। उसमें 1 वर्मी कम्पोस्ट हो सकती है और 2 कोकोपीट, ये कम्बिनेशन आप बना करके उनमें सांचों में भर दें और उसमें 1-1 बीज आप लगाए और तो उससे भी पौध अच्छे तैयार होते हैं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं किसान भाई, बेड पे भी कर सकते हैं और जो प्लग ट्रेज होती है उनमें भी कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये कोकोपीट और वर्मी कोलाइट और परलाइट जो बताया इसकी मात्रा कितने बराबर रखते हैं?
0: जो कोकोपीट वर्मी कोलाइट और परलाइट ये तीनों को हम देखें तो इनमें 3:1:1 का रेशो रखना ठीक रहता है, लेकिन मैंने जो हमारे यहाँ देखा है कि फूल गोभी के लिए ये जो कम्बिनेशन चलता है वर्मिकुलाइट परलाइट और कोकोपीट वाला ये ज्यादा कारगर नहीं हो पाता जब हम खेत में इन पौधों को लगाते हैं। तो थोड़ी मेरे किसान भाइयों को सलाह ये है कि आप कोकोपीट और वर्मी कम्पोस्ट वाला जो कम्बिनेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव हमें देखने को मिला है, खासकर अगेती फूल गोभी में, और यह जो किसान भाई मिट्टी में पौध तैयार करते हैं उनमें ज्यादा शक्ति मिलती है और वो ज्यादा अच्छे से पौध खेत में सक्सेस हो पाते हैं।
1: मिट्टी और गोबर की खाद मिला के प्रयोग करें?
0: हाँ, ये भी कारगर है क्योंकि उसमें जो जड़ें फूलगोभी को बहुत सॉफ्ट मीडिया रहता है उसकी जरूरत नहीं होती है, उसको थोड़ा सख्त मीडिया चाहिए ताकि उसके पौध अच्छे से जमीन को पकड़े और जब वो खेत में जाएं तो वहां वो चल सके। और जब उनको ज्यादा सॉफ्ट मीडिया मिलता है हमारे यहाँ जो गर्मी में जो अगेती में है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो किसान भाई मिट्टी में जो पौध तैयार करते हैं या मिट्टी का जो मीडिया है वो या कोकोपीट और वर्मी कम्पोस्ट का मीडिया है इन तीनों को ज्यादा ट्राई करने की कोशिश करें जिससे आपके खेत में जब पौधे जाएं तो वो ज्यादा सक्सेस उनको मिले, ज्यादा जिंदा रहे खेत में।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि हमारी जो पौधशाला है उसमें

0: की समस्या हो जाती है।
1: देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ये दो तीन चीजों में देखी गई है। जो किसान भाई छिटक कर पौध बोते हैं वहाँ कहीं कहीं ज्यादा गहरा बीज गिरता है तो वहाँ बिल्कुल पौध सारा खाली हो जाती है। दूसरी बात ये कि जहाँ डैम्पनेस ज्यादा है, नमी ज्यादा रहती है ऐसी नर्सरी में, जहाँ पानी भरा रहता है ऐसी कोई समस्या है, उसमें ये ज्यादा आती है क्योंकि ये कवक से आती है फंगस से। तो ये दो तीन फंगस अलग अलग होते हैं। जैसे एक हमने बताया था शुरू में चर्चा की कि बीज उपचार करना शुरुआत में जरूरी है, हमने बीज उपचार किया और उसके बाद में यदि लाइनों में सोविंग की और जैसे मैंने बताया था कि 10 से 12 दिन बाद में हल्की हल्की गुड़ाई करें, मिट्टी की गुड़ाई करें, उससे जो हवा निकलती है तो ये बीमारी कम हो जाती है। ये समस्या वही ज्यादा आती है जहां सघनता है नर्सरी में और साथ में पानी की अधिकता है। तो इसका उपचार ये है कि समय समय पर एक तो गुड़ाई करें, साथ ही साथ बावेस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल से जरूर आप अपनी जो नर्सरी है उसकी ड्रेंचिंग कर दें, वो 10वें दिन कर दें और लगभग 17-18 दिन बाद में फिर कर दें, तो उससे ये समस्या कम आ जाती है। और ये देखें कि पानी की ज्यादा आवक हो रही है, बरसात की संभावनाएं हैं, तो नर्सरी को ढक के रखिए, ज्यादा कीचड़ नहीं होने दीजिए, उससे ये समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी।
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बरसात का सीजन है और बरसात के सीजन में अगर हमारे किसान भाई गोभी की रोपाई करते हैं तो क्या सावधानी रखें जिससे उनकी फसल खराब ना हो।
1: जो अगेती फूलगोभी होती है वो पूरे बरसात के सीजन में ही होती है, क्योंकि ये अभी हम जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर में इसकी कटाई करते हैं, तो पूरा बरसाती सीजन है। और फूलगोभी की खासियत है कि इसको जड़ में ज्यादा पानी पसंद नहीं है, ये जैसे पानी खड़ा होगा खेत में फूलगोभी मर जाती है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जल निकास की उत्तम व्यवस्था करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप हमेशा जो अगेती फूलगोभी है उसको मेड़ी पे लगाएं, और मेड़ी जैसे आप ट्रैक्टर से बनवा सकते हैं या आप मजदूर जो हाथों से बनवा सकते हैं,
0: फावड़े
1: से बना सकते हैं, और ये लगभग आधा फीट या एक फीट की ऊंची जितनी ऊंची रहेगी उतनी अच्छी है। इसमें पानी भी कम लगता है क्योंकि आपने सिर्फ पंक्तियों में लाइनों में पानी देना है, नालियों में पानी देना है, तो बाकी आधा खेत आपका वैसे बच जाता है। और साथ ही साथ इसमें पौधे की जड़ तक पानी नहीं जाता, तने तक उतना पानी नहीं जाता है, तो ये पौधे मरते नहीं है। ये विशेषता इस बात का ध्यान रखें कि मेड़ी पे लगाएं, बिना मेड़ी पे कहीं पर भी फूलगोभी अगेती फसल को ना लगाएं।
0: बरसात के सीजन में ज्यादातर जो कीट होते हैं उनका भी प्रकोप देखा गया है, क्योंकि गर्मी भी होती है और कीटों के लिए दूसरी फसलें कम होती हैं और गोभी ऐसी है कि मुलायम होती है, तो इसपे ज्यादा कीट प्रभावित होते हैं, तो उसको किस तरीके से नियंत्रण करें?
1: देखिए अगेती फूलगोभी है उसमें एक तंबाकू की सुंडी है वो ज्यादा उभर के आती है। ये किसान भाई जब अपने खेत में जाते हैं जैसे थोड़ी फसल बिखरने लग जाती है तो दूर से भी पत्ते को देख सकते हैं कि उसमें खुरचा हुआ से दिखता है, जब उसके नीचे की तरफ देखते हैं तो छोटे छोटे इल्लियों के झुंड मिलते हैं। तो किसान भाइयों को एक सलाह दी जाती है कि ऐसे पत्तों को तोड़ करके किसी बाल्टी में डालें और गड्ढे में दबा दें। दूसरी सलाह ये दी जाती है कि जो तंबाकू की सुंडी है उसके ट्रैप्स आते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स जो फास बोलते हैं, वो आप लगभग 10 से 15 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में लगाएं, उससे जो नर कीड़े हैं वो सारे उसमें उस पॉलिथीन के थैले में चले जाते हैं, तो आगे ज्यादा कीड़े नहीं बनेंगे। और यदि फिर भी इस समस्या का निस्तारण नहीं हो पाता किसी किसान भाई के लिए, तो उसके लिए जैसे इंडोक्सिकार्ब 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं, और उसी के साथ यदि वो उपलब्ध नहीं है तो स्पाइनोसेड का 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल के साथ उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये दोनों दवाई हैं वो फूल बनने की अवस्था से पहले पहले करें, क्योंकि फूल बनने के बाद में इनका प्रभाव करने से ये फूल के अंदर इसकी जो दवाई का है उसका असर कहीं कहीं जा सकता है। हम कहते हैं जो वेटिंग पीरियड है उसका विशेष ध्यान रखना है, और उसके बाद स्प्रे से कोई ज्यादा फायदा भी नहीं होता है क्योंकि पत्तों को जो नुकसान करते हैं उनको पत्तों को बचाना है ताकि फूल बड़ा बने, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। दो कीड़े ज्यादा आते हैं। और यदि बीमारियों की बात करें तो अगेती फूलगोभी में एक काला सड़न आती है जिसमें पत्तों के ऊपर कोने आकार के धब्बे बनते हैं, पीले बड़े बड़े धब्बे बनते हैं, और ये खासकर उन्हीं खेतों में ज्यादा आता है जहां पे समतल भूमि में लगाया है या पत्ते जमीन को टच करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेड़े पे लगाते हैं तो पत्ते जमीन पे ज्यादा टच नहीं करते हैं, मेड़ेपन पे टच नहीं करते हैं, तो ये बीमारी कम आती है। दूसरी बात, जब हमने बताया कि बीज उपचार करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान करें कि आपने यदि बीज उपचार किया है तो ये समस्या थोड़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ यदि फिर भी ऐसी कोई समस्या आती है तो उन पत्तों को तोड़ करके अपने खेत से किसी गड्ढे में दबा दीजिए, तो उससे ये ज्यादा बीमारी फैलती नहीं है। तो ये दो तीन उपाय आप लेते हैं तो ये बीमारी नहीं आएगी। इसी में एक बात कहना चाह रहा था कि जो फूलगोभी की आप खेत की तैयारी करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फूलगोभी का जो पौधा है वो तभी उठता है, तभी अच्छी पैदावार देता है जब उसको भोजन अच्छा मिलता है। उसके लिए आप ये कोशिश करें कि लगभग 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद

0: जरूर खेत में डालें। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट 3 से 5 टन प्रति हेक्टर डालने की कोशिश करें, और वो उपलब्ध नहीं है तो आप जैसे खेत में सड़ी हुई जो आप कंपोस्ट बनाते हो पत्तों से वो डालने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ 120 किलो नत्रजन और लगभग 50 से 60 किलो पोटास और 50 से 60 किलो फॉस्फोरस जरूर अवश्य डालें। साथ ही साथ अगेती फूलगोभी में देखा गया है कि बोरोन की कमी कई खेतों में देखी गई है, इसके लिए 10 किलो बोरेक्स जब आप खेत में जो अंतिम जुताई करते हैं मेड़ी बनाने से पहले उस समय अवश्य मिला दें। इन 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपकी फसल को अच्छी पैदावार तो हो ही साथ ही अच्छी गुणवत्ता भी बनी रहे।
1: जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, अगर सही तरीके से अगर आप देखभाल करते हैं और बरसात के मौसम में खरपतवारों का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर श्रवण सिंह जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान बहन भाई सुन रहे थे ये बातचीत फूल गोभी की रोपाई और देखभाल, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर श्रवण सिंह और इनसे बात कर रहे थे शिव नंदन लाल।
0: और अब वो किसान बहन भाइयों आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं योगेंद्र मुंचाना।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये देशभक्ति रागिनी, कलाकार थे योगेंद्र निमचाना।
1: और देखिए, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि

एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। शाम के 7:30 हुए हैं। सुनते हैं गजल।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल होस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। अपने नजदीकी डॉक्टर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया। पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त की। करकडूमा अदालत ने दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज की। और सोनिया विहार जल संयंत्र तथा तैमूर नगर ड्रेन के पास नई पाइपलाइन के कार्य के कारण कल दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कई सार्वजनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्कों के सौंदर्यीकरण, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, मुलक नहर और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। साथ ही अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी करने के निर्देश दिये।
3: श्रीमती गुप्ता ने पीतमपुरा के BDFD पार्क में सौंदर्यीकरण कार्यों और इसमें नई प्रकाश व्यवस्था के लिए 93 नए इलेक्ट्रिक पोल का उद्घाटन किया। इसके अलावा शालीमार बाग में जल भराव और सीवरेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए आधुनिक जल निकास प्रणाली और अतिरिक्त सीवेज पंपिंग स्टेशन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नागरिकों को जल भराव और सीवरेज संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत दिलाने के लिए आधुनिक तथा दीर्घकालिक संरचना विकसित कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने पीतमपुरा परिसर स्थित दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर संस्थान में उपलब्ध शैक्षणिक तथा तकनीकी सुविधाओं, प्रशिक्षण अवसंरचना और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को रोजगारोन्मुख और आधुनिक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार निवेश कर रही है, जिससे उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
2: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को मजबूत करने के उद्देश्य से वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया है। स्थानांतरण और पदस्थापन नीति के अंतर्गत 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: तबादला किए गए अधिकारियों में 23 उप लेखा नियंत्रक और 29 वरिष्ठ लेखा अधिकारी शामिल हैं। साथ ही 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को पदोन्नत कर उप लेखा नियंत्रक बनाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से वित्तीय प्रबंधन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
2: पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के अनुसार अब से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए अलग अलग समय को बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कर दिया गया है। वहीं दिल्ली नगर निगम के लिए समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलौना उद्योग का मूल्य लगभग 120 अरब डॉलर है, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 0.2 से 0.3% है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें

0: टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: मैं मानता हूं कि यहां जो सभी भारतीय स्वदेशी खिलौने बनाने वाली कंपनियां हैं, ये एक प्रकार से भारत के भविष्य को तैयार कर रही हैं और ये विदेश से आने वाले सब खिलौने बच्चों के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं, ये इनोसेंट पेरेंट्स को कभी ध्यान ही नहीं आता। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में एक बात का उजागर किया था कि भारत के पास इतना टैलेंट है कि हम एक ग्लोबल टॉय हब बन सकते, पूरी दुनिया में भारत के खिलौने जाने चाहिए।
0: आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय एक्सपो इस महीने की 7 तारीख तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कड़कड़डूमा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की। आरोपियों ने ट्रायल शुरू किए बिना लगातार जेल में रखने पर व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के आधार पर जमानत मांगी थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों में एक स्थानीय और 2 अफ्रीकी निवासी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इसके अलावा अपराध में इस्तेमाल होने वाले 3 दोपहिया वाहन और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों अफ्रीकी नागरिक वैध पासपोर्ट और वीजा प्रस्तुत करने में असफल रहे। वहीं एक अन्य मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को सीलमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 350 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज जय सिंह रोड स्थित NDCC कन्वेंशन सेंटर में सुविधा शिविर का आयोजन किया। शिविर में नागरिकों से सीधे संवाद के माध्यम से 60 जन शिकायतें प्राप्त हुई, जिन पर संबंधित विभागों ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान परिषद के 30 विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लेकर एक ही स्थान पर शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की। दक्षिण दिल्ली में प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत लोगों को उनके घरों के पास ही मालिकाना अधिकार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविरों की शुरुआत की गई है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज तेखंड गांव स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA बारात घर में पहले शिविर का उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय शिविर तेखंड एक्सटेंशन और तेखंड गांव के निवासियों के लिए आयोजित किया गया है। श्री बिधोड़ी ने बताया कि ऐसे शिविर दक्षिण दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नगर निगम के जन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर जन स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निगम के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्पा सेंटरों, होटलों और मोटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही श्री वाही ने भारी मात्रा में कचरा उत्पादकों जैसे रेस्तरां, होटल और बैंक्वेट हॉल आदि को अपने परिसरों तथा आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता निरीक्षकों के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले जहां देश के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था, वहीं आज सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र से जुड़े दक्षिणी दिल्ली के मुख्य पाइपलाइन पर काम के कारण कल दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी।
2: जलापूर्ति प्रभावित होने के कारण कल सवेरे 10 बजे से करीब 8 घंटे तक इन इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। जल बोर्ड के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में कैलाश नगर, गांधीनगर, पटपड़गंज, ओखला, जाकिर नगर, बटला हाउस, खान मार्केट, निजाम

0: मुदीन साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, सराय काले खां, बदरपुर, सरिता विहार, श्रीनिवासपुरी, छतरपुर और इसके आसपास के इलाके शामिल हैं। वहीं तैमूर नगर ड्रेन के पास नई जल पाइपलाइन को मौजूदा पाइपलाइन से जोड़ने के कार्य के कारण कल सवेरे 10 बजे से सोमवार शाम 4 बजे तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी संग्रह करने और आवश्यकता पड़ने पर जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने की सलाह दी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्रनाथ सिंह ने द्वारका में सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 के अंतर्गत आज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का अभियान नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। एक रिपोर्ट।
2: श्री रविन्द्र इंद्रनाथ सिंह ने बताया कि सहकारिता सप्ताह के दौरान द्वारका, नरेला, रोहिणी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत ऐसे पौधों का रोपण किया जा रहा है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पक्षियों और जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही श्री सिंह ने विशेष रूप से अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाने पर बल देते हुए कहा कि फलदार वृक्ष न केवल हरित आवरण बढ़ाने में सहायक होते हैं बल्कि पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी बनते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आज सभी सहकारी संस्थाओं और उनके सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सहकार से समृद्धि के संकल्प के साथ सहकारिता जनभागीदारी, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास का सशक्त आधार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के संकल्प पर बल देते हुए कहा है कि इसे अब जन भागीदारी से पूरा करने का समय आ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है जहां नागरिक पौधारोपण के लिए स्लॉट बुक कर निःशुल्क पौधे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सामुदायिक पौधारोपण अभियान के लिए वृक्ष रथ बुला सकते हैं तथा दिल्ली ग्रीन वॉरियर के रूप में पंजीकरण भी करा सकते हैं।
3: दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाएंगे, साथ मिलकर लगाएंगे। 7 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इनॉग्रेशन करेंगे इस पूरी मेगा प्लांटेशन ड्राइव का। मिल करके पेड़ लगाएंगे और आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं दिल्ली ग्रीन वॉरियर के नाते भी कि सरकार जब भी प्लांटेशन करेगी आपको इन्वाइट कर सकती है। टीवी पॉलिसी आ चुकी है, कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आइए मिल करके दिल्ली को हरा भरा करें।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप के निर्माता और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महान आध्यात्मिक चिंतक और भारतीय संस्कृति के वैश्विक संवाहक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में आयोजित 35वें आम महोत्सव 2026 का आज दूसरा दिन है। दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय उत्सव दिल्ली हाट और जनकपुरी में कल तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
4: महोत्सव में आम की 400 से अधिक किस्में प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें हुसनारा, केसर, मल्लिका, आम्रपाली, फजली सहित अनेक प्रसिद्ध किस्में शामिल हैं। महोत्सव में आम उत्पादकों, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और किसान संगठनों ने भी भाग लिया। साथ ही आगंतुकों के लिए आम खाने की प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के लिए विशेष गतिविधियां भी आयोजित की गई हैं। वहीं इस महोत्सव में आम और आम से बने उत्पाद तथा पौधों की खरीदारी की सुविधा भी उपलब्ध है। ये उत्सव कल भी दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दिल्ली सरकार ने वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया। पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त की। अर्काडुमा अदालत ने दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज की और सोनिया विहार जल संयंत्र और तैमूर नगर ड्रेन के पास

0: पाइपलाइन के कार्य के कारण कल दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 8 बजे प्रस्तुत है मुशायरा। तमाम सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, शायरी कोई इकतसादी चीज नहीं है, बल्कि शायरी किसी के मिजाज या तबीयत के मुताबिक इंसान के अंदर पैदा होती है, जो कुदरत की तरफ से एक अतिया है। कुदरत की अता करदा इस नेमत की अफादियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सामईन या नाजरीन के रूबरू कोई शेर पढ़ा जाता है तो अक्सर उन पर एक खुशी या अफसोदगी की कैफियत तारी हो जाती है, कभी कभी एक जोश सा देखने को भी मिलता है। इसीलिए अक्सर मुशायरों में लोग किसी एक शेर को दोबारा सुनने की फरमाइश करते हैं। आइए सामईन सुनते हैं मुशायरा, निजामत कर रहे हैं जनाब खालिद अखलाक।
2: आज के इस मुशायरे में जो शोरा हजरात शेख फरमा रहे हैं उनके असमाई ग्रामी इस तरह हैं। जनाब शेख नेलवी साहब, मैं खालिद अखलाक, मोहतरमा साहिबा और जनाब मुनीर हमदम साहब। इसकी शुरुआत हम करते हैं बहुत प्यारे और बहुत तय लहजे के शायर जनाब शाकिर नेहरवी साहब के साथ, जिन्होंने हालिया वक्त में बहुत तेजी के साथ अपना मकाम बनाया है। जनाब शाकिर नेहरवी।
3: बहुत शुक्रिया खालिद साहब, लेकिन वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। मतलब यह है कि यकीन कर कि तेरे गम शनास हम भी हैं, यकीन कर कि तेरे गम शनास हम भी हैं, उदास देख के तुझको उदास हम भी हैं, उदास देख के तुझको उदास हम भी हैं, ये हम जो हंसते थे मजनू की दास्तां सुनकर, ये हम जो हंसते थे मजनू की दास्तां सुनकर, किसी के इश्क में अब देवदास हम भी हैं।
4: बहुत अच्छा,
3: किसी के इश्क में अब देवदास हम भी हैं, निशानियां हैं यहाँ सब तेरी बताई हुई, निशानियां हैं यहाँ सब तेरी बताई हुई, जहाँ पे तू है वहीं आसपास हम भी हैं।
2: बहुत उम्दा।
3: जहाँ पे तू है वहीं आसपास, बहुत शुक्रिया। जहाँ पे तू है वहीं आसपास हम भी हैं, और शेर देखिए कि किसी ने हमको दिखाया जब आईना तो खुला, किसी ने हमको दिखाया जब आईना तो खुला, लिबास होते हुए बेलिबास हम भी हैं।
2: बहुत उम्दा
4: शेर,
3: बहुत शुक्रिया। लिबास होते हुए बेलिबास हम भी हैं, बिछड़ के हमसे अकेले तुम ही उदास नहीं, बिछड़ के हमसे अकेले तुम ही उदास नहीं, तुम्हें गवाह के मुसलसल उदास हम भी हैं।
2: अच्छा है,
3: बहुत शुक्रिया। देखिये तस्वीर है, वाकिफ है दौरे हाल तेरी नाजुकी से हम,
4: वाकिफ है दौरे हाल
3: तेरी नाजुकी से हम, हर जुल्म सह रहे हैं बड़ी खामोशी से, हर जुल्म सह रहे हैं बड़ी खामोशी से हम।
2: बहुत उम्दा शाकिर साहब।
3: बचपन से ही अंधेरे की आदत सी है हमें,
2: बहुत
3: बचपन से ही अंधेरे की आदत सी है हमें, फिरते हैं मुंह छुपाए हुए रोशनी से हम।
4: क्या बहुत अच्छा, फिरते हैं मुंह छुपाए हुए रोशनी से,
3: बचपन से ही अंधेरे की आदत सी है हमें, फिरते हैं मुंह छुपाए हुए रोशनी से हम। ये ग्रह का शेर है, इसलिए भी अपना फरिश्तों में एहतराम है, इसलिए भी अपना फरिश्तों में एहतराम, मिलते हैं आदमी की तरह आदमी से हम। हम झांक लें जो अपने गरेबा में भूल कर, हम झांक लें जो अपने गरेबा में भूल कर, मुमकिन है मर ही जाएंगे शर्मिंदगी से हम।
2: क्या बात,
3: मुमकिन है मर ही जाएंगे शर्मिंदगी से हम, मेहनत यकीन हौसला किस्मत भी है मगर,
2: क्या बात,
3: मेहनत यकीन हौसला किस्मत भी है मगर, पहुंचे हैं इस मकाम पे दीवानगी से हम।
2: क्या बात,
3: मेहनत यकीन हौसला किस्मत भी है मगर,

0: क्या बात है।
1: पूछे है इस मकाम पे
2: दीवानगी से हम, गजल भाई मिर्ज़ा ग़ालिब की ज़बान में कुछ अशआर कह दे वो देखिएगा। मतलब हुआ कि जो शख्स कभी खुल के ना बोला मेरे आगे,
0: जो शख्स कभी खुल के ना बोला मेरे आगे,
2: जो शख्स कभी खुल के ना बोला मेरे आगे, रोया तो बहुत टूट के रोया मेरे आगे। रोया तो बहुत टूट के रोया मेरे आगे, और शेर देखिए कि खुद तो नहीं बदला वो बदलता है मगर रोज, खुद तो नहीं बदला वो बदलता है मगर रोज, बातें कभी लहजा कभी हुलिया मेरे आगे।
0: वाह वाह, बातें कभी लहजा कभी हुलिया मेरे आगे,
2: खुद तो नहीं बदला वो बदलता है मगर रोज, बातें कभी लहजा कभी हुलिया मेरे आगे, बारात गमों की है मुसलसल मेरे पीछे।
1: क्या बात है,
0: क्या बात है।
2: बारात गमों की है मुसलसल मेरे पीछे, चलता है मसर्रत का जनाजा मेरे आगे।
1: क्या बात है,
2: क्या बात है। चलता है मसर्रत का जनाजा मेरे आगे, और शायद ये बतौर खास कि मंसूब जो तुझसे है वो लम्हा नहीं दूंगा।
1: क्या बात है।
0: मंसूब जो तुझसे है वो लम्हा नहीं दूंगा,
2: रख दे कोई दुनिया का खजाना मेरे आगे।
1: क्या बात है, वाह वाह।
2: मंसूब जो तुझसे है वो लम्हा नहीं दूंगा, रख दे कोई दुनिया का खजाना मेरे आगे। और इसमें देखिए सर के जिस दिन से समाया है मेरे दिल में तेरा नूर,
0: जिस दिन से समाया है मेरे दिल में तेरा नूर,
2: अब नाक रगड़ता है उजाला मेरे आगे। जिस दिन से समाया है मेरे दिल में तेरा नूर, अब नाक रगड़ता है उजाला मेरे आगे, ऐसा न हो आंखों से छलक जाए लहू फिर, ऐसा न हो आंखों से छलक जाए लहू फिर, अब नाम ना लो उसका खुदारा मेरे आगे। इसमें गजल के चंद अशआर लिख लीजिए, छोटी घर में गजल है कि वैसे तो हम अक्सर बातें करते हैं, वैसे तो हम अक्सर बातें करते हैं, लेकिन सबसे छुपकर बातें करते हैं, लेकिन सबसे छुपकर बातें करते हैं, आंखों से सुननी होंगी इनकी बातें,
0: आंखों से सुननी होंगी इनकी बातें,
2: दीवाने चुप रहकर बातें करते हैं।
1: क्या बात है,
2: दीवाने चुप रहकर बातें करते हैं। और इसे देखिए कि जब वो मुझसे रूठ के बात नहीं करती,
1: क्या बात,
2: जब वो मुझसे रूठ के बात नहीं करती, उसके सारे जेवर बातें करते हैं।
1: क्या बात,
2: उसके सारे जेवर बातें करते हैं। और इसे भी देखिए कि काश हमारा भी एक घर हो छोटा सा,
0: काश हमारा भी एक घर हो छोटा सा,
2: वो देखो दो बेघर बातें करते हैं।
1: बहुत उम्दा है भाई,
0: बहुत अच्छा शेर।
2: काश हमारा भी एक घर हो छोटा सा, वो देखो दो बेघर बातें करते हैं, इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है। दरिया झीलें सागर बातें करते हैं।
1: क्या बात है भाई,
2: इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है, दरिया झीलें सागर बातें करते हैं, खामोशी का शोर बहुत है कमरे में,
0: खामोशी का शोर बहुत है कमरे में,
2: आओ चलकर बाहर बातें करते हैं।
1: क्या बात,
2: खामोशी का शोर बहुत है कमरे में, आओ चलकर बाहर बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया।
0: क्या बात,
1: सामीन अभी आप शागिर दहलवी साहब से उनका कलाम समाप्त कर रहे थे, अब शागिर दहलवी साहब के बाद मैं खालिद अखलाक आपके सामने हाजिर हूँ अपने कलाम के साथ। पाना गजल का मतलब मुलाहजा फरमाए, अर्ज करता हूँ कि तब जाके हल किया है एक मसले को मैंने,
0: तब जाके हल किया है एक मसले को मैंने,
1: हर जाविये से देखा हर जाविये को मैंने। और यूं है कि नजरें भटक रही हैं, मंजर बहक रहे हैं,
0: नजरें भटक रही हैं, मंजर बहक रहे हैं,
1: आंखों में भर लिया था एक महकदे को मैंने,
0: वाह,
1: आंखों में भर लिया था
0: एक महकदे।

0: खुशियों में डूब गए। वाह,
1: खुशी का जवाब नहीं है।
2: और सामईन, अब मैं एक ऐसी शायरा को दावा देने जा रहा हूँ जिनकी सरपरस्ती अब जिस नौजवान शायरों को हासिल है, मश्क शायरा मोहतरमा इफ्तिज़ा जी साहिबा, आपका मंजूर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों की खिदमत में एक नज़्म पेश करूं। समाज फरमाए, नज़्म का उन्वान है फनकारी जिंदगी। मैं एक फनकारी जिंदगी हूँ, मेरे ख्यालों में कितनी ख्वाबीदा आरजुएं मचल रही हैं। मैं एक फनकारी जिंदगी हूँ, मेरे ख्यालों में कितनी ख्वाबीदा आरजुएं मचल रही हैं। मैं सोचती हूँ इन्हें जगाकर हकीकतों का नगर बसा दूं। मैं सोचती हूँ इन्हें बचाकर हकीकतों का नगर बसा दूं। तुलुए खुर्शीदे आरजू से शबे अलम का फुसू मिटा दूं। तुलुए खुर्शीदे आरजू से शबे अलम का फुसू मिटा दूं। मैं सोचती हूँ अगर इशारे तजस्सुस तशनगी से बाहर जरा भी मैंने कदम निकाला। मैं सोचती हूँ अगर इशारे तजस्सुस तशनगी से बाहर जरा भी मैंने कदम निकाला, कोई धमाका जरूर होगा, कोई धमाका जरूर होगा जो मेरे सपनों के कसने जर्री को दफतन सरनगू बनाकर मुझे रुलाकर गमे जहाँ के मुहीब गारों में फेंक देगा। गमे जहाँ के मुहीब गारों में फेंक देगा। मैं सोचती हूँ कि मुझसे फनकारी जिंदगी पर किसी ने संगे मलाल फेंका तो टूट कर चूर चूर होगा वो शीशे रब्ते शौक जिसमें जमाल खुर्शीद देखती हूँ, सहर की तमहीद देखती हूँ। यही तसलसुल तो मेरा गम है, यही तसलसुल तो मेरा गम है यही मेरा शौक तशनगी है। मैं सोचती हूँ अगर कोई मेरे ताबा खुलूस दिल से यकीन दिला दे। मैं सोचती हूँ अगर कोई मेरे ताबा खुलूस दिल से यकीन दिला दे। कभी न तोड़ेगा नूरे पैहम के सिलसिलों को, कभी न तोड़ेगा नूरे पैहम के सिलसिलों को। तो मैं भी ठुकरा की जुल्मतों को, हिकारतों को, सऊबतों को। तो मैं भी ठुकरा की जुल्मतों को, हिकारतों को, सऊबतों को। समेट कर अपने जिस्म जा की तमाम पाकी जतर अमानत उभरते सूरज को सौंप दूंगी। शुक्रिया। अब एक गजल तरन्नुम से समाप्त फरमा लीजिए।
0: जी जी जी
1: समाते मतलब पेश खिदमत है। हम जो ओढ़े हुए एहसास की चादर निकले।
2: क्या बात है।
1: हम जो

0: निकले
1: क्या बात,
0: जिनको इंसान समझते थे वो पत्थर, जिनको इंसान समझते थे वो पत्थर निकले। खुश्क मौसम था मगर डूब गए ले जमीन। खुश

निकले। और देखिए इस शेर के लिए पूरी होना चाहिए समाज फरमाइश बेगते दस्ते यजीदी मुझे मंजूर नहीं। बेगते दस्ते यजीदी मुझे

0: से खंजर निकले। और ये शेर भी समाज फरमान
1: जी
2: इशारा
0: जबरे ते

0: अब तक जबरे तहजीब की तारीख यही है अब तक एक दीवार गिराई तो कई घर एक दीवार गिराई तो कई घर निकले और मकसद मत फरमा ले
1: जी
0: उनके चेहरे

0: वाह
1: उनके चेहरे भी नजर आए धुंधले जरी
0: क्या बात
1: आईना खानों से जो लोग समर कर निकले आईना खानों से जो लोग समर कर निकले हम जोड़े हुए एहसास की चादर निकले जिनको इन आसान समझते थे वो पत्थर निकले बहुत
0: शुक्रिया अगरात अभी आप मुहतरमा फजल साहबा की शायरी से बात कर रहे थे आइए अब आपने गजल मोहतरम मुनीर हमदम साहब से मजबूत चला जाए और उनसे दरखास्त की जाए कि वो अपने बेहतरीन कलाम से हमें महसूस फरमाए
2: गजल का मतलब समाप्त फरमाए जे हाथ की लकीरों का ये कमाल हो जाए छे
3: हाथ की लकीरों का ये कमाल हो जाए छे
2: आसमां जमीन सूरज सब ख्याल हो जाए छे आसमां जमीन सूरज
4: सब
2: ख्याल हो जाए छे हर तरफ सलाओं में दायरे चमकते हैं हर तरफ सलाओं में दायरे चमकते हैं हर तरफ उजालों की देखभाल हो जाए
0: क्या बात
2: हर तरफ उजालों की देखभाल हो जैसे और भीगी पलकों में जाने क्या चमकता है
0: क्या बात
2: और भीगी पलकों में जाने क्या चमकता है फूल से हंसी लब पर वो सवाल हो जाए फूल से हंसी लब पर
0: वो सवाल हो जैसे
2: चमकता है चांद के मुकद्दर में चांदनी कहाँ हमदम
0: चांद के मुकद्दर में चांदनी कहाँ हमदम
2: खुद से मेरा मिलना भी नेक फाल हो जाए
0: बहुत आला शेर है वाह वाह वाह
2: खुद से मेरा मिलना भी
4: नेक फाल हो जैसे
0: बहुत खूब सर वाह वाह
2: हाथ की लकीरों का वो एक कमाल हो जैसे आसमां जमीन सूरज
0: क्या बात है वाह वाह
2: और गजल का मतलब समाप्त करना
0: है
2: आसमानों के पार है कोई यानी परवरदिगार है कोई आसमानों के पार है कोई
0: यानी परवरदिगार है कोई
2: यानी परवरदिगार है कोई

0: नशीर समाज फरमाए वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आता,
1: वो तुम्हें क्यों नजर
0: वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आता, मेरे सर पर सवार है कोई, वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आता,
1: मेरे सर पर सवार है
0: कोई, मेरे सर पर सवार है कोई। नशीर समाज फरमाए एक चादर मिली है यादों की,
2: एक चादर
1: मिली है यादों की,
0: एक चादर मिली है यादों की, दिल में देखे मजार है कोई, चादर मिली है यादों की,
2: क्या बात है सर, वाह वाह,
0: दिल में देखे मजार है कोई, ढूंढता हूँ कहाँ कहाँ उसको,
1: ढूंढता हूँ कहाँ
0: कहाँ उसको, मेरे अंदर फरार है कोई,
2: क्या बात
0: है, मेरे अंदर फरार है कोई। देखे के मीरो गालिब की बात करते हो,
1: मीरो गालिब की बात,
0: मीरो गालिब की बात करते हो, शायरी है के बार है कोई,
2: क्या बात है, बाबा
0: शायरी है
3: के
0: बार है कोई, आसमानों के पार है कोई,
2: बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है
0: भाई गजल के, और कुछ ये गजल के इश्तेहारे हो गए हैं,
2: गजल के इश्तेहारे हो गए,
1: गजल के इश्तेहारे हो गए हैं,
0: बहुत रोशन सितारे हो गए,
2: वाह वाह वाह, बहुत उम्दा है सर, वाह,
0: बहुत रोशन सितारे हो गए हैं, इधर तुम हो उधर दुनिया है सारी,
2: इधर
0: तुम हो उधर दुनिया है सारी, समंदर दो किनारे हो गए,
2: क्या बात है, क्या बात,
0: समंदर दो किनारे हो गए हैं। शेर समाज फरमाए चिरागों की यहाँ बाजी लगी है,
2: चिरागों की यहाँ बाजी लगी,
0: चिरागों की यहाँ बाजी लगी है, वहाँ जुगनू भी तारे हो गए, वहाँ जुगनू भी तारे हो गए,
2: क्या कमाल के अशआर है सर।
0: फिर देखेंगे मोहब्बत का यही दस्तूर है तो,
2: मोहब्बत का
0: यही दस्तूर है तो, चलो हम भी तुम्हारे हो गए हैं,
2: क्या बात है, क्या
0: चलो हम भी तुम्हारे हो गए हैं, और चलो कुछ देर उसको याद कर लें,
1: चलो कुछ देर उसको याद कर लें,
0: होना वैसे तो सारे हो गए,
2: क्या बात है,
0: होना वैसे तो सारे हो गए भाई के, आंखों से कई सूरज वो रोज उगाता है, एक शख्स उजालों की तस्वीर बनाता है,
2: क्या बात है, क्या
0: आंखों से कई सूरज वो रोज उगाता है, एक शख्स उजालों की तस्वीर बनाता है, इन झील से आंखों में एक और समंदर है, उन झील सी आंखों में एक और समंदर है, ठहरी हुई कश्ती को जो पार लगाता
2: है,
0: ठहरी हुई कश्ती को
3: जो पार लगाता है,
0: मुझे समाज फरमाए के खुलता है कहाँ सब पर असरार मोहब्बत का,
2: क्या बात,
0: खुलता है कहाँ सब पर असरार मोहब्बत का, आईना कहाँ सबको रोज दिखाता है,
2: क्या बात है, वाह वाह,
0: आईना कहाँ सबको रोज दिखाता है, देखें कि कोई भी नहीं होता,
2: कोई भी नहीं होता
0: रातों की स्याही में, कोई भी नहीं होता
3: रातों की स्याही
0: में, इन भीगे चिरागों को फिर कौन जलाता है,
2: क्या बात है, वाह वाह वाह,
0: भीगे चिरागों को
1: फिर कौन जलाता है,
0: आंखों से कई सूरज वो रोज उगाता है, एक शख्स उजालों की तस्वीर बनाता है,
2: क्या बात है,
3: वाह वाह।
2: नबी आप समाप्त कर रहे थे जनाबे मोहम्मद हमदम साहब से उनकी बेहतरीन शायरी, आज के आकाशवाणी के इस मुशायरा प्रोग्राम में जो शोरा हजरात जिन्होंने शिरकत की उनके इस्माए ग्रामी एक बार फिर मैं आप तक पहुंचा दूं, और जनाब शाकिर दहलवी साहब, मिखाइल अखलाक, मुहतरमा इफ्फत जर्री साहिबा, और जनाब मुनीर हमदम साहब ने अपने कलाम पेश किया, इसी के साथ ये मुशायरा इख्तिताम पज़ीर होता है।
4: सामिन अभी आप मुशायरे से लुत्फ ले रहे थे, निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब खालिद अखलाक, अब अपने मेजबान मोहम्मद अली कमाल को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
5: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मुशायरा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। रात्रि के 8:30 होने को है। समय हो गया है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अपने सभी श्रोताओं का मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है अभिजीत ने।

0: अभिजीत की आवाज में। अभी आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और अब सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म आ अनलौट चले से, और इस गीत को आवाज दी है कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत, शब्बीर कुमार और साथियों ने। तो मुझे सुनते हैं अगला गीत।
1: यारो माफ करना कुछ छोटे हैं।

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फिल्म आ अनलॉक चले थे और इस गीत को आवाज दी थी कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत, शब्बीर कुमार और साथियों ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरनेट चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। रात्रि के 8:30 होने को है, 8:45 होने को है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर आप सुनेंगे

0: समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद ने सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारण संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4

0: सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारण संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री राष्ट्रीय ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रूपये से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर

मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। लेकिन ये मुकाबले में तड़के 2:30 बजे पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप निर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांगद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ

0: करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावितों की और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। Headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. In men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: ये बताया गया है कि अभी यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है।
4: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर

अनाउंस ये आकाशवाणी है और सर्विस के आज के तीसरे मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। आप हमारी नशरियात मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डेली फ्री डिश पर सुन रहे हैं। जमीन पेश है हमारे यहाँ से आज रात 1 बजे तक नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। उससे कुछ देर बाद इन 9:20 पर आप सुनेंगे गैर रंगी गजलों पर मबनी प्रोग्राम एक फनकार। आज की फनकारा है राधिका चोपड़ा। हसब मामूल खबरें नशर की जाएंगी 9:45 पर। 9:55 पर आप सुनेंगे हेल्थ टिप्स, कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। और रात 10:30 पर फरमाइश फिल्मी नामों पर मबनी प्रोग्राम होगा तामिल इरशाद। ये प्रोग्राम 11:30 तक जारी रहेगा। दौरान प्रोग्राम रात 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बड़ी सगीर से। 11:30 पर सुर्खियों में प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 11:45 पर बजमे मौसीकी प्रोग्राम के तहत आप सुनेंगे असलम खान की गाई राग गोपाल तोड़ी में ख्याल। शब के 12 बजे आलमी खबरें पेश की जाएंगी।

राधिका चोपड़ा की भाई गजलें आप समाप्त कर रहे हैं एक फनकार प्रोग्राम के तहत। सबसे पहले आपने मिर्जा गालिब का कलाम सुना था, उसके बाद हमने आपको शमीम जयपुरी का कलाम सुनवाया, अभी आप सुन रहे थे साहिर होशियार पुरी का कलाम। वही अब प्रोग्राम के आखिर में राधिका चोपड़ा की ये गजल आप सबकी नजर, कलाम जिगरा मुरादाबादी का है।

रिपोर्ट है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। कई दरिया तुगयानी पर हैं। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैन अलावामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर अजम नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असम्बली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेन्द्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर अजम नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनरल मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निजाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर अजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनरल मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शरा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कूरा प्लांट में मुतनव्वे अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वजीर अजम ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निजाम से मसनू जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर अजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनरल मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमी कंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मस्कूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे। जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनअती शोबों में किया जाएगा और इन्हें अमरीका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर अजम नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीत मिलेगी। दिनभर के अपने दौरे में वजीर अजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीनफील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनअती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर अजम ने कहा कि मगरबी एशिया की महाजराई से 21वीं सदी का तवानाई का सबसे बड़ा बहरान पैदा हो गया था, लेकिन भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए इस चैलेंज पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। जनरल मोदी ने कहा कि बहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम रोल रहा। वजीर अजम ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने दिया। इस मौके पर जनरल मोदी ने तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकरीरनामा भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई से पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलों पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी।

0: उस वजह से जो दिक्कतें आती हैं दर्द, उसकी वजह से इचिंग होती है, रैशेज हो जाते हैं, रेड रेड रैशेज स्किन में आ जाते हैं, इचिंग होती है, तो ये एक वजह है कि वो हम ज्यादातर गमोरिया समर में, वो भी बरसात वाले मौसम में ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं।
1: जी, तो इससे बचने का क्या सही तरीका है?
0: देखिए, एक तो नंबर वन ये कि प्रॉपर जो कपड़े, ज्यादा ऐसे कपड़े ना पहने कि हमें पसीना बहुत ज्यादा आए, तो वेंटिलेशन जैसे कॉटन का जो हम पहनते हैं, कॉटन के कपड़े वो ज्यादा अच्छे रहते हैं, सिंथेटिक कपड़े थोड़ा अवॉइड करना चाहिए
1: जी।
0: और डेली आपको नहाना बहुत जरूरी है, बाथ डेली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पसीना अगर जम जाता है तो वो पोर्स को बंद कर देता है, तो डेली जब आप वॉश करेंगे अपनी बॉडी को तो जो पुरानी गंदगी है वो वॉश आउट हो जाती है, वो पोर्स खुल जाते हैं, तो नहाना बहुत जरूरी है, बॉडी को वेल हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन से मेरा मतलब कि पानी, क्योंकि वाटर लॉस होता है पसीने की वजह से, तो डिहाइड्रेशन होने का रिस्क रहता है, जिससे और ज्यादा पोर्स का बंद होने का रिस्क रहता है, तो अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखिए, कपड़े अच्छे से पहनिए, सिंथेटिक कपड़ा थोड़ा अवॉइड करें, कॉटन कपड़ा ज्यादा पहने, और ऐसा कपड़ा ना पहने जिससे आपका वेंटिलेशन प्रॉपरली ना हो, जिसमें स्किन का वेंटिलेशन भी होना बहुत जरूरी होता है।
1: बड़ी उम्दा बात आपने बताई डॉक्टर यासिर, और जैसा कि आपने कहा कि पसीने को एक तो खुश्क कर लें, कहीं हवा में बैठ जाएं आप, पंखे के सामने या फिर कूलर के सामने या एसी का अगर मुमकिन है तो एसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इससे आप पसीने से बच सकते हैं। और पसीने से बचने का मतलब है जो जिल्द में आपके मसावात हैं या जो स्पोर्स हैं वो बंद नहीं होते, खुल जाते हैं। और जैसा आपने कहा, एक बड़ी उम्दा बात आपने कही यहां हाइड्रेशन की, यानी हमारे जिसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर यासिर का यही मकसद है कहने का। इसके अलावा एक और बीमारी जो बहुत ज्यादा देखी जाती है बरसात के मौसम में, फंगल इन्फेक्शन, जो स्किन पर एक तरह से निशानात पड़ जाते हैं, चकत्ते से पड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा खारिश होती है उसमें, ये जो है फंगल इन्फेक्शन आखिर है क्या और इसका क्या इलाज पूरी तरह से मुमकिन है?
0: जी, जैसे मैंने अभी बताया गमोरिया के बारे में, गमोरिया कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो बेसिकली आपका स्किन में रैशेज हो जाते हैं, लेकिन जब स्किन में मॉइस्चर आ जाए और जब आपकी हाइजीन प्रॉपरली ना हो या बॉडी में आपकी बॉडी में इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो फंगस उस मॉइस्चर पे जम जाता है, जिसको हम यूजली टीनिया बोलते हैं, तो टीनिया का इंसिडेंस बरसात में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और समर के मौसम में टीनिया का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो जो ये फंगल इन्फेक्शन का जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रॉपर हाइजीन अगर ना मेंटेन हो, मतलब आपकी बॉडी में पसीना आ रहा है बट आप बाथ नहीं ले रहे हैं, आप अपने जो अंडरवेयर्स हैं, जो आपके कपड़े हैं वो डेली चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मॉइस्चर डेवलप हो जाता है और उस मॉइस्चर में फंगस का इंसिडेंस बढ़ जाता है
1: जी।
0: लेकिन हमने ये देखा है कि फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जिनकी और भी बीमारियां साथ साथ हो, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या इनकी इम्यूनिटी
1: अच्छा
0: थोड़ी कम होती, तो उनको फंगस का इंसिडेंस ज्यादा पाया जाता है। और फंगस ऐसा होता है कि वो एक जगह लगे तो इचिंग से, जब हम हमारे नेल्स जब बड़े होते हैं, जब हम एक जगह पे इचिंग करते हैं तो वही नेल से दूसरी जगह इचिंग करते हैं, तो उससे वो स्प्रेड होता रहता है
1: जी।
0: तो इस चीज का ध्यान रखें कि हम अपनी हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करें। हाइजीन से मेरा मतलब स्किन हाइजीन और नेल हाइजीन भी, मतलब स्किन में आपको बाथ डेली लेना है, कोई भी सोप यूज कर सकते हैं, कई लोग बोलते हैं कि एंटीसेप्टिक सोप, एंटी फंगल सोप, उससे कोई ज्यादा महत्व ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, आप कोई भी सोप यूज करें, पानी का इस्तेमाल करें नहाने में, और अपने जो आपके अंडरवेयर्स होती हैं वो आप डेली या ऑल्टरनेटिव अंडर गारमेंट्स जो है उसको चेंज करते रहें, क्योंकि यही एक सोर्स होता है इन्फेक्शन का, अगर आपने अपने हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है तो।
2: जी, आप सुन रहे थे हेल्थ टिप्स, ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है एमएम राजेंद्र का लिखा ड्रामा इंस्टाफ।

0: बहुत पुरानी बात है, शिमाली हिंदुस्तान के वस्त में एक छोटी सी रियासत नसीराबाद थी, जिसके अमीर खान वजाहत हुसैन थे। दरअसल ये रियासत नहीं, एक तालुकदारी या जागीर थी। इसकी हुदूद सिर्फ एक छोटे से शहर नसीराबाद और आसपास के देहात का इहाता करती थी। इसकी कोई फौज नहीं थी, सिर्फ एक थाना था और इसका कोतवाल अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ रियासत में अमन कायम रखता था। इसी के सिपाही नसीराबाद के चार बैरूनी पहाटकों की हिफाजत करते थे। इस शहर में सिर्फ दो बड़ी इमारतें थीं, एक अमीर की अपनी रिहायशगाह जो महल कहलाती थी और जिसमें वो अपने दो सलाहकारों के साथ लोगों की शिकायत सुनते थे, और दूसरी शहर का मुसाफिर खाना जिसमें बाहर से आने वाले लोग ठहरते थे। ये एक खुशहाल जमींदार खुदा बख्श की जाती मिल्कियत थी। खाना खुदा बख्श की बेहद हसीन नौजवान लड़की जैनब और उसकी नहायत तरहदार और चुलबुली खादमा और राजदार जमालारा बनाती और खिलाती थी। नसीराबाद में औरतें पर्दार नहीं करती थीं। ये एक कमजोर रियासत थी। इस बेफौज रियासत पर किसी ने हमला नहीं किया था। नसीराबाद के आदमी लंबे कद और मजबूत जिस्म के होते थे, इसलिए आसपास की रियासतें यहाँ के नौजवानों को अपनी फौज में भर्ती करने के लिए अमीर से इजाजत लेकर अपने अहलकारों को भेजती रहती थीं। दौलताबाद के नवाब अमीर बख्श के दो फौजी असगर अली और सलीम नसीराबाद पहुंचते हैं और वाली रियासत खान वजाहत हुसैन से आदमियों को अपनी फौज में भर्ती करने की इजाजत हासिल कर लेते हैं।
1: लीजिए साहब, ये आ गया खुदा बख्श का मुसाफिर खाना। इसी से मिला हुआ है ये अस्तबल। हुजूर, घोड़ों को यहीं बांध देते हैं।
2: हाँ, ठीक है।
1: अब ठीक है, आइए हुजूर, अब अंदर चलते हैं और मुसाफिर खाने के आखिर के दो कमरे ले लेते हैं। वो ठंडे भी हैं और वहां तखलिया भी रहता है।
2: ठीक है, मगर अंदर जाने से पहले जरा मेरी बात सुन लो।
1: जी बोलिए।
2: सलीम, इस काम के लिए मैं खुद ना भी आता और चलता, मैं किसी

0: और अफसर को भिजवा सकता था
1: जी,
0: मगर फिर भी मैं खुद आया।
1: क्यों क्यों हुजूर?
0: मैंने इस मुसाफिर खाने के मालिक खुदा बख्श की बेटी जैनब के हुस्न शबाब के इतने चर्चे सुने हैं कि मैं तो उसे देखे बगैर ही उस पर फरेख्ता हो गया हूँ। तरह तरह के लजीज खाने अपने हाथ से तैयार करती है
1: जी,
0: और अगरचे खुद पीती नहीं है मगर साकी के फराइज और सलीके से भी वाकिफ है। याद रखना कि यहां हम नौजवानों को भर्ती करें या ना करें तो मेरा एक काम यह होगा कि किसी तरह

0: जी, मैं पहले आ चुका हूँ। और हुजूर, मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता था कि जैनब की खादिमा और राजदार जमाल आरा भी बड़ी कत्ताला है।
1: अच्छा?
0: मेरी भी तबीयत उस पर है। पिछली मर्तबा उसे राम करने की बड़ी कोशिश की मैंने, मगर वो आना कानी कर गई। किस्मत ने जावरी की तो अब के तो कामयाबी नसीब हो ही जाएगी मुझे। और जमाल आरा के जरिए मैं फिर जैनब के दिल में भी आपके लिए जगह बनाने की पूरी कोशिश करूंगा हुजूर। इस मुसाफिर खाने की सारी आमदनी इन दो हसीनाओं की वजह से ही तो है। अब आप यहाँ पर रुक गए, आइए अंदर चलते हैं।

0: अरे दी जमाला रा, अरे जरा इधर तो आओ। जाने मन पान बना रही हो तो एक गिलोरी अपने इस गुलाम के लिए भी ले आओ।
1: ये लीजिए पान। मगर जनाब तो बताइए कि आपको यहाँ आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो फिर मेरे गुलाम कैसे हो गए? बड़े दिल फ्रेंक मालूम होते हैं आप।
0: अरे ऐसा ना कहो जमाला रा, मेरी तुम्हारी पुरानी जनाजाई है, 2 महीने पहले जो आया था। अरे उस वक्त कितना तड़पाया था तुमने।
1: सिपाही की मोहब्बत को क्या एतबार, आज यहाँ तो कल कहीं और।
0: तुम सलाम को ऐसा ना पाओगी। अरे तुमने अपने हाथ का हमें पान खिलाया मगर हमने नजराना तो दिया ही नहीं। लो ये अशर्फी संभालो।
1: नहीं लीजिए।
0: नहीं नहीं रख लो रख लो। अरे इन शर्फियों को तुम्हारे लिए ही तो लाए हैं, इसकी कोई कमी थोड़ी ही है। सरकार से किसी और काम के लिए मिलती है और हम अपने काम पे खर्च कर देते हैं। अरे ये क्या बात, तुम्हारी मालकिन जैनब नजर नहीं आ रही, क्या वो भी खुदा बख्श के साथ गई हैं?
1: जी नहीं, वो सामने वाले कमरे में बैठी हैं। अच्छा? और अपनी संदूक जी को देखे जा रही हैं, जो उसने अपने महबूब शौकत से बनवाई थी। अपनी खिड़की से उसकी राह भी देख रही है। संदूक जी को मरम्मत के लिए देंगी, 8 बार पहले इसकी मरम्मत हो चुकी है।
0: मगर जमाल आ रहा, कहाँ वो हुस्न और शबाब की पुतली ज़ैनब और कहाँ वो 2 काड़ी का ये शौकत है? अरे ज़ैनब तो किसी भी हवेली की जीनत हो सकती है। हमारे अफसर असगर अली साहब वो भी लट्टू हो गए हैं उस पर।
1: ए मिया, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। कहाँ वो 50 से ऊपर का बूढ़ा और कहाँ ये कच्ची कली? क्या तुम्हारे अफसर ने शादी नहीं कराई? ये बीवी जन्नत से धार गई? या इधर उधर मुंह मारने की आदत है तुम्हारे साहब की?
0: अरे जमाल आरा कुंवारे हैं कुंवारे वो, समझी? और ऐसी बड़ी उम्र भी नहीं है उनकी। अरे मुश्किल से यही होंगे कोई 40 के।
1: 40 की
0: और क्या, और मर्द की कोई उम्र देखी जाती है? तुम साहब से बात तो करके देखो। और हाँ, अरे कहाँ गई कहाँ गई? अरे अरे हाँ ये रही, उन्होंने भी एक अशर्फी भिजवाई है तुम्हारे लिए।
1: अशर्फी तो खैर मैं रख लेती हूँ, मगर उड़ती चिड़िया को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और फिर वो तो शौकत की मोहब्बत में दीवानी है।
0: अरे तुम कोशिश तो करो और हमारे लिए क्या होती है जमाल आरा। आज ही कोई अगर मुलाकात की सूरत निकाल लो तो सही नसीब।
1: सोचूंगी मगर बहुत मुश्किल लगता है। आशिक हो तो सब्र करना भी सीखो, सब्र का फल मीठा होता है।
0: अरे हाँ सब्र का फल मीठा होता है। जरा ज़ैनब से कहना 1 गिलास अंगूर का शरबत असगर अली साहब को दे आए, तुमने मंगवाया है तो ना लाना, उसी को भेज देना।
1: अच्छा है?

0: असगर अली साहब, अंगूर का शरबत जो आपने मंगवाया था।
1: जैनब, मैं तुम्हारा शुक्रिया कि मैं अल्फाज में अदा करूं कि तुमने इस नाचीज को अपने दीदार से नवाजा।
0: जी,
1: मैंने तो दरअसल जामे अंगूर ही मंगवाया था। मगर सलीम ने बताया कि तुम्हारे मुसाफिर खाने में शराब नहीं मिलती। खैर, तुम्हारे हाथों का ये शरबत अंगूर मेरे लिए तो जामे अंगूरी ही है। फिर तुम तो सनातन जामे अंगूरी हो। अगर तुम्हारी कुछ नजरें इल्तफात हमारी तरफ भी हो जाए तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। कसम खुदा की, तुम जैसी हसीन औरत हमने इससे पहले नहीं देखी।
0: पहले ये गिलास तो पकड़िए, आपका जिक्र मुझसे जमाल आरा ने भी किया था, मगर मैं तो पहले ही से असीरे मोहब्बत हूँ और एक नौजवान को कब से दिल दिए बैठी हूँ।
1: क्या तुम्हारा मतलब उस लड़के शौकत से है?
0: नहीं।
1: अरे कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, अरे उसका और मेरा क्या मुकाबला। तुम्हारा जैसा नायाब मोती और गधा करके झोली में,

0: अंदाजा नहीं।
1: मोहब्बत में ये सब बातें बेमानी हैं। इश्क तो अंधा होता है। मेरा ख्याल दिल से निकाल दीजिए।
0: अब खुदा कुछ लम्हों के लिए हमारे पास बैठ जाओ, तुम्हें जी भर कर देख तो दे।
1: ये मुमकिन नहीं है। खुदा हाफिज।
2: हुजूर, अरे ज़ैनब अभी आपके कमरे से निकली है, कुछ बात बनी।
0: सलीम।
2: हाँ बोलिए।
0: ये फ्राकता यूं दाम में नहीं आएगी।
2: हैं?
0: हमें उस शौकत को रास्ते से हटाना होगा।
2: अरे तो आपकी इजाजत हो तो उसे अभी भिजवा देते हैं जबरदस्ती भर्ती करके।
0: नहीं, मामला बिगड़ जाएगा और शिकायत अमीर तक पहुंच जाएगी। मैंने तरकीब सोच ली है।
2: बोलिए।
0: ये बताओ कि हमारे सिपाही नए भर्ती किए हुए जवानों को ले जाने के लिए कब आ रहे हैं?
2: वो परसों आएंगे और शाम को ही लौट जाएंगे। मैं और आप तो मजीद ठहर सकते हैं। हाँ। मगर अपनी तरकीब तो बताइए।
0: अरे नहीं, तुम्हें वो जमाल आया कि मोहब्बत में गिरफ्तार, और तुम्हारे मुंह से कुछ निकल गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम्हें जाकर ज़ैनब और जमाल आरा से कहकर आओ कि शौकत आए तो हमारे पास भेज दे, हमें कुछ काम करवाना है।
2: जी अच्छी बात है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ।

0: जनाब, आपने मुझे बुलवाया?
1: हाँ मियां शौकत, सुना है तुम बहुत उम्दा कारीगर हो।
0: शुक्रिया।
1: ये जो संदूक जी तुम लिए हो, ये तुम्हारी आला कारीगरी की शाहिद है। वही हमने एक 6.5 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा संदूक बनवाना है, जिसमें ताला भी लगा हो।
0: जी।
1: उम्दा लकड़ी का, मजबूत होना चाहिए और कल ही चाहिए। जो दाम होंगे वो अभी पेशगी मिल जाएंगे।
0: जनाब कल तो नहीं, मगर परसों दोपहर तक पहुंचा दूंगा। हाँ, एक अशर्फी का खर्चा आएगा।
1: एक नहीं, हम तुम्हें 2 अशर्फी देते हैं। ये लो, इसी में तुम्हारी उजरत भी आ गई। संदूक पर काला रोगन कर देना।
0: बेहतर जनाब।

0: कुछ संदूक लेकर नहीं आया? भगवान सिपाहियों क्या खबर है?
1: वो तो आ गए जनाब और मुसाफिर खाने के सामने खड़े हैं, क्योंकि संदूक अंदर लाने में उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी ना जनाब। और शौकत भी आता ही होगा।
2: हुजूर, जमाल आरा सलाम अर्ज करती है।
1: जमाल आरा,
2: दरवाजा पूरा खोल दीजिए, शौकत और आपके सिपाही आपका संदूक ला रहे हैं। मैं चलती हूँ।
3: हाँ ले आओ ले आओ। हाँ संदूक तो बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, बहुत उम्दा बनाया। हाँ यही बीच में रख दो, ताला भी ठीक लगा है। ताला खोलकर ये चाबियां मुझे दे दो
4: जी। ये लीजिए चाबियां। और ये आप अंदर से भी देख लीजिए।
3: खूब, वो भी बिल्कुल सूख गया है। अब हम इसमें अपना सामान रख सकते हैं
4: जी। हाँ
3: मगर शौकत मियां एक गलती कर गए।
4: गलती?
3: अरे भाई हमने 6.5 फुट लंबा बनवाया था, मगर ये तो 5 फुट लंबा ही लगता है। हाँ चौड़ाई ठीक है।
4: नहीं नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। ये 6.5 फुट ही लंबा है। मैं फीता नहीं लाया वरना नाप कर दिखा देता।
3: शौकत मियां मेरी आंखों में धूल मत झोंको। अरे फौज में ऐसे काम कराते हुए उम्र गुजर गई है, तुमसे गलती से ये 5 फुट लंबा बन गया है। पर तुम खामखा अपनी बात पर अड़े हुए हो। इस कमरे में 6 आदमी और भी खड़े हुए हैं।
4: क्या?
3: किसी से भी पूछ सकते हो। सलीम
5: जी, जी
3: तुम्हारा क्या ख्याल है?
1: जी मुझे तो ये 5 फुट का भी नहीं लगता।
4: क्या कहा?
3: शौकत इसे वापस ले जाओ और कल दोपहर तक इसकी लंबाई पूरी करके ले आओ।
4: हाँ मगर जनाब इसकी लंबाई बिल्कुल सही है, कहीं तो मैं हाथ से नाप कर आपकी तसल्ली कर दूं।
3: भाई तुम हो बहुत जिद्दी।
4: हाँ?
3: कहीं हाथों से भी लंबाई नपती है? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा कितना कद है?
4: पूरा 6 फुट।
3: तो फिर हाथ कमे को आरसी क्या मियां, इसमें लेट कर दिखा दो।

0: अगर तुम्हारे लेटने के बाद इसमें 2-3 इंच जगह भी बच गई तो हम सम्मुख रख लेंगे।
1: ठीक है लीजिए, मैं अभी इसमें लेट कर आपको दिखा देता हूँ।
0: बंद कर दो, बंद कर, बंद कर दो। हाँ अब ये ताला लगा दो।
2: आपने तो शौकत को संदूक में बंद करवाकर ताला भी लगवा दिया। हाँ। लेकिन मैं समझ गया हुजूर।
0: समझ गए तो ठीक है। अब ऐसा करना, मोटी खेल और हथौड़े लेकर ढक्कन में हवा के लिए 4-5 सुराख कर देना।
3: बहुत अच्छा,
0: बड़े नहीं मर जाएगा।
3: जी
0: अब मेरी पूरी बात सुनो, भर्ती किए हुए आदमियों को भी इकट्ठा करो और अपने फौजियों को कहो कि आज रात को ही भर्ती किए हुए आदमियों और इस संदूक को लेकर दौलताबाद पहुंच जाए।
3: जी
0: और पहुंचते ही साशिक यानी शौकत को कैद खाने में डाल दें।
3: जी बहुत अच्छा,
0: वहां आकर मैं देख लूंगा। जिस सिपाही संदूक को उठाकर ले जाए और अस्तबल में महफूज रख लें। मैं और तुम दोनों कुछ देर और ठहर कर अपनी किस्मत आजमाई करके चलेंगे
3: और इनकी राहदारी साफ
0: हर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद इनके साथ फाटक तक जाना। रात का वक्त होगा और पहरेदार शराब में धुत सोया होगा। अब जागा हो तो एक अशर्फी उसके हाथ पर रख देना। लो अब जल्दी से सारे काम करो। ये लो संदूक की चाबियां, सिपाहियों को फाटक पर दे देना।
3: जी
4: जमालारा, आज पूरे 2 दिन हो गए हैं, मेरे शौकत का कुछ पता नहीं कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया। उसके घर वाले भी बड़े परेशान हैं और कई दफा यहाँ भी आ चुके हैं। शहर का चप्पा चप्पा उन्होंने छान मारा। जमालारा अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती।
5: सेहत दीदी, ये जी हल्का ना करो, उसको कुछ नहीं हुआ है।
6: मुझे तो इस मुंह आजकर वाली पर शक है।
4: तूने मेरे दिल की बात कह दी, इनका काम तो पूरा हो गया मगर मुसाफिर खाने से अभी तक नहीं गए।
6: हाँ
4: और असगर अली ने तो मुझे अशर्फी और गहनों का लालच देकर अपने कमरे में बुलाने की कोशिश भी की थी।
6: सच?
4: मेरा ख्याल है इन लोगों ने ही शौकत को जबरदस्ती भर्ती करके दौलताबाद भिजवा दिया है। और असगर अली ने सोचा होगा कि अगर उसने शौकत को रास्ते से हटा दिया तो मैं उसकी गोद में आ गिरूंगी। बदमाश कहीं का।
6: बीवी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, पर अब तुम क्या करोगे?
4: कल चौक में लोगों को इकट्ठा करके शोर मचाऊंगी कि इन लोगों ने नसीराबाद के नौजवानों को जबरदस्ती भर्ती करके दौलताबाद भिजवा दिया है। और फिर महल में जाकर अमीर से इनका कच्चा चिट्ठा खोलकर इन्हें कैद करवाऊंगी। फिर दौलताबाद जाकर वहां के बादशाह से फरियाद करूंगी, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। और जमालारा तुझे हर जगह मेरे साथ चलना होगा।
6: बहुत अच्छा,

0: जनाब गजब हो गया।
1: अरे क्या हुआ?
0: मुझसे जमाल आरा ने दो शर्फी लेकर अभी अभी बताया कि जैनब को हम पर शक हो गया है कि या तो हमने शौकत को मरवा दिया है या जबरदस्ती भर्ती करके दौलताबाद भिजवा दिया है। कल सुबह जैनब चौक में लोगों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ भड़काएगी और फिर सारे हुजूम को लेकर अमीर के महल जाकर हमारी शिकायत करेगी। मुझे डर है जनाब, कहीं हम बेमौत मारे ना जाए।
1: अरे तुम ठीक कहते हो, अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अरे रात तो हो गई है और हमारे घोड़े नीचे बंधे। अपना सामान उठाओ और कमरे के पिछले दरवाजे को खोलकर पिछवाड़े से निकल देते हैं।
0: जल्दी
1: 1.5 घंटे में इन बर्फ रफ्तार घोड़ों पर दौलताबाद पहुंच जाएंगे। जैनब को भी अगर अगवा करके दौलताबाद न बुलवा लिया तो मेरा नाम अस्करी नहीं।
0: पर अभी तो
1: चलो जल्दी करो।
0: चलिए जाना।

0: और मुसाफिर खाने का खर्चा भी नहीं दे गए।
1: अरे खर्चा तो वो पेशगी दे चुकी थी, बल्कि दो तीन दिन का फालतू हमारी तरफ है, मगर ये तो अय्यार निकले। अब मुझे यकीन हो गया है कि शौकत को इन्होंने निकलवाया है और अब वो डर के भाग गए हैं। चलो बीबी, महल चलकर अमीर से शिकायत करे।
2: नहीं, अब कोई फायदा नहीं।
1: क्यों? हमारे अमीर के पास ना ताकत है ना फौज। मैं घोड़ा गाड़ी का इंतजाम करती हूँ, हम दोनों इसी वक्त दौलताबाद चलते हैं और बादशाह के दरबार में जाकर उनसे फरियाद करते हैं। उनका इंसाफ दूर दूर तक मशहूर है।
0: तो जल्दी से तैयार हो जा, मैं घोड़ा गाड़ी लेकर आती हूँ।
1: और कोचवान?
0: अरे उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चलाऊंगी, पहले भी कई बार चला चुकी हूँ। तू नीचे मेरा इंतजार कर, मैं अभी आई।
1: जी बहुत अच्छा।

0: खाने से निकालकर और किसी दूसरे की वर्दी पहनाकर हमारे हुजूर में ले आए हैं ताकि हमें धोखा दे सकें कि ये भी जायज तौर पर भर्ती किया हुआ सिपाही है। तुम दोनों के जुर्म और साजिश साबित हो चुके हैं। तुम्हें अपने दिफा में कुछ कहना है?
1: हुजूर, हुजूर, ये दोनों औरतें बदकार हैं। अपने मुसाफिर खाने में मुसाफिरों को अपने हुस्न और फरेब में फंसा कर लूटती हैं।
2: जी बिल्कुल,
1: ये झूठ बोल रही हैं हुजूर। ये शौकत भी झूठ बोल रहा है
2: जी।
1: वो रजामंदी से भर्ती होकर आया। ये देखिए हुजूर, ये भर्ती का रजिस्टर देखिए आप, ये उसका अंगूठा
0: जी। खामोश, अपने बादशाह को गुमराह करने की हिम्मत करते हो? हमारे बगैर तलब किए हुए भर्ती का रजिस्टर लाए हो, तो इससे मजीद साबित होता है कि तुम्हें पता था कि तुम्हारा जुर्म क्या है और तुम्हें क्या साबित करना होगा। असगर अली और सलीम को फौज से बर्खास्त करके 6 माह कैद बा मुशक्कत की सजा दी जाती है। शौकत को फौरन रिहा किया जाए। शौकत और उन दोनों नाजनीनों को दिन के उजाले में ही हमारे सिपाहियों की निगरानी में नसीराबाद की सरहद तक छोड़ा जाए। इन दोनों औरतों को आने जाने का खर्चा और ज्यादे राह के तौर पर 10 अशर्फियां दी जाएं। क्योंकि शौकत अपना काम नहीं कर सका, उसे संदूक में बंद होने की तारीख से आज तक 2 अशर्फी फी योम हर जाने के तौर पर अलग से दी जाएं। दरबार बर्खास्त किया जाता है।

नेम एम राजेंद्र का लिखा ड्रामा आप सुन रहे थे इंसाफ। ये आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मीजा मिलना पेश है फरमाइश फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामीन की खिदमत में अब्दुल्लाह की जानिब से पुरखलूस आदाब।

Spomenu mamografii ori Lata Mangeshkar ki awazon mein aao pyar karein film ka ye do gaana aap sun rahe the. आप सबकी पसंद पर ये नगमा हमने आपको सुनवाया था और इसकी मौसीकी को सजाया था उषा खन्ना ने, बोलों का लंबद्ध किया राजेंद्र कृष्ण ने. फरमाइश आप सबकी हमें मौसूल हुई है. जी, उसके नाम इस तरह से है. ये फरमाइश हमें भेजी है कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंथाल शबी बनाटी आसिफ इकबाल ने. और इनके अलावा और भी ढेर सारी फरमाइशें हमें मौसूल हो गई. सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज. और ये फरमाइश हमें इरसाल करते हैं कि नाम

ఎండి సే సురేష్, వర్ష, శ్రద్ధ, नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा की ये फरमाइश आप सबकी नजर

अदमन गेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म पारस मणि में, और इस नवे कलमबंद क्या असद भोपाली ने मौसीकी तरतीब दी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश आप सब की हमें मौसूल हुई। ये फरमाइश बालकेश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया और वीर चौरसिया की हमें मिली है। और इसके अलावा हमें फरमाइश भेजने वाले हैं यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और यूसुफ खत्री श्री पगलों ने खंडवा से, जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी, और ये फरमाइश में रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब ने भेजी थी पारस मणि फिल्म की।

दोनों जेठवा सजेठवा बेबी अवीरा राव के नगर श्री रामपुर से, अलीगढ़ डबौली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार कुलदीप बानी मुरलानपुर दाखा से, राजेश जैन बिट्टू जैन घोटना के साथ कुछ और साथी हैं, घोटना संजीव जैन इनका पूरा नाम है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल दिवांगन, कौशल्य दिवांगन, हेमलता और एक और साथी। चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा शबनम, रईसा खातून। उत्तमनगर दिल्ली से बोधराज कुरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश। साधुशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। आइए समीन, अब आपको आर पार फिल्म का दो गाना सुनवा देते हैं, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में। नगमानिकार मजरू सुल्तानपुरी, मौसीकार ओपी नैयर। इस नगमे को सुनना चाह है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और गांगी एक और फर्द के साथ है। राहटगांव के ममरावती महाराष्ट्र से श्याम किटे, वंदना किटे, कार्तिक किटे ने भी इस नगमे की फरमाइश हमें इरसाल की है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आजाद इनके साथ, फैज अहमद अफसाना, हुनैन फातिमा, गायत्री कॉलोनी खंडवा से फरमाइश इरसाल करते हैं। पश्चिम तो गंजवाड़ा से मनोवर लल्ला, पीर ज़ादा, नसरीन मिर्जा, अरबाज शहबाज इनके साथ है। और भी कुछ फरमाइशें हैं जिनको शामिल करते चलते हैं। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा, सुरेंद्र कौर रंधावा। गांव डाकघर इमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह और घर के ढेर सारे अफराद। साईनगर आरबी महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गी, प्रियदर्शनी मिर्गी, डॉक्टर प्रियका काल पांडे। फरमाइश साल हमें करते हैं नजफगढ़ जय विहार से शाहरुख फारूक, शबनम शहनाज़।

कि रमेश बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास और कुमारी ज्योति देवदास, रमेश साल करने वाले हैं। बाबा साहब वड़ोदे आदिचरण पर चंद्र पर वड़ोदे जरूर वरुड से ये फरमाइश में इस साल की है। विजय मोबिया, कविता मोबिया और पेंट बाबू रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से ये फरमाइश हमें मौसूल हुई। तो लीजिए शामिल आप सबकी पसंद परिणाम आप सबकी खिदमत में है।

0: क्या होता है जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है
1: शिकायत कर लो ये फरियाद किसने रोका है हो सके दुनिया छोड़ दो दिल।

माननीय वजीर अश्विनी वैष्णव, गुजरात के वजीराला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इंकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मार्कस से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निजाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शा आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शेरा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कुरा प्लांट में मुतनव्वे अफराद कुव्वत की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से तादीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मीशत को तकलीफ पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निजाम से मसनूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप तैयार करेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर इदारे ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमी कंडक्टर प्लांट काम करने लगेंगे। मस्कुरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज ने भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे। जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनअती शोबों में किया जाएगा और इन्हें अमरीका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट में बरामद भी किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकलीफ मिलेगी। दिन भर के अपने दौरे में वजीर आजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने वलोटरा जिले में बाचापुत्रा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्त किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनअती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मगरबी एशिया के महाजराई से 21वीं सदी का तवानाई का सबसे बड़ा बहरान पैदा हो गया था, लेकिन भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर हिफाजतकारी, कौमी वसाइल के मोहताज बंदोबस्त के जरिए इस चैलेंज पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। जनाब मोदी ने कहा कि बहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम रोल रहा। वजीर आजम ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने दिया। जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकरीरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीका के 250वें यौम आजादी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के अवाम को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात कलीदी साझेदारी से आगे बढ़कर हैं, जो जमहूरियत, कानून की अमलदारी और अपने अवाम की लामहदूद सलाहियत के मुश्तरक एतमाद पर मबनी है। इंडोनेशिया के सदर की दावत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया के 4th और मई सन 2018 में भारत इंडोनेशिया ताल्लुकात को जामे कलीली शराकतदारी तक वसत दिए जाने के बाद पहला दौरा होगा। अपने के दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, जिसमें कलीली शराकतदारी के तहत आम शोबों में पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की नुमाया तरक्की को यह कहते हुए उजागर किया कि मुल्क की दिफाई बरामदाद रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रूपये से ज्यादा तक पहुंच गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया के एक निजी इदारे की जानिब से मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि माली वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रूपये से ज्यादा जबरदस्त इजाफा

0: तकरीबन 57 गुना है और इसे मेक इन इंडिया दिफाई प्लेटफॉर्म में बढ़ते आलमी एतमाद की अक्कासी होती है। वजीर दिफा ने कहा कि माली बरस 2025-26 में सालाना दिफाई पैदावार भी अब तक की सबसे ज्यादा बुलंदी 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई, जो 2014-15 की सतह से तकरीबन 3 गुना है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की वसी तर वसूलियाबी को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग की तौसी, मोटर गाड़ियों की बरामदाद में इजाफे, अंदरूनी मुल्क तैयार करने रेल इंजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया। रिश्तेदारी में मुल्क की तरक्की के बारे में बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत ने किल्लत का अजाला किया, मौके बढ़ाए और वर्क कल्चर में यकसर तब्दीली की। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स परफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म्स की पॉलिसी के जरिए विकसित भारत को मजबूत बुनियाद कायम कर रही है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की 6 रोजा सरकारी आखिरी रसूमात का सिलसिला आज से तेहरान में शुरू हो गया। इसमें हजारों सोगवार शिरकत कर रहे हैं और ईरान के वरुण बहनों को एक खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सोगवार अफराद में आयतुल्ला अली खामनाई के साथ साथ फजाई हमलों के मारे गए उन अरकान खानदान को भी खराज अकीदत पेश किया। ईरान के सरकर्दा रहनुमाओं, फौजी कमांडरों और गैर मुल्की मुमताज शख्सियात ने तेहरान में आयतुल्ला अली खामनाई को खराज अकीदत पेश किया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत भर में मामूलाती जिंदगी मुतासर, मुंबई और उसके मजाफती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई जिससे मुंबई थाने बालघर में स्कूलों को बंद करना पड़ा। पालघर जिले के हिस्सों से तेलाब सैलाब किसी सूरत हाल की खबर है जिससे सड़क और रेल ट्रैफिक मुतासर हुआ है। वर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में दूसरे T20 बैन अवी क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट हरा दिए। इस तरह इंग्लैंड ने 5 T20 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। फीफा वर्ल्ड कप में आज से प्री क्वार्टर फाइनल मैच शुरू हो रहे हैं। होस्टन टेक्सटाइल में कनाडा का मुकाबला मराकस से हो रहा है। कनाडा जनूबी अफ्रीका को हराकर पहली मरतबे इस तारीखी नॉकआउट मरहले में पहुंचा है, जबकि मराकस पहले ही शूट आउट में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में अमरीका में फिलाडेल्फिया में पैराग्वे का सामना फ्रांस से होगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात देर गए 2:30 बजे शुरू होगा। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का अफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोनिज्म को मुस्तकम बनाया जा सके। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने बर्वक फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहताज बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के दिफाई सामान की बरामदात 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई, कई दरिया तुगयानी पर है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लीजिए सामने पेश है फरमाइश फिल्मी नगमों और मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद के बाकी नगमे हैं।

इसके अलावा फरमाइशें हमें मौसूल हुई। प्रशांत शिंदे, अशराज शिंदे, सुनीता शिंदे, रोहिदा चौक पंडरपुर शहर से, सब्जी मंडी बुल्दाना से शब्बीर हुसैन, शिजा हुसैन, मुज्जू बाबा, पश्चिम टोक गंजुडवारा से मास्टर अली मजर सिद्दीकी, मास्टर मनोवर अंसारी, फजल इमाम सिद्दीकी, नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चंद फारूक, इंद्र विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्ल्यू अंसारी। और ये फरमाइश हमें इरसाल की है तंबराम चेन्नई से शाहिद अली फतवारुकी और हिमसा अली ने। तो लिए सामिन आप सबकी फरमाइश पर यह नगमा आप सबकी खिदमत।

0: जिंदगी के साथ फरमाइश फिल्मी नामों पर मबनी प्रोग्राम तमेशाद खत्म होता है। यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सामने पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की राजस्थान गुजरात यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: सबसे पहले तो बात इस पर कि राजस्थान के इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए उनका शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए एक

0: वहीं व्यवस्था की एक नई आधारशिला रखी। आइए सुनते हैं कि भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करने और विभिन्न मेगा परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
1: चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता।
0: अशोक टंडन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: पूरे कार्यक्रम को देखें तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये सिर्फ विकास परियोजनाओं का कार्यक्रम है या फिर एक विकसित भारत 2047 की जो रूपरेखा लेकर के प्रधानमंत्री चल रहे हैं उस दिशा में बढ़ाया गया कदम है।
2: बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जो कोई भी योजना हाथ में लेते हैं और उनका वो वहाँ पर केवल नींव पत्थर नहीं लगाते बल्कि उनको पूरा होने पर उनका उद्घाटन भी करते हैं। और उसी कड़ी में अब जब देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर गए तो उन्होंने जो है सबसे पहले तो जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल के भवन का उद्घाटन किया
0: जी,
2: और जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया, और उसके बाद बालोतरा पे गए जहां उन्होंने 1,00,000 करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया और कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया। तो ये जो एक हम बात कर रहे थे कि इसमें जो आज जो भी कार्यक्रम हुए उनमें शहरी विकास, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़कों और ये ऊर्जा के नए स्रोत, पावर ट्रांसमिशन, ये सारे प्रोजेक्ट जो थे आज विकसित भारत की ओर जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दे जा रहा है उसी कड़ी में ये अलग अलग योजनाओं का जो आज हमने देखा कार्यक्रम हुआ, और उसमें से मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण था कि राजस्थान के बालोतरा जिले में देश के पहले ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र के नाम समर्पित किया उन्होंने, और उन्होंने इसे भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि भी बताया। तो इस तरह से आज राजस्थान का जो दौरा हुआ उसमें अगर हम बात करें तो एक एक कार्यक्रम को हम ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ने जो अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहली बात ही यही कही कि जो राजस्थान में जो आज मैं ये कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहा हूँ मैं पेट्रोकेमिकल का, क्योंकि आज के संदर्भ में हमारी जो डिप्लोमेसी है उसने जंग में भी ये बात दिखा दी कि पहले हम जो तेल था कम देशों से लेते थे, अब हमने अपनी डिप्लोमेसी को देखते हुए उसका दायरा बढ़ाते हुए अब हम 40 देशों से कच्चा तेल मंगवा रहे हैं। तो ये हमारे जो मित्र देशों के साथ संबंध है उसको उन्होंने उजागर करते हुए कहा कि जब पश्चिमी एशिया में युद्ध के दौरान हरमुज बंद हो गया था और दुनिया भर में बड़े संकट आ रहे थे, लेकिन हमारे प्रयासों ने हमें संकट से उभरने के लिए भी मदद की, और इसीलिए पूरी दुनिया में इस लड़ाई के चलते हमारे पर जो असर हुआ भारत ने सही फैसले लिए और सही रणनीति बनाई और अपनी कूटनीतिक ताकत का सकारात्मक इस्तेमाल किया, और इसी वजह से भारत एक संकट से उभरने में सफल रहा। भारत ने संकट का समय रहते आकलन किया था और इसीलिए हम उसमें से उभर कर आए।
0: जी टंडन जी, एक तरफ भारत पेट्रोकेमिकल क्षेत्र का विस्तार कर रहा है तो दूसरी तरफ सौर ऊर्जा जैसी हरित परियोजनाओं में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है, तो ये जो संतुलित ऊर्जा नीति सरकार अपना रही है तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक बड़ी सामर्थ्य के रूप में उभर कर सामने आएगी?
2: बिल्कुल, जितनी भी योजनाओं की बात हमने की है उसमें जैसे अपने ने बात की अभी उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो था ही रिफाइनरी वाला और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम से ये जिस रूप में विकसित हुआ है इसमें 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इसमें लगभग 80,000 करोड़ का इसमें निवेश किया गया है।
0: जी,
2: और उत्पादन की क्षमता की हम अगर बात करें तो पेट्रोकेमिकल क्षमता जो है 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और इस रिफाइनरी का जो कुल मिलाकर उत्पादन है वो 26% जो है वो बढ़ा है, और ये जो दक्षता और स्थिरता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है। तो इसी ऊर्जा के संबंध में पेट्रोकेमिकल की तो हमने बात की, आपने जैसे कहा कि सौर ऊर्जा की भी बात की है प्रधानमंत्री ने, और इसी तरह से

0: उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि राजस्थान में तो सूर्य देवता की बहुत कृपा रहती है और इसीलिए यहाँ पर जो सौर ऊर्जा का है 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को उन्होंने आज राष्ट्र को समर्पित किया।
1: बिल्कुल,
0: तो इससे लगभग 5,500 करोड़ के निवेश से विकसित किया गया है और इस परियोजना में स्वदेशी रूप से निर्मित 24.22 लाख सौर मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये जो 300 मेगावाट के बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र के साथ समर्पित किया तो इससे स्वदेशी रूप से निर्मित 7.75 लाख सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का उपयोग किया गया है।
1: जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस उनकी कही गई इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि उर्वरक संकट भी देखा गया है बीते दिनों में वैश्विक स्तर पर और दुनिया भर में यूरिया महंगा हुआ लेकिन भारत में किसानों को सब्सिडी के साथ सस्ती दर पर यूरिया उपलब्ध कराया गया, तो इस तरह के जो फैसले सरकार लेती है क्या लगता है कि इनका किसानों और कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक सकारात्मक असर पड़ता होगा?
0: मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कुल मिलाकर पेट्रोकेमिकल उत्पादन की बात है इसमें पेट्रोकेमिकल जो इसमें जो कुल मिलाकर सारा इसमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की जो बात की गई है उसी में देखने को ये मिलता है कि पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास के एक आधार उद्योग के रूप में कार्य करेंगे तो इससे उद्योगों में और जैसे आपने कहा कि उर्वरक इत्यादि में भी उनके उत्पादन और हम जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो बनेगी। तो कुल मिलाकर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार इस पर बहुत ही महत्व देते आ रहे हैं और अलग अलग समय पर योजनाओं को लागू करते हैं तो देश में ऊर्जा संकट जो है और जैसा कृषि में भी हम देखते हैं कि उसमें भी इसकी बहुत आवश्यकता रहती है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमें ये सब देखने को मिला।
1: राजस्थान में 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। कहा जा सकता है कि सिर्फ युवाओं के विश्वास को बढ़ाने का एक अवसर नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षमताओं को भी मजबूती प्रदान करना आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना इस पर भी प्रधानमंत्री का काफी फोकस रहता है तो आप किस पर क्या विचार होंगे?
0: आज जो 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए वो राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में वो चुनकर आए यानी उनकी नियुक्ति जो हुई इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी क्षमता से उसके टेस्ट पास किए और ये राजस्थान के लगभग सरकार के लगभग सभी विभागों से जुड़े हुए और हम देख रहे थे टेलीविजन पर कि सब नौजवान जो है वो 20 से 25 साल की उम्र के थे और उनको नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री से जब मिले तो वो गदगद हो रहे थे और प्रधानमंत्री ने उनमें से कुछ लोगों से बात भी की। तो ये जो समस्या रहती है कि भारत में जो है आप लोग रोजगार सृजन करने के बारे में बात करते हैं नौकरियों की तो प्रधानमंत्री का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम नौकरी पाने की बजाय नौकरी देने वाली बात करें स्टार्टअप के जरिए लेकिन सरकार के पदों पर भी जो नियुक्तियां होती है तो राजस्थान सरकार के पदों पर जो नियुक्तियों के 54,000 दिए गए नौजवानों को नियुक्ति पत्र वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था।
1: टंडन जी अब गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हो रही है OSAT सेमीकंडक्टर संयंत्र का शुभारंभ होना एक बहुत बड़ी बात है। आइए सुनते हैं आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर पावर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथ ही 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है।
1: भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है ऐसे समय में जब भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद भागीदार बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है तो इस संयंत्र का शुभारंभ होना हमारे लिए कितनी बड़ी सफलता होगी?
0: भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में ये सचमुच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इस संयंत्र में जो वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो रहा है ये वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी है क्योंकि ये जो परियोजना है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो प्रधानमंत्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है उस मिशन के तहत स्वीकृति पहली 4 परियोजनाओं में से एक है और इसे 7,500 करोड़ रूपये से के कुल निवेश से विकसित किया गया है और अगर ये पूर्ण क्षमता के साथ जब संचालन में आ जाएगा तो इस संयंत्र

0: कि वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप की होगी, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में तेजी से हो रहे विकास के कारण मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में सहयोग करेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो ऐसा संयंत्र है ये ऑटोमेटिव, औद्योगिक, दूर संचार, 5G, इंटरनेट और इन सब क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ती है, और उस क्षेत्रों की जो ग्राहकों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करेगा, क्योंकि चिप की कमी के बिना, चिप की कमी होने से इन सब क्षेत्रों पर असर पड़ रहा था, और अब ये जो संयंत्र ये वेफर सॉर्टिंग, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेज डिजाइनिंग और विश्लेषण, टेस्ट प्रोग्राम, ये सब निर्धारित और इन सब को ये सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सेवाएं जो है, ये जो आज संयंत्र प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, उनकी सेवाओं को ये प्रदान करेगा। तो ये एक शुरुआत है, और इसमें भारत के एक भरोसेमंद और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर विनियम
1: जी
0: केंद्र के रूप में जो इसका हुआ है, ये देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने में भी प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है ये उसके अनुरूप ही हुआ।
1: जी टंडन जी, गुजरात को वैसे भी व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, कई सारी परियोजनाएं लगातार वहां पर काम कर रही है, बुलेट ट्रेन की भी हम बात करते हैं वहां उसकी शुरुआत भी गुजरात से ही हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा जो हर बार नई योजनाएं शुरू की जाती, नई योजनाओं का शिलान्यास किया जाता, उद्घाटन किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, गुजरात की बात तो है ही है, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री का अपना राज्य है, लेकिन जितनी भी परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने लागू की है देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी, सभी का, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। तो जो परियोजनाएं देश की भागों में की गई है, चाहे वो पूर्वोत्तर का भाग हो चाहे दक्षिण भारत हो, उन सब में जो परियोजनाएं लागू की जाती है वो पूरे समय पर ही हुई है। तो गुजरात थोड़ा, जैसे प्रधानमंत्री पहले भी कहते थे कि हमारा जो क्षेत्र है भारत का, वो तो विकास की दर से बहुत आगे है, लेकिन हमारा जो पूर्वोत्तर या पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें हम देखते थे कि पूर्वोत्तर के राज्य तो सही ही, लेकिन बंगाल, उड़ीसा, ये राज्य पिछड़े थे, बिहार था, झारखंड था, उनके भी विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो उन पूर्वी राज्यों को भी अब पश्चिमी राज्यों के मुकाबले में लाकर खड़ा किया गया है, और ये सारी योजनाएं जो है हर देश के हर प्रांत में लागू की गई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे कोई भी राज्य हो, इसमें कहीं भेदभाव नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजनाएं जब इनका शिलान्यास होता है तो इनको पूर्ण भी, इनको इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री उसी समय सीमा के अंदर करते हैं। ये उनका निर्देश भी है कि जो भी मुझसे लोकार्पण करवाना है या जिसका मुझसे आपने नींव पत्थर लगवाया है, उसकी योजना को पूरा भी मेरे से ही करवाएंगे, तभी मैं उसके लिए आगे आऊंगा। तो ये कुल मिलाकर जो अप्रोच है विकसित भारत की ओर बढ़ने की, उसमें सभी प्रदेशों के साथ न्याय हो रहा है, और देश का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसको ये शिकायत हो कि प्रधानमंत्री जो है उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं।
1: जी टंडन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की राजस्थान गुजरात यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: में

वैस खान का सितार पर बजाया राग दरबारी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही क्लासिक मौसीकी का ये प्रोग्राम खत्म हुआ। यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब। एक बार फिर तमाम सामीन की खिदमत में अब्दुल्ला की जानिब से पुरखलूस आदाब।

सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में गोवा फिल्म का ये दो गाना सामीन आप सुन रहे थे। आइए अब यास्मीन फिल्म का ये नगमा तरक महमूद का गाया हुआ।

अरा तोड़ो न दिल बेकरार का, मान जाओ जी छोड़ो ये दिल लगी, मान जाओ जी छोड़ो ये दिल लगी, ले भी लो पहला तोहफा ये प्यार का, अरा तोड़ो न दिल बेकरार का।

0: बता कब तक तेरा दर्द सहारे बीते यूं ही अब के बिना मेरी बहारे
1: बीत जाने दो मौसम बहार
0: अरे अरे अरे छोड़ो न दिल बेकरार क्या मान जा बाजी छोड़ो ये दिल लगी मान जा बाजी छोड़ो ये दिल लगी ले भी लो पहला तोहफा ये प्यार का अरे अरे

आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इंकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोनिज़ाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैली चेन निजाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा, तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद के आधार के इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शेरा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कुरा प्लांट में मुतनवे अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मीशत को तकफीत पहुंचाने खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीका के 250वें योम आजादी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के आवाम को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात कलीदी साझेदारी से आगे बढ़कर हैं, जो जमहूरियत कानून की अमलदारी और अपने आवाम की लामहदूद सलाहियत के मुश्तरक एतमाद पर मबनी है। खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमाकारी से मुतलिक समझौता कल नाफिज हो गया, जिस पर नई दिल्ली में पिछले साल सितंबर के महीने में दस्तखत किए गए थे। वजारत खजाना ने कहा कि समझौता बाहमी इकतसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के सम्त में नहायत अहम कदम की हैसियत रखता है। वजारत ने यह भी कहा कि इस बाहमी समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान सरमाकारी की सरगर्मियां बढ़ने की उम्मीद है और भारत और इसराइल के दरमियान इकतसादी साझेदारी भी मुस्तहकम होगी। इंडोनेशिया के सदर की दावत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया के 4 मई 2018 में भारत इंडोनेशिया ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वसत दिए जाने के बाद पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, जिसमें कलीदी शराकतदारी के तहत अहम शोबों में पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। जकार्ता में वजीर आजम का वहां आबाद भारतीय बिरादरी के बड़े इज्तिम से खिताब का भी प्रोग्राम है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सकाफती तारीखी रिश्तों की अक्कासी होती है। इंडोनेशिया भारतीय बिरादरी वजीर आजम के दौरे की मुंतजर है। जकार्ता में इंडिया क्लब के सदस्य सिद्धार्थ तपाडिया ने आकाशवाणी से बात करते हुए भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत दोस्ती को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस आला सतह रबते से बात नुमाया होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को खास अहमियत देते हैं। मरकजी वजारत दाखिले ने पाकिस्तान के 23 अफराद और गैर कानूनी सरगर्म के रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शोरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलाह की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मनसूबाबंदी जैसी मुतअद्दिद सरगर्मियों में उनके मुलव्वज होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। यह कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाजत देगा कि वह इन अफराद के इक्तिसादी असासों को मुंजमित करें, असलाह की खरीद फरोख पर पाबंदी लगाएं, उनकी जायदादें जब्त करें। UAPA की तरमीम से भारत के इंसदादे दहशतगर्दी कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी हुकूमत और तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियार हासिल हुए हैं। इस तरमीम को 14 अगस्त 2019 में नोटिफाई किया गया था। इस तरमीम ने मरकजी हुकूमत को इस बात का इख्तियार दिया है कि वह कानून के तहत न सिर्फ तंजीमों बल्कि अफराद को भी दहशतगर्द करार दे सके। इस तरमीम के निफाज के बाद से हुकूमत ने 80 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला सईद अली खामनाई की 6 रोजा सरकारी आखिरी रसूमात का सिलसिला कल से तेहरान में शुरू हो गया है। इसमें हजारों सोगवार शिरकत कर रहे हैं और ईरान के मरहूम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सोगवार अफराद में आयतुल्ला अली खामनाई के साथ साथ फजाई हमले में मारे गए उनके अरकान खानदान को भी खिराज अकीदत पेश किया। ईरान के सरकर्दा रहनुमाओं, फौजी कमांडो और गैर मुल्की मुमताज शख्सियात ने तेहरान में आयतुल्ला अली खामनाई को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर ईरान के सदर मसूद पेशकियन
पार्लियामेंट के स्पीकर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। श्री मोदी ने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रो केमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के

0: ने किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 वोटरों में से 32% से ज्यादा लोगों को गणन प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार शनिवार तक कुल 46,54,989 गणना प्रपत्र बांटे गए और 1,46,438 प्रपत्र डिजिटाइज किए गए। ऐसा ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए थे। जैकब बैथल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्यूरेटेड सीजी सेमी स्टेट ऑफ द आर्ट outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. India's long-standing contribution to global peacekeeping mission received a significant recognition as 651 Indian Army personnel serving under the United Nations have been awarded the prestigious United Nations Medal during a ceremonial medal parade held at the Permanent Operating Base, SAKE, in the Democratic Republic.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें आप सुनते हैं गोल्डन एरा के वो गाने जिनकी छाप आज भी हमारे दिलों पर ताजा है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। बने हमारे साथ और सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज 24/7।

कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम सुन रहे आप गीत सुन रहे और ये है आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म CID का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

अपना धर्म जो

किताब लैब चल रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आपने सुना गोल्डन एरा के वो गाने जो हमारी आपके और हम सबकी पसंद है। रात के 2 बजने को है, अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय

0: को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग की कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना पत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटलाइज किया गया है। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Defence Minister Rajnath Singh highlighted India's significant progress in manufacturing and technology. The minister said country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organised by a private media organisation in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defense platforms. India's long-standing contribution to global peacekeeping mission received a significant recognition as 651 Indian Army personnel serving

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 9:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। श्रोताओ, ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत बहार का। आइए सुनते हैं गीत बहार कार्यक्रम। नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ। लता मंगेशकर और सुहैल सुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म हम आपके हैं कौन का एक गीत। बने हमारे साथ और सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज 24/7।

बताओ भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर। रात के 3 बजने को है ये वक्त होता है समाचारों का। पहले आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और विदर्भ में आज मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है.
0: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Defence Minister Rajnath Singh highlighted India's significant progress in manufacturing and technology. The minister said countries' defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organised by a private media organisation in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defence platforms. India's long-standing contribution to global peacekeeping mission received a significant recognition as 651 Indian Army personnel serving under the United Nations have been awarded the prestigious United Nations Medal during a ceremonial medal parade held at the Permanent Operating Base Sake in the Democratic Republic of the Congo. The medals were presented during a ceremony honoring the Indian contingent for its professionalism, operational excellence and dedicated service under the United Nations peacekeeping mission. In the Maharashtra Teacher Eligibility Test TET paper leak case, police has arrested three more accused from a printing press in Agra, Uttar Pradesh, taking the total number of arrests to 10. The arrested persons are employees of the printing press where the TET question papers were printed. A court in Bhiwandi has renamed the three accused to police custody till 9th July. A six-day state funeral of the former supreme leader, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, began in Tehran, drawing hundreds of thousands of mourners who gathered to pay their final respects to Iran's late leader. India was represented by Governor of Bihar, Lieutenant General Sayyid Atta Hasnan, and the Minister of State for External Affairs, Pabitra Margarita. In a social media post, Mr. Margarita said, "We conveyed respect on behalf of the government and the people of India." In the ICC Women's T20 World Cup, England will take on Australia in the final at Lord's Cricket Ground in London today. The match will begin at 8 p.m. IST. Both teams head into the title clash unbeaten. And that is the end of this news bulletin.

मैं आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 मैं हूं आपके साथ कीर्ति। कार्यक्रम गीत व गजलों का लेकर हाजिर हूं और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने वाले हैं गजलें और आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गाई हुई गजलें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहली गजल के साथ।

ये गजल हमें बताती है कि जो बीता हुआ वक्त है वो वापस नहीं आ सकता। खैर, आप सुन रही हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत गजलें, और अब कार्यक्रम को लेकर चलते हैं समाप्ति की ओर और सुनवाते हैं एक और गजल, चिट्ठी ना।

0: इस गजल के साथ गजलों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। अपने दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। फिलहाल सुबह के 4 बज चुके हैं, अब हमारा सुनिए अगले कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

प्रस्तुत है भगवान मुर्गन को समर्पित कुछ भक्ति रचनाएं। स्वर टीएम सौंदरराजन का है। अर्चना कार्यक्रम में पहले प्रस्तुत है एनएस चिदम्बरम की रचना

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
2: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है, लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल भी। बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन

सुबह के 4:20 होने को हैं। अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म में पोनकुंडम रामाचंद्रन का गायन राग मध्यमावती में।

Pani Baba, Pani Baba, Pani Baba, Pani Baba.

अभी आपने सुना कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्मा के अंतर्गत पोनकुन्नम रामचंद्रन का गायन राग मध्यमावती में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई 2024। सुबह के 4:53 हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए आपको आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। 5:20 पर देशभक्ति संगीत आप सुन सकेंगे। स्वरंजनी का कार्यक्रम होगा 5:30 पर। सुबह के 6:10 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम वंदना का।

बजकर 40 मिनट पर चिंतन होगा, 6:45 मिनट पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस, 7:10 मिनट पर संगीतिका रहेगा, साहित्य की कार्यक्रम होगा 8:45 मिनट पर, हमारे अतिथि का समय रहेगा 9:15 मिनट पर।

सुबह 9:30 पर सुनेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आपकी पसंद कार्यक्रम होगा सुबह 10:10 पर। 11:10 पर कार्यक्रम सबरस होगा। स्वर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 11:30 पर। दिन में 12:10 पर महिला कार्यक्रम होगा। एक ही फिल्म से आप सुन सकेंगे दिन में 1:10 पर। एक ही कलाकार कार्यक्रम रहेगा 2:30 पर। 3 बजे होगा कार्यक्रम ब्रज माधुरी। दिन में 3:30 पर सुनेगा रेडियो किड्स। शाम 4 बजे आप सुनेंगे स्वांग के अंतर्गत किस्सा शाही लकड़हारा। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी आप सुन सकेंगे शाम 5:10 पर। दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी सुनेगा शाम 5:30 पर। कार्यक्रम ग्राम संसार का समय होगा शाम 6:30 पर।

कृषि जगत का समय रहेगा शाम 7:05, 7:30 पर आप सुनेंगे बाइफकेट एआर लाइव न्यूज 24x7 और इंद्रप्रस्थ चैनल पर ये इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया

सिखानु सिखि दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रसादान दान नाम दान श्रे अमृत सर साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बंदे जुगा जुग अटल कर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रख आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारे अंगुर धम्मा दे जना तो पंथ नु भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दान खालसा जी नु बख्शां हे माने आंदे मान वे पाने आंदे तान वे ओटे आंदी ओटन धन धन श्री

تخت نوا سی تو ہر تیرا

सब चले चलाए तुम्हें प्यारे से तुझ में

पाए कोई पुराना सुटिए पी फिर पाइए हो रे नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला आए मने तक उपजाय सलाही ससूत दरगेंद्र पाइए तक न तुरसपूत महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थोप नित दाड़ी तग न पैरी तग न हाथी तग न जेवा तग न अखी वट गाया पे वट वट तागे अवरा कत लै पार करे विया हो कड़का गल दसे राह हो सुन वे खुलो का विडान अंदा ना।

0: ऐसी मने हुए प्रवान पार कसमे पामेल पैसी कसमे भावे सो करे मन चंदिया सो पल पाए तादर गए कहना जैसी कहना जैसी जैसी
1: पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे तन साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसन हुक्म नाए सी हुक्म निया हुए प्रवान का खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे दर दिया सो फल पाए सी तां दरगाह पैदा जाए सी तां दरगाह पैदा जाए सी।

0: श्लोक मोहल्ला पहला गोब्रह्मण को कर लाभ हो गोबर करना जाते जप माली थार मे शाखाई अंत पूजा पड़क कृपा संजम का भाई छोड़ ले पखंडा नाम लया जाए तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे नवाज श्री बगायन तिन गल ताग शंकर बमन पूरे नाद उना पे आवे ईसा कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल कर है आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मत टिका तेर तो टीका खाई हस चुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैर हो प्रवान मिले ताले पूजा प्राण अपा क्या का कुठा बकरा खाना चंके पर किसे ना जाना देख चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे वन साढ़ा फिटे तन फिटे फेर करेन मन झूठे चुरी परेन कौ नानक सच त्याई सच होगा ता सच पाई है पौड़ी चिते अंदर सबको वे नरी हेट लाइंदा।

0: जेकर सुत मनिए सब ते सुत होए गोए ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जितर असल कोए सुत क्यों पर रखिए सुत पवर सोए नानक सुत ना उतरे ज्ञान उतारे कोई महला पहला
1: मालका सूत को लोग है जेवा सूत का कूड़ अखी सूत को एकला पर त्रे पर तान रूप कनी सूत कन पहला इतबारी खाहे नानक हंसाए आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला
0: सबो सूत कम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दी तौर जित संगाहे
1: नानक जी गुरमुख बुझया ना सूत कनाहे पौड़ी सतगुरु वडा।